0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: सके रात दिन दिल ढूंढता।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

हमारा नमस्कार। पेट्रोल की कीमत 70.65 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71.25 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जनता को आश्वासन देती है कि कल की समस्याओं के बाद आज स्थिति बेहतर

0: करने के लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 50 नए बस ड्राइवर और कंडक्टर एनटीसी के कार्यबल में शामिल होंगे। एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर रही हैं, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है। आज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों की बर्बादी और नुकसान के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल दुनिया भर में बड़ी मात्रा में ऐसे खाना फेंका जाता है जो अभी भी खाने लायक होता है। खाद्य पदार्थों की इस बर्बादी को कम करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों की बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और विदेश में यमन सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जारी घमासान युद्ध का बुरा असर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक यमन में 180,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। 6 अगस्त से शुरू हुए घमासान युद्ध में अब तक 4,481 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व की ओर से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ रहा है। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी, ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 24 और साहिली इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सुबह 5:53 पर सूरज निकला है और शाम 6:07 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम एवार्ड 19 किलोहर्ट्ज पर से ये प्रसारण जारी हो रहा है। मैं हूँ रत्ना, आपका साथ देने आ पहुंची हूँ। हमारा सुप्रीम नमस्कार स्वीकार करें। सितंबर महीना 29 तारीख मंगलवार का दिन 2026 का वर्ष और इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:04:10। मंगलवार का यह दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहें। दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ बनाए रखने में सारी कोशिशों को जारी रखें। आज का दिन सभी के लिए बहुत ही प्यार से बीते, बस यही हम प्रार्थना करते हैं। आज के इस दिन की शुरुआत हम करेंगे संतवाणी कार्यक्रम के साथ। यह पाक्षिक कार्यक्रम कबीर मंदिर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसे प्रस्तुत करेंगे आचार्य श्यामदास महाराज जी। कुछ सदाबहार गीतों के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। सुबह 6:30 पुनः जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ और समाचारों के उपरांत जुड़ेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम को लेकर। और इसी के साथ आज का दिन चलिए शुरुआत करते हैं एक अच्छे विचार के साथ। श्रोताओं कहते हैं जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें कभी प्रभाव दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका अच्छा स्वभाव ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। जिस किसी कार्य के साथ आप जुड़े हैं, बस अच्छा प्रयत्न करिए और ये प्रयत्न ये सोच कर करें कि ईश्वर के लिए ये आपकी पूजा है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संतवाणी कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं आचार्य महंत श्यामदास जी का।

आइए सुनिए आचार्य महंत डॉक्टर श्याम दास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संत वाणी।

परम श्रद्धालु श्रोतागण, यह कार्यक्रम कबीर मंदिर बोनतेर बाकुआ की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले वक्तव्य को ही हम आज फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। आज का विषय है सद्गुरु के समान कोई नहीं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौखंड तीन लोक ना पाइए अरु 21 ब्रह्मांड। सद्गुरु मिले तू जो सब मिले, ना तो मिला ना कोय, मातु पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होय। साहेब कहते हैं, जम्बू द्वीप आदि सात द्वीपों में एवं भरत खंड आदि नौ खंडों में तथा स्वर्ग आदि तीन लोकों और 21 ब्रह्मांडों में भी सद्गुरु के समान कोई नहीं है। सद्गुरु में जो सत्य ज्ञान सद्गुण की विशेषता है किसी में नहीं। बहुत तरह के जीव मनुष्य एवं देवादि भले हों, परंतु उनमें सद्गुरु के समान परम दयालु तथा उपकारी कोई नहीं है। जीवन में यदि सद्गुरु मिल गए तो मानो सब मिल गए, अन्यथा समझो कोई नहीं मिला। माता पिता पुत्र और भाई बंधु आदि तो घर घर में होते हैं, इनका मिलना तो सामान्य सी बात है, परंतु बहुत ऊंची एवं परम सौभाग्य की बात है सद्गुरु का मिलना। इस जगत में सामान्य रूप से मिले संबंधी जन्मोहवश कितना भी अपनत्व जताए या उन पर स्वयं को कितना भी न्यूछावर किया जाए, परंतु वे सदा के लिए अपने हो नहीं सकते। निश्चित ही उनसे एक दिन बिछड़ना होता है, उनमें किसी से कोई स्थायी सुख नहीं मिलता। गुरु का मिला हुआ ज्ञान सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह अक्षय रूप से सदा जीव के साथ रहता है और उससे परम आत्म सुख संतोष मिलता है। माता पिता तो इस पंचभूत के शरीर को जन्म देते हैं और जो एक समय के बाद मृत्यु का ग्रास बन जाता है, परंतु सद्गुरु शरणागत जीव की सब कमियों को दूर कर कुम्हार की भांति उसे ठीक से गढ़ पका कर उसका धर्म एवं परमार्थ स्वरूप का नया जीवन देते हैं। उसमें उसे वे अमृत वस्तु अर्थात आत्मा को लखा देते हैं और उसके जन्म मरण के दारुण दुखों को मिटाकर भवसागर से उसका उद्धार करते हैं। पल पल परिवर्तित होने एवं विनसने वाला यह शरीर भी अपना नहीं, और जो कुछ मिला उसका उपयोग होने तक वह सही फिर निस्सार एवं निरर्थक ही है। इसी पर सारगर्भित सिख देते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान।

यह शरीर तो विष की बेल है, अर्थात विष तुल्य विषयों को भोगते रहने का परिणाम दुखद मृत्यु है और सद्गुरु अमृत की खान है। गुरु के सत्य ज्ञान से जन्म मरण से छूटकर अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अतः अपना सिर अर्पण करने से भी यदि ऐसे सद्गुरु मिल जाए तो सस्ता ही समझो। अभिप्राय यह है कि सद्गुरु और सद्गुरु के ज्ञान उपदेशों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। सद्गुरु के सामने सब छोटे पड़ जाते हैं, सब मूल्यहीन एवं नगण्य हो जाते हैं। अतएव सब कुछ दांव पर लगा देने से भी यदि सद्गुरु मिल जाए तो उसे सस्ता मानकर अपना भाग्य सराहना चाहिए। विवेक वैराग्यवान साधु एवं संत महात्मा जन सब जीवों पर दया करते हैं, निष्काम भाव से समान रूप से सबका उपकार करते हैं और स्वयं का उत्सर्ग करके भी मानवता एवं धर्म का विकास करते हैं। सबके कल्याणार्थ सार्वभौमिक सत्य का प्रचार प्रसार एवं सत्य ज्ञान का सदुपदेश करना उनका मुख्य कार्य होता है। इसीलिए साधु संत महात्मा जनों को गुरु रूप कहा गया है। साधु संत सदैव पवित्र रहनी गहनी में स्थित एवं सत्संग साधना में मग्न रहते हैं और वे निर्भय होकर संसार में घूमते विचरते हैं। इनके शुभ दर्शन से सुख आशीर्वाद से उत्साह प्रेरणा और प्रवचन से ज्ञान वैराग्य की उपलब्धि होती है। ऐसे ही साधु संतों की संगति में सच्चे सद्गुरु का दर्शन मिलन हो जाता है अथवा उनका भेद परिचय मिल जाता है। सद्गुरु को जानने पहचानने के विषय में भूल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा काम बनने की बात तो दूर मूल तक गंवा बैठेंगे। इस बारे में अतिशय श्रद्धा भावुकता मोहकता तथा लोगों की भीड़ से दूर रहकर अपनी गहरी सूझबूझ एवं विवेकवान संत महापुरुषों के बताए अनुसार ही उन्हें जानने समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यह उक्ति तो प्रसिद्ध है, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। गुरु करने के विषय में सावधान करते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाही, दरिया सो न्यारा रहे दीसे दरिया माही। अर्थात बहुत सोच समझ कर ऐसे सद्गुरु करना चाहिए, अर्थात ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए जो पूर्णतः लोभ मोह एवं भ्रम से रहित हो। वह सद्गुरु कमलवत संसार सागर में दिखाई दे तो दे, परंतु सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त रहे, जो सर्वथा पूर्ण काम असंग एवं निष्प्रिय हो। सामान्य संसारी जन तो निस्दिन विषय भोगों में आसक्त रहते हैं और उन्हें काम क्रोध लोभ आदि भयानक विषधर विकार डसते हैं, परंतु सद्गुरु संसार में इन सबसे भिन्न असंग निज आत्म स्वरूप में सदा स्थित संतुष्ट एवं प्रसन्न रहते हैं। ऐसा सद्गुरु करने से ही अपनी बिगड़ी बात बनती है तथा अपना कल्याण कार्य सिद्ध होता है। ऐसे समर्थ सद्गुरु की शरण में जाकर स्वयं को समर्पित करना और उनका शिष्य होकर उनसे ज्ञान दीक्षा पाना निश्चय ही अपने जीवन को सार्थक सफल बनाना है। सच्चे सद्गुरु के ज्ञानोपदेश से शरणागत शिष्य की सारी अज्ञान स्थिति समाप्त हो जाती है और उसका विपरीत एवं विरोधात्मक

0: समझ पड़ना भी दूर हो जाता है। फिर तो उसे सब सही सही सूझता है, उसमें सद्बुद्धि जग जाती है और उसमें सत्य असत्य सार असार एवं जड़ चेतन का विवेक हो जाता है। वह सद्गुरु का सारग्राही हंस रूप बन जाता है। तब वह पर की स्थिति को छोड़ अपने स्व का चिंतन करने लग जाता है। शरीर से उसका मोह टूटने लगता है और वह आत्मलीन होने लगता है। स्वात्म बोध देने वाले सद्गुरु स्वयं सच्चे दाता एवं परम उदार होते हैं। वे शिष्य से कुछ नहीं लेते और अपने सत्योपदेश से उसे अपने जैसा बनाते हैं। इसी के साथ सुपात्र शिष्य भी अपने सद्गुरु से कुछ बचा कर नहीं रखता, वह सब कुछ सद्गुरु को समर्पित कर उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है। वह सद्गुरु का उपकार मानता है, ता हुआ उसे अपने आत्म में लीन कर लेता है। आज के वक्तव्य को यहीं पर विराम। जय सद्गुरु सत्य नाम, बंदगी साहे बंदगी साहे।
1: अभी आप सुन रहे थे आचार्य महंत डॉक्टर श्याम दास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संत वाणी।

जब दुख बढ़ता है, जब पीड़ा बढ़ती है, जब व्यथाएं हमारे काबू से दूर होने लगती है, बस तब ऐसा लगता है कि केवल ऊपर वाले का साथ है। अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म से लिया हुआ ये गीत था सुधा मल्होत्रा की बहुत ही प्यारी सी आवाज में। चलिए इसी के साथ 6:22 हो चुके हैं और अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचो, थोड़ा बेहतर बोलो, थोड़ा बेहतर करो। सही मायने में यही तो साधना है, जीवन का लक्ष्य एक बेहतर इंसान बनने की ओर बस एक पहल। जिंदगी में हम चाहे जितना भी आगे बढ़ लें, पर अगर हमारे भीतर में वो बदलाव हम ना ला पाएं, अगर हम ना अच्छा सोच पाएं, ना किसी के लिए अच्छा बोल पाएं, ना किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाएं, तो ये जीवन व्यर्थ है ना। चलिए इसी के साथ पुराने गीतों का ये सफर कारवां बढ़ाते हैं आगे लाजवाब गीतों के साथ। ज्वेल थीफ का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में।

चलिए इसी के साथ अभी थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे समाचारों के साथ, हमारी और आपकी मुलाकात अब होगी समाचारों के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक के लिए गाते रहें।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सभी को हमारा नमस्कार। सुबह के ठीक 6:30 हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। पेट्रोल की कीमत 70.65 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71.25 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जनता को आश्वासन देती है कि कल की समस्याओं के बाद आज स्थिति बेहतर करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 50 नए बस ड्राइवर और कंडक्टर एनटीसी

एससीके कार्यबल में शामिल होंगे। एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम तैयार कर रही है, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है।

0: नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक यमन में 180,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। 6 अगस्त से शुरू हुए घमासान युद्ध में अब तक 4,481 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब पेश है समाचार विस्तार से। पेट्रोल की कीमत 70.65 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71.25 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच ईंधन की कीमतों की दोबारा समीक्षा की गई। कल का दिन काफ़ी मुश्किल रहने के बाद नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी NTC ने जनता को भरोसा दिलाया है कि आज सुबह हालात में सुधार आने की उम्मीद है। इसके लिए ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। NTC के महानिदेशक डॉक्टर हरविंद सुनारान ने ये भी बताया कि करीब 50 नए ड्राइवर और बस कंडक्टर NTC के स्टाफ को मजबूत करेंगे। ज़्यादा जानकारियाँ अशिता राघो के साथ।
1: कुल मिलाकर 100 से अधिक ड्राइवर और कंडक्टर काम के समय की नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। ये नया रोस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से तैयार किया गया है, जिसमें कुछ कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम के घंटे शामिल नहीं किए गए हैं। CNT मैनेजमेंट नई समय सारिणी को सही ठहरा रहा है और उसका कहना है कि ये व्यवस्था ज्यादा समान और न्यायसंगत है। CNT के रीजनल मैनेजर गोविंद रामदीन कहते हैं कि कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों में कहा गया है कि काम के घंटों में कमी है, जैसे जो रिलीफ के लिए आते हैं वे केवल 4 घंटे काम करते हैं। मांग प्राप्त करने पर उन्हें भी 8 घंटे दिए गए। इनमें IT और ट्रैफिक सुपरवाइजर साथ मिलकर काम उन्होंने किया, जहां पर सभी पदों और ड्यूटीज पर काम किया गया और सभी कर्मचारी के लिए 40 से 45 घंटे प्रति सप्ताह समान रूप से काम करने के लिए दिया गया है। दूसरी ओर CNT के जनरल मैनेजर डॉक्टर प्रदीप कुमार सुनारायण कहते हैं कि AI एक लोकतांत्रिक साधन है, जहाँ कर्मचारी और रिलीफ के लिए आने वाले लोगों के बीच संतुलन बनाता है। मैं आश्वासन देता हूं कि रिलीफ कर्मचारियों को बेहतर ढंग से देखा जाएगा। परिवहन मंत्री की ओर से कहा गया है कि बातचीत के जरिए इस मामले का समाधान निकाला जा सकता है। मंत्री उस्मान मोहम्मद कहते हैं कि CNT मैनेजमेंट ओछी हरकत के जरिए ये जरूरी बदलाव नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी आवश्यकता है। स्थिति गंभीर है, उपलब्ध संसाधन के साथ काम करना पड़ रहा है। बदलाव ही चिंता का विषय है और इसका विरोध किया जा रहा है। मैं कर्मचारियों से समझबूझ की मांग करता हूं, संतुलन बनाए जिससे संसाधनों का सही उपयोग हो और CNT सुचारू तरीके से कार्यरत रहे। हम सही दिशा में जा रहे हैं जिसमें कोई परेशानी न हो।
0: SDC राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम तैयार कर रही है, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। अगर चावल की सप्लाई पूरी तरह रुक जाती है तो SDC की हॉटलाइन 5944-3434 पर उपलब्ध रहेगी। ये सेवा सप्ताह में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक चालू रहेगी। इसके अलावा बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है। करुणा लालू को सुनते हैं।
2: SDC के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार लॉन्ग ग्रेन व्हाइट राइस के लिए आपूर्ति के अन्य स्रोतों पर विचार किया जा रहा है, खासकर पड़ोसी देशों में। उद्देश्य मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं और बाजारों के विकल्पों को बढ़ाना है। फिलहाल चावल की आपूर्ति मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और दुबई स्थित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से होती है। अभी तक किसी नए देश को आधिकारिक रूप से तय नहीं किया गया है। बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही इस संबंध में फैसला होने की उम्मीद है। मुद्दा ये है कि मध्य पूर्व में समुद्री परिवहन में आई बाधाओं के कारण कुछ खेपों में देरी हो रही है। पाकिस्तान से रवाना हुई 3 चावल की खेपें अक्टूबर में मॉरिशस पहुंचने की उम्मीद है। प्रत्येक खेप में लगभग 500 टन चावल हैं और इन्हें श्रीलंका के रास्ते लाया जाना है। पहली खेप के लगभग 18 अक्टूबर और बाकी 2 के लगभग 20 अक्टूबर को पहुंचने की प्रत्याशा है। इस बीच SDC अपने स्टॉक प्रबंधन को समायोजित कर रही है। वो प्रतिदिन 2.5 किलो के 12,000 पैकेट का स्टॉक बनाए रखती हैं और कुछ दुकानों को सीधे आपूर्ति करने के लिए अपनी खुद की लॉजिस्टिक

0: स्टिक्स व्यवस्था का अधिक इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें खासतौर पर छोटी दुकानें और दूरदराज के इलाके शामिल हैं। इस व्यवस्था का मकसद घबराहट में या ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी पैनिक बाइंग को रोकना भी है, क्योंकि इससे स्टॉक तेजी से खत्म हो सकता है।
1: सोशल मीडिया पर कल जारी एक बयान में नाडेक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि बच्चों की कैंडीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, खासकर आत्सू की हालिया चेतावनी के बाद। नाडेक के अनुसार कैनाबिनॉइड्स वाली ये मिठाइयाँ उन कैंडीज से बिल्कुल अलग हैं जो हमारे दुकानों और सुपरमार्केटों में बेची जाती हैं। नाडेक ने स्पष्ट किया कि ये मामला पिछले साल हवाई अड्डे पर केवल एक महिला यात्री के पास से की गई जब्ती से जुड़ा है। चीनी की बिक्री से 2025 में 10.4 बिलियन रुपए की आमदनी, लेकिन गन्ना उद्योग के सामने जमीन और मजदूरों का सवाल अभी भी है। पोर्ट लुइस में मॉरिशस सुगर सिंडिकेट की सालाना बैठक में सचिन सुकना नए अध्यक्ष चुने गए हैं। पदमुक्त अध्यक्ष निकोला मेको ने बगास के दाम पर फिर से गौर करने की मांग की और पहले गन्ने की खेती में इस्तेमाल होने वाली करीब 10,000 एकड़ खाली जमीन को फिर से खेती में लाने की अपील की। मंत्री अरविंद बुलेल के अनुसार गन्ना क्षेत्र में काम करने के लिए 600 विदेशी मजदूर दिसंबर में आएंगे। ज्यादा जानकारियां इस रिपोर्ट में। मॉरिशस का गन्ना उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, श्रमिक संघों की कमी और गन्ने की खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन में कमी शामिल है। शुगर सिंडिकेट के वर्तमान अध्यक्ष निकोला मेखो ने बताया कि 2025 की फसल के लिए उत्पादकों को प्रति टन चीनी 24,095 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि पिछले साल के लिए ये कीमत 27,478 रुपए थी। 2025 में चीनी की बिक्री से होने वाली आय 10.4 बिलियन रुपए रही, जबकि पिछले साल ये 11 बिलियन रुपए थी। अब खास शक्कर का हिस्सा कुल उत्पादन का 60% हो गया है, जबकि पिछले साल ये 54% था। मॉरिशस सुगर सिंडिकेट ने बगास के लिए दिए जाने वाले दाम की समीक्षा की मांग की है। साथ ही कुछ आयात की जाने वाली चीनी से स्थानीय बाजार को बेहतर तरीके से सुरक्षित करने के लिए उपाय किए जाने की भी मांग की गई। निकोला मेखो कहते हैं बायोमास के दाम पर फिर से गौर करना होगा। आज बगास का दाम 3.50 रुपए प्रति किलोवाट है। मंत्री ने इन्फ्लेशन के बारे में बात की तो दाम भी बढ़ना चाहिए, इससे अन्य सेक्टर भी खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे स्थानीय बायोमास की पैदावार करने के लिए।
2: Qui aussi incitera d'autres secteurs à planter, par exemple, pour faire de la biomasse locale.
1: कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने कहा कि बायोमास गन्ना उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सरकार बायोमास के दाम पर फिर से गौर करने की मांग पर अध्ययन करेगी।
3: Nous paierons dans ce qu'on appelle production de l'électricité à partir de biomasse.
1: बायोमास से बिजली उत्पादन कर रहे हैं, 3.50 रुपए के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, इसे बढ़ाना होगा, इससे बायोमास आयात नहीं करना पड़ेगा। उत्पादन भी चिंता का विषय बना हुआ है। 2025 में 33,805 हेक्टेयर जमीन से गन्ने की कटाई की गई और कुल 2,20,305 टन चीनी का उत्पादन हुआ। गन्ने की खेती के लिए पहले इस्तेमाल होने वाली 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आज भी खाली है। महासभा के बाद नए अध्यक्ष का भी चुनाव किया गया। सचिन सुकना को नया अध्यक्ष चुना गया है। वे इससे पहले शुगर सिंडिकेट के उपाध्यक्ष के पद पर थे। आज मंगलवार को खाद्य पदार्थों की बर्बादी और नुकसान के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल दुनिया भर में बड़ी मात्रा में ऐसा खाना फेंक दिया जाता है जो अभी भी खाने लायक होता है। इस दिन लोगों को ज़रूरत के अनुसार खाना खरीदने, बचा हुआ खाना सही तरीके से इस्तेमाल करने और खाने की बर्बादी को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। करुणा लालू।
0: मॉरिशस में हर मिनट में लगभग 279 किलो ऐसा भोजन जो अभी भी खाने योग्य है फेंक दिया जाता है। इसमें खास तौर पर फल और सब्जियां शामिल हैं।

0: दुनिया भर में उत्पादित खाद्य पदार्थों में से लगभग 13% फसल की कटाई से लेकर खुदरा बिक्री तक के बीच नष्ट हो जाते हैं। वहीं लगभग 19% भोजन घरों, रेस्तरां और दुकानों में बर्बाद होता है। आज 29 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और बर्बादी जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का मकसद खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने और भोजन की हानि को रोकने के प्रति लोगों को आगाह करना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल बड़ी मात्रा में भोजन उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचने के दौरान नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। इसका असर केवल खाद्य सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इस अवसर पर लोगों से अपील की जाती है कि वे जरूरत के अनुसार ही भोजन खरीदें और परोसें, बचे हुए भोजन का उचित उपयोग करें और खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने में अपनी भूमिका निभाएं। भोजन की बर्बादी कम करना खाद्य सुरक्षा और एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: सांसद वेरोनिक ले गोविंद की पति गुलशन गोविंद को कल रिवियनवा की जिला अदालत में जमानत दे दी गई। उन पर गांजा उगाने और मेटाडोन रखने के आरोप लगे हैं। अदालत का मानना है कि भले ही संदिग्ध पश्चिमी तट के पास रहता है और कुछ स्कीपर्स को जानता हो, लेकिन उसके फरार होने का खतरा पुलिस की सिर्फ आशंका है। हालांकि उसे समुद्र तट से 200 मीटर के दायरे में जाने की अनुमति नहीं होगी। गुलशन गोविंद फिलहाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि उन पर करीब 155 किलो गांजा आयात करने की साजिश का भी एक अंतरिम आरोप है। इस गांजे की कीमत ट्रेनियन टापू में लगभग 234 मिलियन रुपए आंकी गई है। सुनवाई के बाद उन्हें दोबारा पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अदालत 6 अक्टूबर को उनके वकील रूबेन मोगोंगा पीले की ओर से इस अंतरिम साजिश के आरोप को हटाने के लिए दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। मॉरिशस में कुछ घावों का भरना बहुत ही मुश्किल होता है जिससे गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2024 में मधुमेह से पीड़ित मरीजों में निचले अंगों को काटने के 365 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें 224 पैर की उंगलियों, 10 पैर, 34 घुटने के नीचे और 97 घुटने के ऊपर किए गए एम्प्यूटेशंस शामिल हैं। आज रोजबेल अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर कार्यरत डॉक्टर केनिगेन मानिक्यों पिछले कई वर्षों से एक बायोमेडिकल मैश पर काम कर रहे हैं। ये एक तरह का जाल है जो बहुत ही महीन रेशों से बनता है। इसका उद्देश्य घाव के आसपास के मांस को बेहतर तरीके से दोबारा बनने में मदद करना है। आगे चलकर इस टेक्निक के जरिए कुछ दवाओं का उपचार को सीधे घाव वाली जगह तक पहुंचाना भी संभव हो सकता है। अगर मॉरिशस का ये प्रोजेक्ट व्यावहारिक रूप लेता है तो ये एक महत्वपूर्ण प्रगति साबित हो सकता है, खासकर मधुमेह से जुड़े पुराने और लंबे समय तक न भरने वाले घावों से पीड़ित मरीजों के लिए। डॉक्टर केनिगेन मानिक्यों बताते हैं कि ये मेष कैसे काम करता है, शोध किस चरण में है और मॉरिशस के मरीजों के लिए इससे क्या फायदे हो सकते हैं। उनसे बात की अद्रियन वालिया ने याचना मिश्रा का विवरण।
2: Soigner les plaies qui sont très difficiles à guérir, je parle par exemple des hernies, les plaies chez les diabétiques, surtout dans leurs pieds.
3: ज्यादा गंभीर जख्म के इलाज जैसे हर्निया या मधुमेह से पीड़ित लोगों के पैरों पर लगे घाव के इलाज के लिए हम एक नए पॉलीमर का प्रयोग करते हैं। ये हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज में ज्यादा अच्छे से घुल जाते हैं। 2-3 दिनों में ही ये मैश घुल जाता है। इन मैश फाइबर्स में हम दर्द कम करने के लिए दवाइयाँ भी घोल सकते हैं, जैसे लिडोकेन, ब्यूपिवाकेन, एनाल्जेसिक दवाइयाँ आदि। फाइबर को तैयार करने के लिए प्रयुक्त घोल में ही इन सभी दवाइयों को डाला जाता है। ये आम तौर पर खतरे से खाली हैं क्योंकि जिन पॉलीमर्स का प्रयोग हम करते हैं वे शरीर में घुलकर एस्पार्टिक एसिड बन जाता है जो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद हैं। अभी के लिए ये प्रारंभिक चरण है, कई चरण और बाकी हैं जब तक

0: कि हम क्लिनिकल ट्रायल के स्तर तक नहीं पहुंच जाते।
1: Stade très très préliminaire, donc il y a encore beaucoup d'étapes à franchir pour pouvoir arriver aux clinical trials.
2: नाइट मार्केट जो मौसमी दुकानदारों के लिए आयोजित किया जाता है, साल के अंत में होने वाले त्योहारों को देखते हुए राजधानी की पूर्व देफोश गली में फिर से लगाया जाएगा। ये आयोजन 12 दिसंबर से अगले साल 4 जनवरी तक चलेगा। इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और इससे जुड़े अलग अलग पक्षों के साथ कई बैठकें और विचार विमर्श किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह लोकल गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों, पुलिस, नगर परिषदों और संबंधित चुनाव क्षेत्र के सांसदों के साथ पहली बैठक लगी। इसका मकसद उनके सुझाव लेना, जरूरी व्यवस्थाओं की पहचान करना और खास तौर पर पिछले आयोजन के दौरान सामने आई परेशानियों पर चर्चा करना है। और विदेशी खबरों में, यमन सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जारी घमासान युद्ध का बुरा असर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक यमन में 180,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 6 अगस्त से शुरू हुए घमासान युद्ध में अब तक 4,481 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ रहा है। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी, ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 24 और साहेली इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 और साहेली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सुबह 5:53 पर सूरज निकला है और शाम 6:07 पर सूरज ढल जाएगा।

0: और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोल की कीमत 70.65 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71.25 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जनता को आश्वासन देती है कि कल की समस्याओं के बाद आज स्थिति बेहतर करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 50 नए बस ड्राइवर और कंडक्टर एनटीसी के कार्यबल में शामिल होंगे। एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम तैयार कर रही है, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है। आज खाद्य पदार्थों की बर्बादी और नुकसान के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल दुनिया भर में बड़ी मात्रा में ऐसा खाना फेंक दिया जाता है जो खाने योग्य होता है। और यमन सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जारी घमासान युद्ध का बुरा असर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक यमन में 180,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 6 अगस्त से शुरू हुए घमासान युद्ध में अब तक 4,481 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें अर्पणा का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: सर वेजिलनाज बुधन लेन रोजिल में 88 साल की 88 ईयर ओल्ड की मिसेस बीबी हासमा माघू, जो हासमा से ज्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके घर सर वेजिलनाज बुधन लेन रोजिल से उठाकर सैमोते मोहोश का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल

0: yesterday at 11 a.m. Number 69 Avenue Pétunia, Moselmont, Montréal, Coromant Delmay, 76 साल के 76-year-old के जनाब खालिक भुगन, जो खालिक भुगन से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहले करीमजी में काम करते थे, की मृत्यु इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके बेटे बिलाल भगन के घर नंबर 69 एवेन्यू पेटुनिया मुसलमान मुखयाल कोमा दिल से उठाकर गिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 एएम। नंबर 42 रुत कोकोटरी रोशबॉ में 69 साल के 69-year-old के श्री मुनीलाल दुल्ला, जो रोहित से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे नेश्वर दुल्ला के घर नंबर 42 कोकोटरी रोशबॉ से उठाकर सिपाही भूले वाले दे प्रेत्र की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 एएम। आंख्रे काटन ओकुले में 51 साल के 51-year-old के श्री शास्त्री गनगन्ना, जो बोडो से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके भतीजे विराज गनगन्ना के घर आंख्रे काटन ओकुले से उठाकर प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 एएम। रॉयल रोड डिफ्रिया में 71 साल की 71-year-old की श्रीमती चंद्रावती विदेशी, जो ललिता से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी बेटी अंबिका बिहारी के घर रॉयल रोड डिफ्रिया से उठाकर डिफ्रिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। टोमासन रोड क्रेवकियर में 79 साल के 79-year-old के श्री सत्यानंद गुरबिन, जो कोलंबो से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर टोमासन रोड क्रेवकियर से उठाकर क्रेवकियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। सुभाष चंद्र बोस लेन ग्रांड पॉइंट पीमों में 37 साल की 37-year-old की श्रीमती नीलम हुसैन, पैदाइश नाम कालचंद और जो नीलम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके पिता रामचंद्र कुमार कालचंद के घर सुभाष चंद्र बोस लेन ग्रांड पॉइंट पीमों से उठाकर पैतु बीश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। श्रीमेमाशेन पाल्मा काथ्रोबोन में 74 साल के 74-year-old के श्री रामेश बकोरी, जो रामेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर श्रीमेमाशेन पाल्मा काथ्रोबोन से उठाकर गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। मिमोजा रोड सैं रेमी फ्लाक में 80 साल की 80-year-old की श्रीमती सुभावती रामरखा, जो दादी मशाला फौज से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर मिमोजा रोड सैं रेमी फ्लाक से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। नंबर 3 बैटका लेन स्टैनले रोजिल में 77 साल के 77-year-old के श्री पुनसामी पिले मुतुसामी, जो तौबी से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पूर्व पुलिस कॉर्पोरल थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह 10:15 बजे उनके घर नंबर 3 बैटका लेन स्टैनले रोजिल से उठाकर कॉलिव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूईएफए नेशंस लीग के ग्रुप A1 में फ्रांस एग्जैक्ट ओ रेंडेवू और इटली के स्क्वाड्रा अजूरा की ओर से बहुत दिनों बाद फोर्जा इटालिया। बेल्जियम के यहाँ जिनेदिन जिदान के ले ब्लू जीत पाए 1-0 से। मैच के अंतिम मिनटों में माइकल ओलिजे का गोल, सुपर

लेट सोलो गोल रहा। किलियान एम्बापे इंजुरी के कारण नहीं था, ऐसे में फ्रांस के मुर्गों को बेल्जियम के तगड़े डिफेंस को पार करने में कठिनाई हुई। दो जीतों के साथ फ्रांस ग्रुप ए वन में आगे हैं। अगला मैच इस फ्राइडे को इस इटली के खिलाफ होगा। इटली में रोबर्टो मांचिनी की वापसी और पहली जीत, पहले मैच में बेल्जियम के खिलाफ हार हुई थी, इटली की टीम हारी थी, पर इस बार एवे जाकर टर्की को पीटा 4-1 से। बास्टोनी फ्रातेजी कायोदे फर्स्ट हाफ में स्कोर कर पाए, फिर सेकंड हाफ में एस्पोजिटो का गोल। स्क्वाड्रा अजूरा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया था, मांसिनी को फिर से बुलाया गया। इस नेशंस लीग से इटली को बहुत उम्मीदें हैं। ग्रुप टू में जॉर्जिया 0 यूक्रेन 0, आर्मेनिया 2 मोंटेनेग्रो 3, लात्विया 0 साइप्रस 0, नॉर्दर्न आयरलैंड और हंगेरी के बीच मैच ड्रॉ 0-0। ग्रुप फोर में रोमेनिया 2 बोस्निया 4 स्वीडन 3 पोलैंड 1, ग्योकोरेस का एक गोल रहा स्वीडन के लिए। आज स्पेन का मुकाबला क्रोएशिया से, ये ग्रुप ए वन में है, और चेक रिपब्लिक इंग्लैंड का स्वागत करेगा। पहले मैच में वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने न्यू वेम्बली स्टेडियम में जाकर इंग्लैंड को हराया था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद लागोगा का पहला होम मैच होगा, जबकि चेक रिपब्लिक में इंग्लैंड को संभलना होगा। आज के अन्य फिक्स्चर्स, फिनलैंड बेलारूस, स्कॉटलैंड स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया नॉर्थ मैसिडोनिया, सान मारिनो अल्बेनिया, मोल्डोवा फारो आइलैंड्स, स्लोवेकिया कजाकिस्तान, बुल्गारिया एस्टोनिया और लुक्जमबर्ग आइसलैंड। आज के फ्रेंडली मैचों में ऑस्ट्रेलिया ब्राजील के खिलाफ खेलेगा, रशिया ईरान। कल के फ्रेंडलीज में जापान ने वेनेजुएला को 2-1 से हराया और उरुग्वे की जीत 4-1 से साउथ कोरिया पर नूनेस का डबल रहा। काफ अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस की बात करें, ग्रुप ई में कल इक्वाटोरियल गिनिया ने 1-0 से सियेरा लियोन को हराया, जिम्बाब्वे को हराया कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने 2-1 से। ग्रुप एफ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 0 बुर्किना फासो 1, ग्रुप एच में ट्यूनिजिया 2 बोत्सवाना 2। आज ग्रुप ए में लेसोथो का मुकाबला मोरक्को से, गाबों खेलेगा निजर के खिलाफ। ग्रुप बी में सूडान वर्सेस इजिप्ट, मोहम्मद सलाह सूडान के खिलाफ नहीं खेलेगा क्योंकि वहां के मैदान में आर्टिफिशियल टर्फ है, ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहते अपने स्टार खिलाड़ी के साथ। ग्रुप सी में गाना गाम्बिया, सोमालिया आइवोरी कोस्ट, ग्रुप एफ में बेने मोरिटानिया, ग्रुप जी में कोमोरो आइलैंड्स नामीबिया, कोंगो कैमरून, ग्रुप एच में युगांडा वर्सेस लीबिया, ग्रुप आई में बुरुंडी अल्जीरिया जाम्बिया टोगो, ग्रुप जे में इथियोपिया सेनेगल मोजाम्बिक सूडान, ग्रुप के में केप वर्दे रुआंडा लिबेरिया माली, ग्रुप एल में मादागास्कर तंजानिया गिनिया बिसाओ नाइजीरिया। 15 अक्टूबर को फीफा काउंसिल की बैठक लगेगी और प्रेसिडेंट इन्फांटिनो फीफा के सदस्य देशों को ज्यादा पैसा देने के बारे में सोच रहा है। 211 मेंबर हैं, लगभग 4.4 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग कैश रिजर्व में से पैसे निकाले जाएंगे। मार्च 2027 में फीफा प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इन्फांटिनो फिर से खड़ा होगा। नवंबर 2026 तक अन्य उम्मीदवारों के नाम भेजने होंगे। एशियन गेम्स की क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच कल नहीं खेला गया। जापान में बारिश के कारण मैच में एक भी गेंद खेला नहीं गया, मैच वॉश आउट, ऐसे में टीम इंडिया ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल में पहुंची। आज दूसरा क्वार्टर फाइनल बांग्लादेश और मलेशिया के बीच, इधर इंग्लैंड की ए टीम और ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू, और इंडिया अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 में इंडिया की अंडर 19 टीम 430 रन बना चुकी है ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के 217 रनों के जवाब में। लक्ष्य राय चंदानी 210 पर नॉट आउट हैं। इधर बैडमिंटन में केप टाउन सीनियर इंटरनेशनल्स में मॉरिशस के लिए 8 मेडल, सू सिंह स्टीलियो चेंग त्यान चोंग सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीत पाया, फिर तिया चंग के साथ मेंस डबल में भी गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल रहे, 1 अनिरुद्ध जगेसर।

0: फिर दूसरा हरिमन, स्वतंत्र आत्तानंद और अनिरुद्ध जगेसर डबल्स में। अंडर 19 अफ्रीकन चैंपियनशिप में मिक्स टीम कैटेगोरी में मॉरिशस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई युगांडा को 2-0 से हराकर। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का सामना होगा। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, यूईएफए नेशंस कप में फ्रांस ने बेल्जियम को हराया 1-0 से। इटली की भी जीत हुई। आज इंग्लैंड जाएगा चेक रिपब्लिक के मैदान में और स्पेन वर्सेस क्रोएशिया। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 7:06 हो चुके हैं और आगे बढ़ने से पहले आइए इसी के साथ लेते हैं आज की ये विज्ञप्ति जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई है। तमाघें के आसपास के इलाके, खासकर तमाघें विलाज में आज मंगलवार 29 सितंबर को सुबह 8:30 से लेकर शाम 4 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। इसी के साथ आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
2: 819 kilowatts. This is Radio Mauritius.
3: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, Radio Mauritius पर।

0: 7:08 होने जा रहे हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम एवार्ड्स 19 किलोहर्ट्ज पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी है रत्ना, जहां कहीं से भी साथ दे रहे हैं, दिल से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अभी से लेकर बिल्कुल 11 बजे तक हम आपकी सेवा में रहेंगे। 29 तारीख है, सितंबर महीना 2026 का वर्ष, मंगलवार का दिन, और चलिए इसी के साथ प्रथा अनुसार शुरू करेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम की आज के चिंतन के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी जमन। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: विवेक पूर्ण लोगों का छोटा सा दल असंख्य मूर्खों के जंगल से अच्छा है, और जिस राष्ट्र ने अपने स्वरूप को पहचान लिया वही सच्चे साम्राज्य को पाने का अधिकारी है।

0: बिल्कुल, ये गीत था फिल्म तकदीर से लिया हुआ, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत। आकाश में जो बैठा है बस वही तो हमारी तकदीर का फैसला करता है, और उनकी तकदीर, उनकी उनके फैसले के आगे एक पत्ता नहीं हिल सकता। और चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम बहुत ही प्यारे से गीतों के साथ ज़रूर सजाने का प्रयत्न जारी रखेंगे आपके लिए। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए लेते हैं आज की झलकियां।
1: रेडियो मॉरिशस
2: झलकियां
1: रेडियो मॉरिशस।
0: जी हाँ, झलकियों में इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम 8 बजे जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ। 8 बजे के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे ज्वेल थीफ के साथ। जी हाँ, जॉनी मेरा नाम देवानंद साहब की साथ मुलाकात होगी आज के इस हमारे अगले सेगमेंट में। और बिल्कुल इसी के साथ जारी रखा जाएगा कार्यक्रम 8:50 पर। किरण जानकी का साथ रहेगा हमारी धरोहर कार्यक्रम में, जहां पर बेहतरीन जानकारियां वो लेकर आती हैं। इस बात को हम सुनेंगे इसी कार्यक्रम के तुरंत बाद, और भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए 9 बजे के समाचारों के साथ जुड़ेंगे। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा, और सामाजिक मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं तो इस कार्यक्रम में बिल्कुल आपका साथ देंगी सुमिता सरकार। और इस कार्यक्रम को आप सीधा सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस के साथ, और MBC के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे। आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस पर बात की जाएगी, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे अतिथि आचार्य मनोज गौतम जी, और इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा 2:00 to 4:00 के बीच रेडियो मनोरंजन के लहरों पर। ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा 10 to 10:00 तक। 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम, भक्ति में यात्रा होगी भजनों के साथ, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे वेद सुधा का कार्यक्रम आचार्य सुदेश बद्री जी की प्रस्तुति में। जी हाँ, हमारा और आपका साथ रहेगा 11 बजे तक। 11 बजे के समाचारों के बाद विविध भाषाओं के कार्यक्रमों के गुलदस्ते को सजाया जाएगा अलग अलग कार्यक्रमों के साथ, जिसकी शुरुआत होगी शम्मे फरोजा कार्यक्रम के साथ, जिसे पेश किया जाएगा सैयदा सुबाई द्वारा। 12 बजे वर्षा लेकर आएंगी तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 12:30 बजे सीताबाई दरमिया की प्रस्तुति में मराठी कार्यक्रम चलेगा। 1 बजे RSC लेकर आएंगी तमिल भाषा का कार्यक्रम। 1:45 बजे अमिता की प्रस्तुति में रहेगा गुजराती गीतों का कार्यक्रम रंगारंग, और 2:00 बजे आप सुन पाएंगे मैंडरीन का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगे डेविड। 2:30 बजे आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद रोशनी की प्रस्तुति में। 4:00 बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम। 4:00 बजे पुनः तमिल भाषा का कार्यक्रम कलाईवानी वीरन द्वारा। 5:00 बजे भूले बिसरे गीत, जिसे प्रस्तुत करेंगी उषा कौर। 6:00 बजे देश विदेश की खबरें समाचार बुलेटिन में। 6:30 बजे पुनः आप सुन पाएंगे विविध भाषाओं के कार्यक्रम, जिसके शुरुआत की जाएगी मैंडरीन कार्यक्रम के साथ, और इसे प्रस्तुत करेंगी जिन। 7:00 बजे युवरासन लेकर आएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे कृतिका की प्रस्तुति में तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 7:50 पर श्रीरी श्रामा की प्रस्तुति में मराठी भाषा का कार्यक्रम गीत गंगा। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम, जिसे प्रस्तुत करेंगी अनीता। 8:40 पर महफिले शब, इस कार्यक्रम को पेश करेंगे निसार अख्तर। 9:00 बजे से लेकर 11:00 बजे के बीच भोजपुरी दड़का कार्यक्रम चलाया जाएगा RJ प्रताप सिंह द्वारा। 11:00 बजे से

12 बजे के बीच पुराने गीतों का सफर सुनहरे पल, जिसे प्रस्तुत करेंगी नीतू शाह। रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का कारवा आगे बढ़ेगा और ये प्लेलिस्ट सजाई जाएगी हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा। आपको याद दिला दे, कल सुबह 5:35 पर एक विशेष कार्यक्रम होगा गोविंदन के अवसर पर, जो चलेगा तमिल भाषा में, और 5:50 पर वेंकटेश्वरा व्रतम के अवसर पर मैं मॉरिशस तेलुगु महासभा द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा तेलुगु भाषा में। तो ये थी सूची कल सुबह 6 बजे तक के कार्यक्रमों की, और सुबह का नजराना कार्यक्रम में बेशक मैं हूँ आपका साथ देने के लिए, और प्यारे प्यारे गीतों से सजाया हुआ ये सफर हम लेकर आए हैं। दोस्तों कहते हैं अपेक्षाएं जो है वो ब्लड शुगर जैसी होती है। जी हाँ, ब्लड शुगर जैसी, बढ़ जाए तो भी मुसीबत, कम हो जाए तो भी परेशानी। एक हमारा शरीर भी खराब करती है, दूसरा हमारे रिश्तों को भी वे खराब कर देती हैं। इसलिए बस अपेक्षाएं मत रखें, गाने सुने और मन को खुश करें। तो चलिए इस अगले गीत को लेते हैं प्यारे सी लता जी की आवाज में। आस का पंछी का ये गाना है सुबीर सेन की आवाज में।

7:20 और मजेदार गीतों का ये सफर। भाई किसी ने किसी से पूछा कि इस दुनिया में आपका कौन है, तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने हंसकर जवाब दिया कि समय, अगर वो सही है तो सभी अपने वरना सभी पराए। बिल्कुल सही कहा, समय अगर आपका है तो बाकी सारी दुनिया आपके पीछे दौड़कर दीवानी होगी आपकी, पर अगर समय आपके बस में नहीं तो भाई समझदार है सभी। चलिए इसी के साथ प्यार भरे गीतों के इस सफर में कुछ ऐसे ही मज़ेदार गीतों से सजाया हुआ ये सफर हम लेकर आते हैं, कुछ ऐसे अनसुने गीतों के साथ जो जिसे सुने हुए बहुत अरसा हो चुका है। बस आशा करते हैं कि इन गीतों को सुनकर आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। लेते हैं अगला गीत मुकेश साहब की आवाज़ में, टावर हाउस से लिया हुआ ये गाना है।

भाई सपने तो रोज आते हैं, पर सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल हमें जागना पड़ता है। सोते सोते सपने तो पूरे होते नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत के बिना कोई छुटकारा भी नहीं है। और चलिए इसी के साथ 7:30 बज चुके हैं, कई सारे लोग इस वक्त काम के लिए निकल चुके होंगे, रास्ते में होंगे और बहुत तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे। जहां रास्ता फ्री मिला बस एक्सेलेटर पर पैर डाला और गाड़ी को भगा दिया। ऐसा कभी मत करना, बस आराम से संयम से आप गाड़ी को आगे ले चले और सुरक्षित अपनी मंजिल को पहुंचे, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और इसी के साथ रेडियो मॉरिशस पर मज़ेदार गीतों का ये सफ़र हम जारी रखेंगे। वही कहते हैं ना, हर छोटा घर हमारा छोटा हो या बड़ा, घर घर होना चाहिए। और इसी के साथ कहते हैं कि घर अगर छोटा है कोई बात नहीं, बस इंसान का दिल छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते जो है ना वो दीवारों से नहीं, हमारे व्यवहार से बनते हैं, हमारे दिल से बनते हैं। इसीलिए सबके लिए अच्छी भावना रखें, सबके लिए अच्छा सोचें, आपका भी अच्छा ही होगा। चलिए, कल लता जी का जन्मदिन था और लता जी के कई सारे ऐसे गाने हैं जो बहुत ही हट कर रहे हैं। उनके हर गानों में एक अलग अंदाज, एक अलग कनेक्शन हमें फील होता है। और ये जो गाना हमने अभी सुना राजहट फिल्म से लिया हुआ, एक और प्यारा सा गाना आपको सुनाते हैं मन मौजी फिल्म का। और बिल्कुल इस गीत के बाद आते हैं थोड़ी ही देर में छोटी सी बात को लेकर।

चलिए इसी के साथ 7:41 और आपको समय भी बताते चलेंगे, साथ ही साथ गाने भी बजाते रहेंगे. और आज का ये मोस्ट अवेटेड आपका जो फेवरेट सेगमेंट है छोटी सी बात में, आप सभी का हम स्वागत करते हैं. आज की छोटी सी कहानी, छोटी सी बात भी हमें बहुत बड़ी बात समझाती है, बहुत बड़ी बात सिखाती है. चलिए इस कहानी के माध्यम से मेहनत का फल बिल्कुल मिलता ही है, इसीलिए मेहनत करने से कभी ना चूके, कभी ना रुके, कभी ना डरे. एक बार बादलों की हड़ताल हो गई. अब बादलों ने कहा अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे. ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, क्योंकि उन्हें तो पता चल गया कि बादलों ने तो भाई हड़ताल कर दी है. अब बादल की हड़ताल कितने दिनों तक चलेगी, कितने सालों तक चलेगी, तो कोई नहीं जानता था. लेकिन एक किसान था, अपने नियम अनुसार वो हल चलाता रहा. कुछ बादल थोड़ा नीचे की ओर आए, गुजरते हुए उसने देखा कि किसान तो हल चला रहा है. किसान से उन्होंने बोला, क्यों भाई, हमने तो कहा कि पानी नहीं बरसाएंगे ना, तो फिर हल क्यों चला रहे हो, इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या मतलब है? तो किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसोगे तब बरसोगे, मैं हल चलाना ना भूल जाऊं, इसीलिए मैं हल चला रहा हूं. अब ये बात सुनकर तो बादल घबरा गए. बादलों ने कहा, ये बात भी सही है, अगर ये किसान हल चलाना ना भूल जाए, इस डर से हल चला रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद हम बरस ना भूल जाए. बस फिर क्या था, ऐसा सोचते ही बादल बरस पड़े और किसान की मेहनत जीत गई. जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था वो बस हाथ मलते ही रह गए. भले परिस्थितियां जैसी भी हों, परिस्थितियां भले विपरीत हो जाए, लेकिन आने वाले समय निस्संदेह हमारे लिए अच्छा ही होगा, ऐसा सोचकर कभी हार नहीं माननी है. कामयाबी केवल उनको ही मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा मेहनत करना नहीं छोड़ते. जानते हैं कि मुश्किल का दौर है और हो सकता है ये मुश्किल का दौर और मुश्किल हो जाए, पर इस मुश्किल के समय में भी अपनी हिम्मत को नहीं हारना है, अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना है. बस चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखें, मन में जज्बात को जोश के साथ बनाए रखें, हिम्मत के साथ दिन की शुरुआत करें, रास्ते निकल ही आएंगे.

7:50 सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, डेडिकेशन टाइम। आप सभी के नामों को जोड़ने का समय हो चला है, तो चलिए यहाँ पर श्यामा जी हमेशा की तरह घोंघूप से हमारा साथ दे रही हैं। साथ है जयप्रकाश, उनके प्यारे भैया, भाभी है नम्रता, केशव और युधीश, उनकी प्यारी बहन वैजंती, और साथ ही साथ उनकी प्यारी सखियां विश्वानी जी और वीना जी, जो हमेशा साथ देती हैं बहुत ही प्यार से, और उनकी खास दोस्त रोशनी जो है रोज बेल की ओर से बाकवा से जुड़ी हुई है, शोभा जी, साथ है अनुषा, शर्वीना, अवनीश, अर्नवी, उनकी प्यारी बहन जय प्रेमिला जयमंगल जो है मूर्छिदा से, साथ ही साथ राधा बाल गोविंद और वीना जी क्लाविट से हमेशा साथ देते हुए, विजय बंथन और उनके सभी दोस्त, सभी परिवार, उनकी प्यारी पत्नी रेखा, तीन प्यारी बहनें चंदनी, बिंदु, कुमारी, साथ ही साथ लाफलोगा से राजन लक्ष्मण जी हमेशा साथ

देते हैं माला जी, उनकी प्यारी पत्नी और दो प्यारी बेटियां प्रार्थना और प्रगति। फ्लोरियाल से माधुरी जी भी जुड़ चुकी है, काट्रोपोन की ओर से माला सुमारू जी और उनके प्यारे पति सूर्यदेव। ब्रांडुवा साउथ ईस्ट से जुड़ी हुई हैं शीला जी, पति साजन, बेटा विकास और गौसों, और साथ ही साथ डेजी रानी आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पोम्पलेमूस से। आपकी प्यारी नातिन मनीषा लखू का जन्मदिन था 27 तारीख को। चलिए मनीषा, आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहेंगे। आपके प्यारे नाती जिलान मास का जन्मदिन था 26 तारीख को, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। चार बेटियाँ हैं, चार दामा, दो बहन भाई हैं, विजय कुमार रामयाल, साथ ही साथ बेटा राजीव, बहू है इलीना, दो नातिन है रूही, इलेश और साथ है केशा, और नातिन मिली, साथ ही साथ बिल्कुल नातिन मिली का जन्मदिन है, और बिल्कुल 30 तारीख को आप अपना जन्मदिन मनाएंगी मिली, यानी कल। मामा फिदू है, भाई है दिलान और पापा माजिगे के ओर से, और साथ ही साथ किशोर इलियाना की ओर से सभी माता बदल कलकतिया और लकू परिवार का बहुत बहुत प्यार। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देवी जी, साथ ही साथ अनीता लाल जी मौडालबेया की ओर से, गोगा परिवार, नागेश्वर परिवार और रितु परिवार के साथ। यहाँ पर गर्मा गर्म मैसेज आ पहुँचा है विश्वानी दुमन का, जो रहती है वाकवा, बहुत ही बढ़िया गानों का सिलेक्शन, थैंक यू सो मच, बस आप ही को खुश करने की कोशिश। नोएल फॉन्स से जुड़ी हुई है गायत्री जी, बेटा जय मामी कल्याणी मोहन मेबर्ग से, भाभी है शकुंतला मोताइलोंग से, और आपकी प्यारी सखी गीता बाई। सुदेवी जी भी जुड़ चुकी है मौका से, अमृता जी साथ दे रही हैं ओकुले से। रिवेजुपुस से जुड़े हुए हैं उदय जी, प्यारी पत्नी संगीता के साथ दो प्यारी बेटियां स्मृति और कीर्ति, दामाद है नागेश, समधन है ज्योति जी, समधि जी सुनील, और वाशेगी से अभी हमारा साथ दे रहे हैं और प्यारा नाती के यान। काट्रोबोन से है स्वस्ति जी, प्यारी बेटी लेखानी और बेटा है सुमित। वाशेगी से जुड़ी हुई है लीला जी, उषा जी हमारा साथ दे रही है भामसान से। मौडालबेया की ओर से हैं इंदिरा लॉटन। घोंबा से साथ दे रही हैं शिवरानी जी, साथ है आपके प्यारे बेटे सुधीर शर्मा सुनाही, और बहू रोशनी जो है काट्रोबोन से, साथ है शिरीष, शिखा, शिवान, आपके बेटे राज, बहू आरती जो है घोंबा से, उनके बेटे यश, बहू अंजलि, बेटा कबीर, साथ है आपकी प्यारी बेटी शर्मिला सीचन और उर्मिला रघुबा, उर्वशी रघुबा, माफ कीजिएगा, साथ ही साथ कृष्ण कुमारी गौरीशंकर जो है यूके से, और आपके प्यारे भाई उमाकांत दीपचंद जो रहते हैं बुबा से। सुनीता जी हमारा साथ दे रही हैं घोंगोप से, साथ हैं आपकी तीन प्यारी बहनें विमला, अमृता और वीना। अमृता जी के साथ बिल्कुल वीना जी साथ दे रही हैं, और विमला जी का बेटा आज बिल्कुल विदेश जा रहा है, उनको कहेंगे बॉन वायाज। कमला जी कातकोको से साथ दे रही हैं रामेन परिवार और सीपोल परिवार के साथ, और यहाँ अनीता जी भी जुड़ चुकी है रोजल से, आपको भी कहेंगे प्रणाम। लीलो जी साथ दे रही हैं गौबुआ से, साथ है आपकी प्यारी सखी शीला जी, गीता जी और आपके दोस्त किशोर जो हैं खेतों में इस वक्त काम करते हुए। आपके प्यारे नाती आविश पलकधारी का जन्मदिन था किस दिन, उनकी प्यारी बहन अंशनी, मामा आरती और मामू है सुबिराज। चलिए आविश, आपको कहेंगे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। देपिने से शीला जी भी जुड़ चुकी हैं, सेंट जूलिया विलाज से नीता खिदनी भी साथ दे रही हैं, आपकी प्यारी सखी स्वादिका जो हमेशा साथ देती हैं बेल्वेडिया की ओर से। उषा जी हाईलैंड से जुड़ी हुई हैं कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ। गुश्तिया से कल्याणी जी साथ दे रही हैं, कोग मॉडल से हैं सुधा जी, हमेशा पुराने गीतों को बहुत पसंद करती हैं। रोजबेल की ओर से नवीन लक्ष्मण जी हमेशा की तरह साथ देते हुए, आपकी प्यारी पत्नी चित्रा जी, साथ ही साथ निवेदिता और सच्चिदानंद जी मेबक की ओर से। मौडालबेया से जुड़े हुए हैं ललिता और धनराज चरण जी, प्यारी बेटी स्वीटी के साथ। न्यूग्रोव से हैं राज और अमृता उभिलक, और रमेश और प्रीति जी हमारा साथ दे रहे हैं घोंबुआ की ओर से। क्योपिप से गीता जी साथ दे रही हैं, और हमारे किरण बारोट जी जुड़ चुके हैं उनकी प्यारी पत्नी नम्रता के साथ, बेटी है नियति, बेटा है मयूर, दामाद है सर्वेश और दो प्यारे नाती के साथ, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यार से साथ दे रही हैं नालिनी जोखन जो है वाकवा की ओर से, और बिल्कुल यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं दादा बाल्मीक,
दादी शीला, पापा कमलेश, मामा

सावी और प्यारा सायांश उजागिया परिवार जो है रोजबेल की ओर से, और आशना तोरल जो हमारा बहुत ही प्यार से साथ दे रही हैं इस वक्त, सुनीता मुलाय जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं, उनके दो प्यारे बेटे संजीव और कुशल, बहू है पूजा और प्यारी अनायशा और साथ ही साथ आशना। सभी मुलाय परिवार जो है नुवेल फ्रांस से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार। और इसी के साथ बिल्कुल अगर किसी का नाम छूट गया तो हम माफ़ी चाहते हैं, वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी के नामों को हम कार्यक्रम में शामिल करते रहें। जिंदगी में प्यार के अलावा सभी चीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, प्यार की अहमियत कम होती है, और प्यार की जब कमी होने लगती है ना तब जाकर हमें एहसास होता है कि जिंदगी में चाहे आप कुछ भी कमा लें पर अगर प्यार ना रहे तो जिंदगी बहुत बेरंगी लगती है। चलिए प्यार को बांटते रहें, प्यार बांटने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती, बस किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ही आ जाए ये भी प्यार है। तो हमारी ओर से प्यारा सा ये गाना आपके नाम छोड़े जाते हैं और यही गाना हमें जोड़ेगा 8 बजे के समाचारों के साथ। 8 बजे के बाद मुलाकात करवाएंगे आपकी देवानंद साहब से, तब तक के लिए बस गुनगुनाइए ये गाना।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सबके के नमस्ते। फजर के 8 बजलबा भोजपुरी में समाचार सुना जा। पेट्रोल की कीमत 70.65 रुपया से बढ़ के 77.70 रुपया प्रति लीटर हो गल बा। आर डीजल के दाम 71.25 रुपया से बढ़ के 78.35 रुपया प्रति लीटर हो गल बा। ये फैसला काल होल पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लेवल गल। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जनता के आश्वासन देवता की काल की समस्या के बाद आज स्थिति बेहतर करे खातिर जरूरी व्यवस्था करल गल बा। 50 नवा बस ड्राइवर और कंडक्टर NTC के कार्यबल में शामिल हो यंसा। STC के राशन चावल के सप्लाई के सुरक्षित बनाए खातिर वैकल्पिक इंतजाम तैयार करता।

0: एकर संगे संगे दुकान में सीधा वितरण के भी मजबूत करल जाए। एकर अलावा बोर्ड के बैठक के बाद बहुत जल्द एगो फैसला निकले के उम्मीद बा। आज खाद्य पदार्थ के बर्बादी और नुकसान के प्रति जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावल जाता। हर बरिस दुनिया भर में बड़ा मात्रा में ऐसन खाई के चीज फेंकल जाला जोन खाई के योग्य रहेला। सोशल मीडिया पर काल जारी एगो बयान में नाडेक अभिभावक लोग के भरोसा दिलैलक कि लैका लोग के कैंडीज के लेके घबराए के जरूरत नहीं बा, खासकर आजसू के हाल या चेतावनी के बाद। नाडेक के अनुसार कैनाबिनोइड छोला मिठाई उ सब कैंडीज से बिल्कुल अलग बा जो हमनी के दुकान और सुपर मार्केट में बेचाल जाता। नाडेक स्पष्ट कर ले बा कि ई मामला गल बरिस हवाई अड्डा पर खाली एगो महिला यात्री के भीड़ से करल गल जब्ती से जुड़ल बा। सांसद वेरोनिक लो के पति गुलशन गोविंद के काल रिवियनवा के जिला अदालत में जमानत दे देवल गल। उकर पर गांजा उगा के आर्मिटाडोन रखे के आरोप लगा रहल। अदालत मानेला कि भले ही संदिग्ध पश्चिमी तट के भीड़े रहेला और कुछ स्कीपर्स के जानेला, पर उकर फरार होई के खतरा पुलिस के खाली आशंका रहल। हालांकि उकर समुद्र तट से 200 मीटर के दायरा में जाए के अनुमति नहीं बा। गुलशन गोविंद फिलहाल हिरासत में ही रही, कहे कि उकर पर करीब 155 किलो गांजा आयात करे के साजिश के भी एगो अंतरिम आरोप बा। नाइट मार्केट जोन मौसमी दुकानदार लोग खातिर आयोजित करल जाला, साल के अंत में होई होला त्यौहार के देख के राजधानी के पूर्व देफोश गली में फिर से लगावल जाए। ई आयोजन 12 दिसंबर से आवत बरिस 4 जनवरी ले चली। एकर तैयारी अभी से शुरू हो गल बा और एकर से जुड़ल अलग अलग पक्ष के संगे बैठक और विचार विमर्श करल जाता। और दूसर देश के खबर में येमेन के सरकार और हुती विद्रोही लोग के बीच जारी घमासान लड़ाई के बुरा असर आम नागरिक लोग पर परता। विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले बाकी अबलेक यमन में 180,000 से जस्ती जना विस्थापित हो गल हवन सा। 6 अगस्त से शुरू होल ई लड़ाई में अबलेक 4,481 जना के जान चल गल बा। एक संगे भोजपुरी में समाचार पूरा हो गल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और सब कोई के नमस्ते।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
0: मरनी के खबर सुना जा। नंबर 3 बैतकालीन स्टैनले रोजिल में 77 बरिस के स्वसंजी सेतों के श्री पुनसामी पीले मुतुसामी जुन तौबी से जस्ती जानल जात रलन और पुराना पुलिस कॉपरल रलन गुजरगल हवन। अर्थी आज फजर के 10:15 उनकर घर नंबर 3 बैतकालीन स्टैनले रोजिल से उठा के कौलव्यू के श्मशान भूमि ले जल जाए। क्रिमेशन टू डेट 10:15 AM। मिमोजा रोड सैरेमी फ्लाक में 80 बरिस के 80 के श्रीमती सुभावती रामरखा जुन दादी मौसला फो से जस्ती जानल जात रलन गुजरगल हवन। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकर घर मिमोजा रोड सैरेमी फ्लाक से उठा के मेजिन कौंडमास्क के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे 1 PM। श्रीमेमाशेन पालमा काथोबोन में 74 बरिस के स्वसनका तोजों के श्री रामेश बकोरी जुन रामेश से जस्ती जानल जात रलन गुजरकल हवन। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकर घर श्रीमेमाशेन पालमा काथोबोन से उठा के गांधी पालमा के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे 2 PM। सुभाष चंद्र बोस लेन गांव पर दुपीमा में 37 बरिस के थनसेतों के श्रीमती नीलम हुसैन पैदाइश नाम कालचंद आज नीलम से जस्ती जानल जात रलन गुजरकल हवन। अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकर पिता रामचंद्र कुमार कालचंद के घर सुभाष चंद्र बोस लेन गांव पैतुपीमा से उठा के पैतुबिश के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टुडे 8 noon। टोमासन रोड खैफकिया में 79 बरिस के स्वसंजीवों के श्री सत्यानंद गोबिन जुन कोलम्बो से जस्ती जानल जात रलन गुजरगल हवन। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकर घर टोमासन रोड खैफकियो से उठा के खैफकियो के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे 1 PM। रॉयल रोड डिफ्रिया में

71 बरिस के स्वसंते उंसों के श्रीमती चंद्रावती विदेशी जो ललिता से जस्ती जानल जात रहन गुजर गल हवन अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटी अंबिका बिहारी के घर रॉयल रोड डेफ्रेयर से उठा के डेफ्रेयर के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। आंखें कातों उकुले में 51 बरिस के 57 के श्री शास्त्री गनगन्ना जोन बोडो से जस्ती जानल जात रहन गुजर गल हवन अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकर भतीजा विराज गनगन्ना के घर आंखें कातों उकुले से उठा के प्लेनमायों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 42 रूट कोकोटरी रोशबोआ में 69 बरिस के 69 के श्री मुनीलाल दुला जोन रोहित से जस्ती जानल जात रहन गुजर गल हवन अर्थी आज फजर के 10 बजे उनकर बेटा नेश्वर दुला के घर नंबर 42 रूट कोकोटरी रोशबोआ से उठा के सिपाही भूले वाले देवप्रत्र के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 69 अवेन्यू पेटुनिया मोसलमान मोरियाल कोरोमांडल में 76 बरिस के 76 के जनाब खालिक बगन जिन खालिक बगन से जस्ती जानल जात रलन आर करमची के पुराना कर्मचारी रलन इंतकाल कर गल हवन जनासा आज फजर के 10 बजे उनकर बेटा बिलाल बगन के घर नंबर 69 अवेन्यू पेटुनिया मोसलमान मोरियाल कोरोमांडल से उठा के रिश्ते के कब्रस्तान ले जाल जाए। Funeral today at 10 AM. Sir Virgilnaz Budden Lane, Rosil में 88 बरिस के 88 के Mrs. B.B. Hasma Magu, जोन हासमा से जस्ती जानल जात रहन इंतकाल कर गल हवन जनासा आज दिन के 11 बजे उनकर घर सर वर्जिलनाज बुडन लेन रोजिल से उठा के सैमौते मोहुश के कब्रस्तान ले चाल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। जितना जना शोक में बा उलोक के संगे हमने के हमदर्दी बा।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ। रेडियो मॉरिशस पर एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ। रेडियो मॉरिशस पर
2: रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ एक छोटी सी मुलाकात बिल्कुल इस सेगमेंट को लेकर। और आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे धर्मदेव पिशोरीमल आनंद जी से, यानी देवानंद साहब से, जिनका जन्मदिन था 26 सितंबर को। 26 सितंबर 1923 को जन्मे एक सुप्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक देवानंद साहब को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना गया है। और 6 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। और देवानंद साहब 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी अवार्ड उनको प्राप्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2001 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 2002 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार का सम्मान दिया गया। उन्हें प्यार से देव साहब या फिर सदाबहार के नाम से जाना जाता है। धर्मदेव आनंद जी को, यानी देवानंद साहब को, उनका जो जन्म था 26 सितंबर को, 26 सितंबर 1923 में गुरदासपुर, जो अब नरोवाल जिला पाकिस्तान में पाया जाता है, में उनका जन्म हुआ था। और उनका निधन 3 दिसंबर को 2011 को रात के 10 बजे लंदन में हृदयघात से हुआ था। वे भारतीय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार माने गए हैं, साथ ही साथ निर्देशक और फिल्म निर्माता भी रह चुके हैं। और उनके पिता जो थे किशोरीमल आनंद, जो पेशे से वकील थे, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। और देवानंद साहब के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी भारतीय सिनेमा के सफल निर्देशक रह चुके हैं। और उनकी बहन शील कांता कपूर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की माँ हैं। भारतीय सरकार ने देवानंद साहब को भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2002 में दादा साहब फाल्के का अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ। जब फिल्म की सफर की बात

0: करें तो देवानंद साहब काम की तलाश में मुंबई आए थे और उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में मात्र 160 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम करना शुरू किया। शीघ्र ही उन्हें प्रभात टॉकीज की एक फिल्म हम एक हैं में काम प्राप्त हुआ और उनको मौका मिला काम करने का। और पूना में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने जमाने के सुपरस्टार गुरुदत्त साहब से हो गई और कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्होंने एक फिल्म में उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई थी और सफल भी हुई। 1949 में देवानंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम था नवकेतन और इस तरह अब वो फिल्म निर्माता भी बन गए। देवानंद साहब ने अपने मित्र गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में चयन किया था और एक फिल्म का निर्माण भी किया जिसका नाम रहा बाजी। 1951 में प्रदर्शित हुई थी पर और काफी सफल भी रही। चलिए जिद्दी फिल्म का नाम लिया है 1948 का बहुत ही पुराना सा गीत है। आपको इस गीत की एक छोटी सी इसका एक छोटा सा मुखड़ा आपको सुनाते हैं। गाने के बोल है ये कौन आया,
1: ये कौन आया रे करके ये सोला सिंगार, ओ कौन आया

0: फिल्म जिद्दी के बाद उन्हें ब्रेक मिला फिल्म बाजी में और ये भी काफ़ी सफल रही 1951 में। बिल्कुल इस फिल्म में गायक कलाकार लता जी और किशोर कुमार और बाजी फिल्म के जो गायक कलाकार थे किशोर कुमार साहब उन्हीं की आवाज़ में रखा हुआ ये नटखट सा गाना।
1: अरे तेरी कसम मेरी जान तेरे

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: बिल्कुल 40s के दशक में, लेट 40s में उन्होंने कदम रखा फिल्मी दुनिया में, और इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड भी लिए हुए थी। जब राज कपूर की फिल्म आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद साहब की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी, और इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर जो बहुत ही हिट साबित हुई, और इस फिल्म में इनके साथ नजर आई थी कल्पना कार्तिक, जिन्होंने देव साहब के साथ विवाह किया 1956 में, और इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सुनील आनंद। और इसके बाद उनकी कुछ ऐसी भी फिल्में आईं जैसे मुनीम जी, CID, पेइंग गेस्ट। इसके बाद तो हर नौजवान उनके स्टाइल का दीवाना हो गया था, और उनका जो स्टाइल था अपनाने की हमेशा कोशिश में लगे रहते थे लोग। 1955 में उन्होंने उस ज़माने में के एक ऐसे सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ भी काम किया, और फिल्म का नाम था इंसानियत। 1958 में आई उनकी एक दूसरी फिल्म काला पानी। काला पानी के लिए बेहतरीन कलाकार के पुरस्कार से उनको नवाजा गया। इसके बाद उनके जीवन में सुरैया आई, जिनके साथ उन्होंने 6 फिल्मों में काम किया, और एक बार देवानंद साहब

साहब ने शूटिंग के दौरान सुरैया को पानी में डूबने से बचाया, तब से वो उन्हें प्यार करने लगी थी। लेकिन सुरैया की दादी धार्मिक कारणों के से इनके जो रिश्ते थे उनके खिलाफ थी। सुरैया आजीवन कुंवारी रह गई और देवानंद ने अभी कुछ ही समय पहले स्वीकार किया था कि वो उनसे सच में प्यार करने लगे थे। यदि उनकी शादी सुरैया के साथ हो गई होती तो उनका जीवन शायद कुछ और ही होता, ऐसा देव साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। 1965 में उनकी पहली रंगीन फिल्म प्रदर्शित हुई थी जिसका नाम था गाइड, और ये एक मशहूर लेखक आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित रही जिसका निर्माण उनके छोटे भाई विजयानंद ने किया था। और इस फिल्म में देवानंद के साथ नजर आई थी वहीदा रहमान। बिल्कुल, चलिए गाइड फिल्म की बात छेड़ी है तो गाइड फिल्म का ये गाना आपको सुनाते हैं।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आठ बजकर 32 मिनट और आज बिल्कुल हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देव साहब के साथ। और देव साहब बिल्कुल एक ऐसे लेजेंडरी कलाकार जिनकी स्टाइल को बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया, जिनकी हेयर स्टाइल को लोगों ने कॉपी किया। और बिल्कुल ये था गाइड फिल्म का गीत आर के नारायण की उपन्यास पर आधारित, जिसका निर्माण उनके छोटे भाई विजय नंद ने किया था। वहीदा रहमान इस फिल्म में नजर आई थी और ये फिल्म देव साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अब दोबारा गाइड कभी नहीं बन सकती। ऐसी फिल्म सिर्फ एक बार ही बनती है।

माला, तनुजा, अंजू, महिंद्रू और हेलन, और इसके बाद उनकी अगली फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। भाई फिल्मों के नाम तो हम बोलते रहेंगे, गाने कब चलाएंगे।

0: भाई उनकी स्माइल को देखकर बहुत हसीनाओं के दिलों की चैन बिल्कुल लुट चुके थे, और उनकी हंसी, उनकी स्माइल, उनकी जो कहते ना कि तिरछी नजरों वाली जो करामात वो दिखाते थे, आए हाय क्या बताएं। और जिस तरह से वो बाल बनाते थे, आज तक मुझे नहीं लगता कि हिंदी सिनेमा में किसी ने भी देव साहब के स्टाइल को हूबहू कॉपी कर पाए होंगे।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ।
0: वैसे कई सारे ऐसे कलाकार आए जो उनकी नकल करते थे, उनके तरह सर को हिलाना, उनके तरह टोपी पहनना, उनके तरह गले में रुमाल बांधना, पर देव साहब तो देव साहब। और बिल्कुल काला बाजार फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रखा, और बस ऐसा कहा जाता है कि 1970s में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म आई थी प्रेम पुजारी, जो सफल नहीं हो पाई। लेकिन अगले ही वर्ष उनके निर्देशित फिल्म हरे राम हरे कृष्णा ने बहुत सफलता का स्वाद लोगों को चखाया, और उनकी खोज जीना तमान ने जेनिस नाम की लड़की का किरदार निभाया था, जो माता पिता के तनाव से तंग आकर हिप्पियों के इस समूह में शामिल हो जाती है। वैसे आपको ये भी बताते चले, देव साहब ने बहुत सारी नई एक्ट्रेसेस को चांस दिया था, और इसी वर्ष यानी 1970s में उनकी एक और मूवी आई थी तेरे मेरे सपने, जो प्रदर्शित हुई, जिसमें उनके साथ थी मुमताज। और ये फिल्म ए जे क्रॉनन के उपन्यास द सीता दैल पर आधारित रही, और इस फिल्म को उनके भाई विजय आनंद द्वारा निर्देशित किया गया था। जीना तमान के बाद उनकी नई खोज थी टीना मुनिम, जिनके साथ उन्होंने 1978 में फिल्म की देश परदेश, और ये भी उनकी एक बहुत ही सफल मूवी रही। 1977 में उन्होंने राजनीतिक दल नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया था, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गई थी, और लेकिन ये राजनीतिक दल ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया था। देवानंद साहब की फिल्में उनके संगीत के कारण भी बहुत ही सुप्रसिद्ध रही, और उनकी फिल्मों का संगीत आज भी लोगों को बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देता है। और उन्होंने जिन कलाकारों को, जिन संगीतकारों को, लेखकों को, गायकों के साथ उन्होंने काम किया, उनमें से कुछ इस प्रकार थे: शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, कल्याण जी, आनंद जी, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, और लेखक रहे हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, नीरज, शैलेंद्र, आनंद बख्शी, गायक कलाकार रहे मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, मुकेश आदि। सितंबर के महीने में 2007 के वर्ष में आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ उनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रदर्शित की गई, और जहां भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी भी उपस्थित रहे थे। उनकी कई सारी फिल्में जो बहुत ही मनभावक रही, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना और गैम्बलर, साथ ही साथ जॉनी मेरा नाम, महल, प्यार मोहब्बत, गाइड, असली नकली, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, मंजिल, सरहद, लव मैरिज, 16 साल, बारिश, पेइंग गेस्ट, फरार, हाउस नंबर 44, वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं जिनको गिनवाना बहुत मुश्किल है। वैसे आपको ये भी बताते चले, तबू को भी देवानंद साहब ने ही लॉन्च किया था, हम नौजवान फिल्म में, जिसमें तब्बू ने उनकी बेटी का रोल निभाया था, हम नौजवान नामक ये फिल्म में। चलिए, देश परदेश फिल्म की बात अगर हमने छेड़ी ही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ये गाना ना चलाएं, क्योंकि उनके कुछ ऐसे गाने हैं, कुछ ऐसे गीत हैं जो सच में बिल्कुल हट कर रहे हैं। और जैसे हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि उनकी जो फिल्मों के गाने हैं वो आज भी लोगों को उतना ही प्रभावित करते हैं, तो चलिए इस गीत को लेते हैं।

देश में रहे परदेश में रहे जा भी रहे, देवानंद साहब के गाने आए हाय दिल को छूते रहते हैं। और चलिए इसी के साथ आखिरी गाना हीरा पन्ना फिल्म से लिया हुआ।

0: तो ये थे देव साहब और एक छोटी सी मुलाकात देव साहब के साथ, जिनका जन्मदिन अभी थोड़े दिन पहले गया और कल बेशक लता जी का जन्मदिन मनाया गया। ये थे हमारे भारत के दिग्गज कलाकार, बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे दिग्गज कलाकार जिनका डंका, जिनका परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। और इसी के साथ चलिए आज के इस कार्यक्रम के अगले सेगमेंट के साथ जुड़ने का समय हो चला है। किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर कार्यक्रम में आइए उनका हम स्वागत करते हैं।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने अमूर्त विरासत पर चर्चा कर रब जा, जैसे कैसे हम इस कब से अपन अमूर्त विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के जिंदा रखे खातिर काम करे। ये बात सबसे जरूरी है कि अमूर्त विरासत अपन जन समुदाय खातिर अर्थपूर्ण, प्रासंगिक यानी रेलिवेंट रही और नियमित रूप से एगो पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक एके पहुंचावल जाए। जैसे गीत गवाए तब तक सार्थक और प्रासंगिक रही जब तक मॉरिशस में विवाह संस्कार यानी शादी ब्याह होते रही और इस सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने आवता। ऐसा खतरा बनल रहेला कि कुछ अमूर्त विरासत सकी मर जाए या लुप्त हो जाए जे ओकर मदद नहीं करल जाए तब। लेकिन कोनो हाल में संरक्षण के मतलब ई नहीं है कि अपन अमूर्त धरोहर के फ्रीज करके रखबा और आगे के पुराना रूप हूबहू वैसे ही जबरदस्ती रखबा। अमूर्त विरासत के संरक्षण के मतलब है ज्ञान, कला, गुण और अर्थ के दूसरा तक पहुँचावे के, ओकर ट्रांसमिशन पर बल देवे के, मतलब एगो पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक पहुँचावे के। और ई जोन कन्वेंशन बा अमूर्त विरासत पर, ई में बोलल गल बा कि कोनो कला, कोनो गीत संगीत, नृत्य, वाद्य या कारीगरी के हूबहू पैदा चाहे नहीं करेगे। समय के साथ सब कुछ बदलेला। ई कन्वेंशन में ई बात साफ साफ बोलल गल बा कि कोई भी संरक्षण कार्य रही, कोनो भी गतिविधि, घटना, स्थिति के मजबूत बनावे के जहाँ मूर्त या अमूर्त विरासत फूली फली और आगे बढ़ी, हुआ पर चाहे ई बात के पूरा ख्याल रखे के कि नवा पीढ़ी तक पहुँचावे खातिर

0: फिर समय के साथ उ विरासत के जो बदलाव होता ओके आत्मसात करके आगे बढ़ल जाए अमूर्त विरासत के संरक्षण और कर ट्रांसमिशन तक मतलब कि एगो पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक पहुँचाइला तक जो उपाय बा वो मूर्त विरासत से अलग है। मूर्त विरासत के चाहे हु बहु रखे के चाहे ओकर संरक्षण जैसे ओकर मौलिकता रहल ओरिजिनालिटी रहल वैसे रखे के लेकिन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त विरासत के एकदम ओकर उल्टा है मतलब कि यहाँ पर आप सब परिवर्तन के स्वीकार करें। अब सवाल ये बा कि का चाहेला हमने के हर हाल में सब अमूर्त विरासत के संरक्षण करे के या ओके जिंदा रखे के जैसे जीवित शरीर में समय के साथ परिवर्तन होवेला कुछ खत्म होवेला तो कुछ नवा चीज आवेला वैसे ही अभिव्यक्ति के नवा रूप शुरू होवेला और ये भी हो सकेला कि कोनो अमूर्त विरासत भले ही कितने ही मूल्यवान काहे नहीं होई उ अपन जन समुदाय खातिर कोनो मायना कोनो महत्व नहीं रखेला और समय के साथ ओके छोड़ देवल जाता। कन्वेंशन में ये स्पष्ट रूप से बोलल गल बा कि उही अमूर्त विरासत के संरक्षण चाहे करे के जेकर संरक्षण जन समुदाय चाहता करे के जहाँ पर उ लोग के मान्यता बा जेके उ लोग अपन धरोहर के रूप में पहचाने लन सा और कोनो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण उ जन समुदाय के असहमति से नहीं चाहे करे के बल्कि उ लोग के सहमति से चाहे ई संरक्षण कार्य में आगे बढ़ेगी। तो ई रहा अमूर्त विरासत के संरक्षण पर थोड़ा टिप्पणी। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: तो चला इसी के साथ किरण जानकी जी के बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा और अमूर्त विरासत पर बहुत अच्छा जानकारी उदेलन और जैसे कि सब कोई जाना था वन की गीत गवाई भी यूनेस्को बगल से यूनेस्को देने से बिल्कुल शामिल करल गल बातें अमूर्त विरासत में और बिजमावती संपत जैसन ऐसन बहुत कलाकार हवन मुरीस के जे गीत गवाई पर बहुत गीत गईले हवन। त चला हाई गीत के संगे बधाई देवब जा सब कोई के जितना कोई शामिल हवन आज के इस कार्यक्रम संगे और आप सब कोई के याद दिला देवत हई ये गीत हमनी के जोड़ी 9 बजे के समाचारों के साथ 9 बजे के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम के जारी रखल जाये। चला इसी के साथ अभी तक के लिए हमारी और आपकी भेंट यहीं तक की थी और हमारी और आपकी मुलाकात दोबारा से होगी बिल्कुल 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में। तब तक के लिए

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मंगलवार 29 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर गीता जी आ चुकी है। गीता जी, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार सुमी, सभी को हमारा नमस्कार। पेट्रोल की कीमत 70.65 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71.85 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जनता को आश्वासन देती है कि कल की समस्याओं के बाद आज स्थिति बेहतर करने के लिए ज़रूरी व्यवस्थाएँ की गई हैं। 50 नए बस ड्राइवर और कंडक्टर NTC के कार्यबल में शामिल होंगे। STC राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर रही हैं, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है। आज खाद्य पदार्थों की बर्बादी और नुकसान के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल दुनिया भर में बड़ी मात्रा में ऐसा खाना फेंक दिया जाता है जो खाने योग्य होता है। सोशल मीडिया पर कल जारी एक बयान में नाडेक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि बच्चों की कैंडीज को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, खासकर आजसू की हालिया चेतावनी के बाद। नाडेक के अनुसार कैनाबिनॉइड्स वाली ये मिठाइयाँ उन कैंडीज से बिल्कुल अलग हैं जो हमारे दुकानों और सुपरमार्केटों में बेची जाती हैं। नाडेक ने स्पष्ट किया है कि ये मामला पिछले साल हवाई अड्डे पर केवल एक महिला यात्री के पास से की गई जब्ती से जुड़ा है। नाइट मार्केट, जो मौसमी दुकानदारों के लिए आयोजित किया जाता है, साल के अंत में होने वाले त्योहारों को देखते हुए राजधानी की पूर्व देफोश गली में फिर से लगाया जाएगा। ये आयोजन 12 दिसंबर से अगले साल 4 जनवरी तक चलेगा। इसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं और इससे जुड़े अलग अलग पक्षों के साथ कई बैठकें और विचार विमर्श किए जा रहे हैं। और विदेश खबरों में, यमन सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जारी घमासान युद्ध का बुरा असर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक यमन में 180,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 6 अगस्त से शुरू हुए घमासान युद्ध में अब तक 4,481 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

0: आज की चर्चा।
1: मंगलवार 29 सितंबर, आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस समय रेडियो मॉरिशस पर हो रहा है, साथ ही इसे आप लाइव देख पा रहे हैं MBC के चैनल 3 पर। साथ ही ये भी याद दिला दें कि इस प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर। साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही सपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। और इसका जो सीधा प्रसारण है ये हमारे MBC के वेबसाइट पर भी हो रहा है, MBC प्ले ऐप पर भी हो रहा है। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करें तो ये हर वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ दिनों पहले इस दिवस को मनाया गया। और शांति की बात करें तो शांति मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में

0: शामिल है। शांति का अर्थ केवल ये नहीं है कि युद्ध न हो या हिंसा न हो, शांति अपने आप में इससे भी बहुत बड़ा जो है पहलू रखती है हमारे जीवन में। सबसे पहले तो मन की शांति की बात करें तो उसकी आजकल सभी को बहुत आवश्यकता है। और आज के विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच आचार्य मनोज कुमार गौतम जी जुड़ चुके हैं। ऐसे तो आचार्य जी एक एस्ट्रोलॉजर है, साथ ही एनजीओ का हिस्सा रहे हैं, सामाजिक कार्यों में जो है अपना योगदान देते हैं, पत्रकारिता जो है हम कहे न्यूज़पेपर के साथ भी जो है इनका जुड़ाव रहा है, और समाज के सभी वर्गों के साथ इन्होंने कार्य किया है और बहुत ही करीब से जो है सभी समाज के पहलुओं को देखा है इन्होंने। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं आज के इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
0: और आचार्य जी, अगर हम शांति दिवस की बात करें तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, इसको मनाने का जो है शुरुआत कैसे हुई थी?
1: देखिए, अहिंसा परमो धर्म भारत में पहले ही एक ऋग्वेद का मंत्र है, और ये विश्व शांति पूरी दुनिया में शांति, अहिंसा, भाईचारे, सद्भाव और मानवता का संदेश देने के लिए मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य दुनिया में युद्ध, हिंसा और संघर्ष को रोकना, सभी देशों और लोगों के बीच आपसी सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के लिए ये इस रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो 21 सितंबर को प्रारंभ हुई थी, जिसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी कहते हैं, और हिंदी में तो है
0: अंतर्राष्ट्रीय
1: शांति दिवस है।
0: यानी कि पहली बार इसे 21 सितंबर 1982 को मनाया गया था, उसके बाद हर वर्ष जो है इसे मनाया जाता है, और शांति दिवस को लेकर बहुत सारी गतिविधियों का जो है आयोजन किया जाता है। और विश्व शांति दिवस मनाने की बात करें तो इसके पीछे अपना एक इतिहास भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन यदि किसी दिन को मनाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरा उद्देश्य ज़रूर होता है। तो यदि हम विश्व शांति दिवस की बात करें तो ये अपने आप में सभी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूनाइटेड नेशंस ने विश्व शांति दिवस मनाने का निर्णय क्यों लिया था आचार्य जी?
1: देखिए, यूनाइटेड नेशन ने विभिन्न देशों की सरकारें हों चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, तो शांति के लिए इसका संगठन का निर्माण किया था। और इसका जो यूनाइटेड नेशन ने विश्व शांति दिवस की स्थापना जो की थी वो 1981 में की थी जी। और इसकी शुरुआत के जो पीछे शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना था जी, इसलिए इसकी शुरुआत हुई।
0: बिल्कुल। और अभी के समय में अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो विश्व स्तर पर कितनी जगहों पर युद्ध लड़े जा रहे हैं, आपसी मतभेद है, एक देश दूसरे देश के खिलाफ है, और अभी के समय में इस शांति की आवश्यकता कुछ ज़्यादा ही है, इस पर आपके क्या विचार है?
1: देखिए, सबसे पहले विश्व शांति की अगर हम बात करें तो जापान की ओर से संयुक्त राष्ट्र को एक घंटी भेंट की गई थी, और इसमें विभिन्न अलग अलग देशों की एकता और शांति का प्रतीक बनी शांति की घंटी जी। और इस समय जो एक ऐतिहासिक निर्णय संयुक्त राष्ट्र ने लिया है तो ये 30 नवंबर 1981 को लिया गया था जी। और इसके पीछे इसको पारित करने का उद्देश्य यह था, अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति दिवस की स्थापना की, राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन आरंभ में ही कह दिया था कि भाई ये जो विश्व शांति स्तर का है तो ये शांति के आदर्श को बढ़ावा देना था।
0: बिल्कुल।
1: तो ये इसके पीछे ये था। और पहली बार ये कब मनाया गया, तो पहली बार ये सितंबर 1982 में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया
0: जी।
1: और उस समय इसकी तारीख के तीसरे मंगलवार को रखी गई थी
0: जी।
1: तो इसलिए हम इसको मनाते हैं। और 7 सितंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित किया सर्वसम्मति से कि इसके बाद हर वर्ष 21 सितंबर को स्थायी रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही इसे 24 घंटे के वैश्विक युद्ध विराम और अहिंसा के दिन के रूप में भी घोषित किया गया। तो इस समय आवश्यकता है जो हमने सोचकर स्थापना की थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने, तो हमें एक बार पुनः इसकी पहल करनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और चलिए, जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर अगर आपके मन में कोई विचार है या आप अपना अनुभव बांटना चाहते हैं या अपने विचार देना चाहते हैं, तो 402-8085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने विश्व शांति दिवस मनाने का जो निर्णय लिया था उसके पीछे तो उनका

0: उद्देश्य यही था कि विश्व में चारों ओर शांति हो। और अभी के समय में अगर हम देखें आचार्य जी, शांति की अगर हम बात करते हैं या जिस भी बदलाव को हम अपने जीवन में चाहते हैं, कहते हैं कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हम से होती है। तो पारिवारिक रूप से शांति का क्या महत्व है और क्यों आवश्यक है?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अहिंसा को बढ़ावा देना, लोग हों या विभिन्न देशों के लोग हों, ये हिंसा के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और समझौते का को लेके संवाद स्थापित होना चाहिए। और ऐसा ही हम अपने परिवार में भी, कि अगर कोई गलत फहमी हो रही है तो क्यों ना एक बातचीत के तरीके से उस चीज़ को हल किया जा सकता है। तो चाहे देश हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश हों, परिवार की आपने जहाँ तक बात की है तो कई बार परिवारों में भी जो झगड़े होते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं, तो हमें उसको नहीं होने देना चाहिए। तो इस पर हम प्रयास करेंगे तो शांति अहिंसा जरूर आएगी।
0: बिल्कुल, आपने कहा कि बातचीत से जो है बहुत सारी चीज़ों का हल मिलता है, लेकिन अभी के समय में बात करें और जहाँ पर शांति को हम अहमियत रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आजकल हमारे परिवारों में जो है एक दूसरे से लोगों की आपसी बातचीत ही कम हो गई है। एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया है और कम्युनिकेशन गैप के चलते मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गई है। हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। जब सामने वाला अपने विचारों को रखने का प्रयास करता है तो जो है उसे उस तरह का उत्तर नहीं मिलता है तो वो बात करना ही बंद कर देता है, सवाल जवाब करना ही बंद कर देता है। और इसके चलते जो है दूरियां दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और जब परिवार में दूरियां होती है तो वही जो है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में झलकता है, और जब वो समाज में जाता है तो ये जो है उसके मन में बैठ जाता है कि मेरी बात को कोई नहीं सुन रहा है। तो इस मानसिकता से हम किस तरह से लड़ सकते हैं?
1: देखिए, आजकल जो हमारा रहन सहन है और खान पीन है
0: जी,
1: तो खान पीन भी बहुत मायने रखता है
0: जी।
1: तो जो खाने की मतलब, आप एक हमारे यहाँ भारत में कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अब महिलाएं या पुरुष किचन में काम कर रहे हैं और मन में दौड़ रहा है उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ऐसा करना है, तो वो खाना जब आप खिलाओगे या खाओगे तो आपके विचार खराब होंगे
0: जी।
1: और जहाँ विचार खराब होंगे तो झगड़ा होगा। और आज के टाइम में शांति किसी को है नहीं, पीस कोई रखना नहीं चाहता, झेलना कोई चाहता नहीं, तो ये मुख्य कारण होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने खान पान को सुधार करना चाहिए। जब आप किचन में रसोई में खाना बना रहे हो तो कोशिश करें कि उस समय गायत्री मंत्र जपें,
0: यानी कि अच्छे विचार हो मन में, शुद्ध विचार।
1: बिल्कुल, एक मुझे घटना याद आती है, शायद मैंने पहले भी शायद आपको इसका चर्चा की थी कि हुआ क्या कि एक किसी का बेटा जेल में बंद था
0: जी।
1: अब उसने एक सपने में क्या देखा कि उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, मार दिया। अब वो सुबह उठ कर रोने लगा क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो उसके पिताजी मिलने के लिए आए, भाई क्या बात है, क्यों परेशान है? उसने कहा कि मैंने सपने में अपनी माँ को जो है मार दिया और मैं सोच भी नहीं सकता। तो उसके पिताजी ने जेलर से बात की कि ये बताओ इसको खाना किसने खिलाया था
0: जी।
1: तो पता लगा कि जो सजा याफ्ता था अपनी माँ के मर्डर में
0: जी,
1: उसके हाथ का बना हुआ खाना उसने खाया और उसके मन में ऐसे विचार आए। तो सबसे पहले हमें अपने खान पीन को सुधारना चाहिए,
0: यानी कि अपने विचारों को
1: सुधारना चाहिए।
0: यानी कि जिस भी कार्य को हम कर रहे हैं, फिर चाहे वो खाना बनाना हो या कोई भी क्यों ना कार्य हो, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अच्छे विचारों को लेकर जिस भी कार्य को हम करते हैं उस कार्य में एक तो हमें सफलता तो मिलती ही है, साथ ही उसके परिणाम भी अपने आप में अच्छे होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अभी के समय की बात करें तो आजकल जो है हमारे मन में काफी सारे विचार होते हैं, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है तुरंत एक चुटकी पर जो है हमें सारे न्यूज मिल जाते हैं। और ज्यादातर हम समाचारों की बात करें जो हमें सोशल मीडिया के जरिए मिलते हैं वो ज्यादातर नेगेटिव होते हैं, कोई यहाँ लड़ रहा है, कोई वहाँ बुराई है, यहाँ ड्रग्स है, वो है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे मानसिकता पर सीधा प्रभाव डालती है।
1: बिल्कुल,
0: तो अपने आप को थोड़ा सा जो है अपने चित्त को शांत करना भी बहुत आवश्यक होता है,
1: जरूरी है।
0: और शांति की अपने आप में सबसे पहली शुरुआत तो यही होती है ना कि शांति अगर मेरे भीतर नहीं है तो उस शांति के बारे में मैं बात कैसे कर सकती हूँ, तो बहुत ज़रूरी होता है। चलिए ऐसा करते हैं कि एक गीत के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं, फिर आज की इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: आज की चर्चा।
1: चलिए आप सभी को याद दिला दें, आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले इस दिन को मनाया गया और शांति का हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अपना अलग स्थान होता है। हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि उसके लिए शांति का

0: क्या महत्व है या वो शांति को किस तरह से देखता है। शांति का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि युद्ध ना हो या आपसी मतभेद ना हो, इसका संबंध व्यक्ति के मन की शांति से भी है। इस पर क्या आपके विचार है आचार्य जी?
1: देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दो तरह की शांति होती है, एक तो बाहरी और एक आंतरिक।
0: जी,
1: अगर हम इसे परिवार में भी लेकर चलें
0: जी,
1: तो हमें टाइम निकाल के जो बातचीत का गैप हो गया है उसको दूर करके हम बातचीत से हल निकालें। ऐसे ही अलग अलग देशों को भी करना पड़ेगा कि समय निकाल के, और जो ये इनके मन में आ गया ना, जैसे कि अलग अलग कंट्री है, मैं से बड़ा हूँ, ये मुझे करना है और बिना युद्ध के शांति नहीं होगी, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो हमें जो है सबसे पहले, जो हमारे बीच में हिंसा समय चल रही है, तो हमें सुरक्षा के साथ में सम्मान कैसे मिले, और एक दूसरे से हमें गहरा संबंध बनाना पड़ेगा। एक दूसरे से गहरा संबंध होगा तो तब जाके पीसफुल शांति आएगी। और आप ये कोशिश नहीं कर सकते कि अन्यायपूर्ण तरीके से प्रेशराइज करें किसी भी कंट्री को, या परिवार में किसी भी व्यक्ति को आप प्रेशराइज कर रहे हैं। तो अगर आप प्रेशराइज करेंगे और उसकी भावना को नहीं समझेंगे, या आपके अंदर ज़्यादा लालच होगा कि भाई जैसे मुझे अपने देश की क्षेत्र को बढ़ाना है, मैं इस पर जो है युद्ध करके अटैक करके कब्जा कर लूँगा, तो ऐसे तो शांति नहीं आएगी। तो शांति का जो सबसे वास्तविक जो इसका है, स्थायी शांति के लिए हमें आंतरिक संतुलन के साथ साथ हमें जो है सामाजिक न्याय, सुरक्षा, सम्मान, अवसर और क्या बोलते हैं आपका मानवीय गरिमा भी लानी आवश्यक है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और वहीं कहीं ना कहीं नियमों का पालन करना भी अपने आप में एक शांति का प्रतीक है। जब हम दो देशों के आपसी शांति की बात करते हैं, जैसे आपने कहा, लड़ झगड़ कर तो हम एक दूसरे पर अपना हक नहीं जता सकते हैं ना। यदि कुछ ठीक नहीं है तो बातचीत करके जो है हर जो है समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। वहीं पर नियम में रह के, अपने दायरे में रहकर हर एक कार्य को करना भी बहुत आवश्यक होता है। आपने सुरक्षा की बात की, शांति कहीं ना कहीं अपने आप में सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे आपसी सुरक्षा को महसूस करते, जैसे कि माता पिता के साथ है, तो एक बच्चा अपने आप में सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके माता पिता उसका ख्याल रखेंगे, उसको वो सारी चीज़ें देंगे जो उसका हक है, और वहीं पर उसको प्रेम भी देंगे। तो वहाँ पर शांति अपने आप एक रिश्ते में आ जाती है। वहीं पर सम्मान भी अपने आप में हर एक रिश्ते में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जहाँ पर सम्मान नहीं है वहाँ पर एक व्यक्ति ठहरता नहीं है। और दो देशों की बात करें तो एक दूसरे की संस्कृतियों को समझना, एक दूसरे की सभ्यता को समझना, एक दूसरे के कल्चर का सम्मान करना, ये भी अपने आप में शांति का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक होता है। और वहीं पर आंतरिक शांति का मतलब तो अपने आप में कुछ शब्दों में हम समझा नहीं सकते हैं। इस पर तो हमारे महर्षियों ने कितना जो है अध्ययन किया है, अपने आप को उस शांति के स्तर पर लाया है, तब जाकर वो जो है उस ज्ञान को, उस ऊर्जा को बांट पा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ और जोड़ना चाहेंगे इस पर आप?
1: देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमें जो है परिवार में या देश में प्रेम और सम्मान, और तभी हमारा एक विश्वास भी आगे बढ़ेगा। तो परिवार में क्या है कि जो कई विवाद इसलिए भी बढ़ते हैं ना, लोग या तो सुनना नहीं चाहते
0: जी,
1: या पूरी अपनी बात को बताना नहीं चाहते।
0: बिल्कुल।
1: तो यदि हम बजाय गुस्से हुए, क्रोध करें, हम पहले एक बात करना स्टार्ट करें भाई वो चाहते क्या हैं, तो फिर हमारा एक शांति का रास्ता इसमें ऐसे निकल सकता है। और यही नीति देशों को अलग अलग भी अपनानी चाहिए अगर वो शांति चाहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: देखिए, शांति इसलिए भी जरूरी है कि आपको एक दूसरे के विचार और भावनाओं को समझना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझते हैं तो झगड़ा, अटैक, ये सब कुछ होगा, हिंसा होगी, चाहे वो घर में हो और चाहे दोनों कंट्रियों के बीच में हो।
0: कहते हैं ना कि जहाँ पर संवाद होता है वहाँ पर गलत फहमी के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो अपने आप में जिस भी प्रकार की शांति की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत संवाद से होती है, आपसी बातचीत से होती है, आपसी समझ से होती है। 4028085 है नंबर हमारा। यदि आप भी आज के इस विषय पर अपने विचार बांटना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आचार्य जी, समाज में जाति की बात करें, धर्म की बात करें, भाषाओं की बात करें, विभिन्न संस्कृति की बात करें, सभी वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, सभी संस्कृतियाँ, हम मॉरिशस की बात करें, भारत की बात करें, अन्य बड़े बड़े देशों की बात करें, तो बहुजातीय होते हैं देश, जहाँ पर अलग अलग संस्कृति का सम्मान करते हुए हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये एकता को दर्शाता है, ये प्रेम को दर्शाता है। और किस तरह से एक साथ रहना हमें शांति की ओर ले जाता है?
1: देखिए, हमारे यहाँ एक उपनिषद में आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः,

0: तो जब हम ये कल्पना करेंगे कि सभी सुखी हों तो तब कहीं ना कहीं जाकर शांति का हल निकलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि नहीं जी ये तो मैं ही एकाधिकार करके वो कर रहे हैं और प्रॉपर चैनल से आप परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो फिर तो युद्ध की स्थिति बनती बनती है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे उसमें बड़े हों या अलग अलग कंट्री हो, अलग अलग देश हो, तो हम जब प्रयास करेंगे तो ही शांति आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक के अधिकारों का सम्मान भी होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं फिर वो मनमुटाव भी होते हैं और रीजन क्या है कि आपका गैप बढ़ जाता है, आप अपनी बात रख नहीं पा रहे या सुनना नहीं चाह रहे। दो चीजें हैं, एक आदमी अपनी बात को कहना चाह रहा लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे, और जब उसकी बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर युद्ध की स्थिति बनेगी, तो शांति कहाँ रहेगी।
1: और ये चीज परिवार में भी लागू होती है। जब अभी के समय की अगर हम बात करें, माता पिता ने जो समय अपने बचपन में देखा और अभी के बच्चे जिस दौर से गुजर रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है, एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप। तो माता पिता के सामने जब अभी का बच्चा अपने विचारों को रखता है तो माता पिता शायद उसे समझ नहीं पाते हैं या अपने समय से तुलना करते हैं, वही बच्चा जब माता पिता की बातों को सुनता है तो वो सोचता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपसी मतभेद, विचारों का मतभेद आरंभ होता है। और वहीं पर अगर एक दूसरे के साथ बैठ कर एक दूसरे की बातों को सुना जाए, समझा जाए, तो बहुत सारे जो गलत फहमियाँ हैं अपने आप दूर होती हैं। वहीं पर आपने अधिकारों की बात की, तो ऑब्वियसली अधिकार एक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, जो बेसिक राइट कहे, कॉमन राइट कहे, और उनको छीनना अपने आप में जो है अशांति का एक प्रतीक होता है। और आज शांति पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो कहते हैं कि शांति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एकता के साथ हम एक जैसे लगे, अलग अलग होते हुए भी हम एकता और शांति और सम्मान से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं।
0: देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, आपको सामने वाले की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे आपने कहा जनरेशन गैप आ गया, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। देखिए, अगर मैं अपना देखूं तो मेरे देखते देखते ही काफी गैप आ गया है। पहले का जो जीवन था, जीने का तरीका अलग था
1: जी।
0: और आज परिस्थिति चेंज हो गई है, वातावरण चेंज हो गया है, तो आज की जो जनरेशन है उनके हाथ में आज लैपटॉप है, मोबाइल है, तो हमें उसी तरह से उनके साथ में मिलके इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने समय से तुलना करके और उस बच्चे का बिहेव कर रहे हो तो आप नहीं सही से चला पाओगे, तो निभा जब ही पाएंगे कि आज की जो देश काल परिस्थिति है उसके अनुसार अपने विचार सामने वाले के साथ चेंज करने पड़ेंगे, तो इसलिए जरूरी है।
1: बिल्कुल, चलिए यहाँ पर विचारों की बात करें तो आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। एक और गीत के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक

0: आज की चर्चा।
1: चलिए यहाँ पर आज की चर्चा इस कार्यक्रम से आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सभी के साथ के लिए धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और ये नहीं है कि सिर्फ हर वर्ष 21 सितंबर को ही हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का पालन करें। शांति तो हमारे जीवन से हर रोज़ की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। अगर मन शांत नहीं होगा तो मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे, और अच्छे विचार नहीं आएंगे तो हम अच्छे कर्म कैसे कर पाएंगे। मन शांत नहीं होगा तो हम जीवन में अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे, और अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे तो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। मन शांत नहीं होगा, हमारा आसपास का वातावरण शांत नहीं होगा तो हम जीवन में प्रगति कैसे कर पाएंगे। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले तो जी नहीं सकते हैं, हमें जीने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, परिवार की आवश्यकता पड़ती है, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, समाज में जितने भी लोग हैं उन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं शांति की बात करते हैं तो ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। आचार्य जी, हमारा अगला प्रश्न आपके लिए होगा कि एक राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए शांति और स्थिरता क्यों ज़रूरी होती है?
2: देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बड़ी बड़ी इमारतें, उद्योग, आप इसको जो शांति नहीं कह सकते जी। जब तक आप अपने देश के लिए, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा हो जी, आपको अगर आप झगड़ा करते हैं और पीसफुल नहीं रहते हैं तो आपका जो संसाधन है, बड़े संसाधन है, जैसे आपकी आर्थिक इनकम आती है, वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी
1: जी।
2: जब आर्थिक इनकम आनी स्टार्ट होगी तो क्या होगा? तो आपस में झगड़ा होगा
1: जी।
2: अगर नागरिकों में असुरक्षा की भावना आ जाए तो उसको कैसे आप पीस करेंगे
1: जी? बिल्कुल।
2: उसकी असुरक्षा के लिए जरूरी है कि आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज हों, विद्यालय हों
1: जी,
2: और सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए नुकसान की भरपाई करने के लिए आपको विकास बहुत ज़रूरी है। और विकास जब ही हम कर पाएंगे, अगर हम झगड़ा करेंगे तो हमारे संसाधन का जो इतना पैसा है वो सारा खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो इसमें हम ये देखें कि उस नुकसान की भरपाई हमें कैसे करनी है, चाहे वो परिवार हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो। तो मेरे समझ से जो है, हमें आपसी जो शांति लाने का जो प्रयास करना चाहिए वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसी न किसी।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कि युद्ध और हिंसा से जनमाल का कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और रिसोर्सेस का बढ़ना जो है बंद हो जाता है, और कहीं ना कहीं रिसोर्सेस नहीं बढ़ेंगे एक देश में, एक समाज में, यदि

0: प्रगति नहीं होगी तो वहाँ के नागरिक कैसे प्रगति कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत अहम पहलू होता है जहाँ पर हमें जो है एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे के जो है डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, हमारे समाज के विकास के बारे में सोचना चाहिए। और विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास सिर्फ देश के विकास तक सीमित नहीं है, ये समाज भी इसमें जुड़ जाता है, एक परिवार भी जुड़ जाता है। क्योंकि जब देश प्रगति करता है, जब समाज प्रगति करता है, तो उस देश का हर नागरिक अपने आप में प्रगति करता है। और प्रगति कहीं ना कहीं शांति से जुड़ी हुई है, प्रगति कहीं ना कहीं हमारी सफलता से जुड़ी हुई है। तो ये सभी हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। और आचार्य जी, अगर हम विश्व स्तर पर बात करें शांति की, तो युद्ध है, हिंसा है, संघर्ष है, इसको कम करने के लिए शांति वार्ता और डिप्लोमेसी की क्या भूमिका है?
1: देखिए, हमें डिप्लोमेसी का अर्थ यह है कि हमें अलग अलग कंट्री के जो देश हैं, हमें जो है एक कूटनीतिक संबंधों की पहल करनी पड़ेगी
0: जी।
1: वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, अगर आप शांति चाहते हैं। और ये डिप्लोमेसी से आपका चाहे वो बातचीत का रास्ता हो, चाहे वो कूटनीति का हो, चाहे वो शांतिपूर्ण ढंग से, जब ही निकलेगा, जब हम प्रयास करेंगे तभी इसका समाधान निकलेगा। ऐसे समाधान नहीं निकलने वाला है। आज पूरी दुनिया में जो है ना, जो देश हैं उनके बीच में सीमा विवाद, संसाधनों को लेकर मतभेद, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और दूसरा राजनीतिक तनाव, तो ऐतिहासिक संघर्ष हो सकते हैं। अगर इन समस्याओं को केवल सैन्य बल से हमेशा संभव नहीं है शांत करना। और आप सोचते हो कि अब ब्लड के जरिए जो है किसी को कंट्रोल कर लोगे, नहीं, तो वहां पर भी आपको प्रयास करना पड़ेगा युद्ध विराम को लेके, तभी आप अपने नागरिकों की सुरक्षा कर पाएंगे।
0: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शांति वार्ता अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पहलू है हमारे जीवन में, क्योंकि बातचीत से ही जो है सभी समस्याओं का समाधान हमें मिलता है। और जब हम शांति वार्ता की बात करते थे, हर एक व्यक्ति में धैर्य होना भी बहुत आवश्यक होता है। अभी के समय में हम में धैर्य की कमी है, पेशेंस की कमी है। जिस भी चीज़ को हम चाहते हैं या हमारे मन में कोई भी इच्छा जागरूक होती है, तो ऐसा लगता है कि वो कब पूरी होगी, या जो चीज़ हम चाहते हैं वो ऐसा लगता है कि वो हमें अभी के अभी मिल जाए। और जब अभी के अभी एक चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम विचलित हो जाते हैं, और उसका जो है प्रभाव हमारे निर्णय पर पड़ता है, हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं शांति वार्ता अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है सभी के लिए। और अब हम बच्चों और युवाओं की बात करें, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, हमारे आने वाले कल का भविष्य है, एक देश का भविष्य होती है हमारे युवाएं। और युवाएं जो है आजकल बहुत सारे ऐसी चीज़ों से जुड़ गई है, चाहते ना चाहते हुए इंटरनेट के माध्यम से, जहाँ पर अच्छाई का सामना तो वो करते ही है, साथ में बुराई से भी वो बचे नहीं हैं। कभी गलत राह पर चले जाते हैं, कभी भटक जाते हैं। और बच्चों को अगर हम शांति के बारे में पढ़ाना चाहे या बताना चाहे, तो कौन से जो रास्ते हैं हमें अपनाने चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले ये है, जो भी राष्ट्र के बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। आपने स्टार्टिंग से उनको किस प्रकार का अनुशासन और संस्कार
0: जी
1: कैसे आपने दिए हैं, वो इस पर निर्भर करता है
0: जी।
1: क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके शुद्ध विचार हैं
0: जी,
1: तो फिर वो आपके मूल्य को भी सीखते हैं और आगे चल के वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, तो उसको प्रभावित करते ही करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही प्रेम है, करुणा है, अहिंसा है, इन सब का महत्व बचपन से ही सिखा देना, स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप अपने समाज, अपने परिवार या राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो नींव है वो हमारे बच्चे हैं
0: जी।
1: तो आपको आज ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अपने बच्चों को आप किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं। और फिर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि खान पीन बहुत मायने रखता है
0: जी।
1: तो अपने बच्चों को खान पीन शुद्ध खिलाओ। आजकल आप देखते हैं कि फास्ट फूड बहुत आ रहा है, अब वो फास्ट फूड कहाँ आपके अच्छे विचारों को बनने देगा,
0: वो आपको वो पोषण नहीं देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल। तो सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है वो बच्चे हैं। हमने बच्चों के खान पीन, किस तरह के संस्कार, अगर वो बच्चा संस्कारपूर्ण निकलेगा तो फिर जानता है, चाहे वो देश हो चाहे दूसरा देश हो, कि आपस में संबंध कैसे बना के डेवलप करने हैं और कैसे शांति स्थापित करनी है। तो हमें अपने बच्चों को, युवाओं को समझना जरूरी है कि वो अभी क्या चाह रहा है, क्या उसके करने के मन में है। तो आपको उसको पॉजिटिव विचार देने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा घर से बाहर जा रहा है, वो किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, देखिए, एक हम जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो एक हमारे प्रोफेसर थे, बोले अगर किसी का करेक्टर

0: पता करना हो तो आप उसको मत देखिए, वो कैसे लोगों के बीच में उठता बैठता है तो उसका करेक्टर सामने आ जाएगा
1: जी। इसलिए तो अच्छी संगति को बहुत ही महत्व दिया जाता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कि अच्छी संगति में हमें रहना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, मतलब कि ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जहाँ पर पॉजिटिव विचारों का आदान प्रदान हो रहा हो, लोग देश के बारे में बात कर रहे हो, लोग प्रगति के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पर लोग एक दूसरे के बारे में ना बात करते हुए ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो जो हमें प्रगति की ओर ले जा रहा है, जो हमें सफलता की ओर ले जा रहा है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और वही अगर हम अपने युवाओं की बात करते हैं, अपने बच्चों की बात करते हैं, तो शिक्षा एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कहते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं होता है, शिक्षा अपने आप में जो है सभी पहलुओं को दर्शाता है।
0: देखिए हमारे यहाँ आया विद्या ददाति विनयम
1: जी,
0: पहले तो विद्या से हमें विनय मिलता है
1: जी।
0: तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, चाहे उसमें आपके परिवार या देश हो। तो जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे, विनयपूर्ण व्यवहार करेंगे, तो फिर निश्चित तौर से वो राष्ट्र या वो परिवार या वो फैमिली अवश्य तरक्की करते हैं। और यही तरक्की करने का एक माध्यम है, रास्ता है, चाहे वो आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, और आर्थिक रूप से हैं तो आपको अपने परिवार को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही बात राष्ट्र पर लागू होती है।
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शिक्षा की बात करें तो शिक्षा हमारी जो प्रणाली है उसमें शांति के महत्व पर भी थोड़ा सा विचार करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो चीज़ें सीखते हैं उसी को तो अपने जीवन में लागू करते हैं।
0: देखिए आज हमारे यहाँ ना दो तरह की पढ़ाई होती है, विद्याएँ होती हैं। तो जो आजकल एजुकेशन दी जा रही है ना, वो उसको बोलते हैं संस्कृत में अर्थकारी विद्या, कि जिस सीधा मतलब हमने मान लो इंजीनियर बने, चाहे टेक्निकल बने, डॉक्टर बने, तो डिग्री लेती हमें पैसा आना स्टार्ट हो गया
1: जी।
0: लेकिन कहीं हम जो संस्कार देना भूल जाते हैं, तो अब सभी लोग क्या है कि वो जा रहे हैं आर्थिक मजबूत करने के लिए। लेकिन जो हमारे यहाँ एक संस्कार होने चाहिए, शांति कैसे मिलेगी, वो चीज़ की शिक्षा हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं।
1: अभी के शिक्षा प्रणाली की बात करें तो कहीं ना कहीं इस पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। हॉलिस्टिक लर्निंग की बात करें तो बच्चों को अपने आप पर, अपने मन पर काबू रखना, अपने विचारों पर काबू रखना, अपने आपसी, जैसे कि आपने कहा कि ना कि एक बच्चे में प्रेम की भावना होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए, इस पर भी विचार किए जाते हैं और इस पर भी काफ़ी कार्य हो रहा है। क्योंकि समय के साथ, समय की जिस तरह से, मतलब कि समाज की जिस तरह से डिमांड होती है, एजुकेशन प्रणाली में भी उस तरह के जो है बदलाव आते हैं, और समय के साथ काफ़ी पॉजिटिव बदलाव हम देख भी रहे हैं। और अभी अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आज के युग में सोशल मीडिया में हमें नफरत दिखाई देती है, अफवाह दिखाई देती है, मिस इन्फॉर्मेशन दिखाई देता है, और ये सब जो है कहीं ना कहीं विश्व शांति के रूप में एक बाधा के रूप में कार्य करता है। तो किस तरह से इन अफवाहों से हमें बचना चाहिए?
0: देखिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तकनीक का जो है ना दुरुपयोग कर रहे हैं। अब कहीं कोई घटना घटती है, कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक कर रहा है, वो तुरंत एकदम सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ से बाहर आता है, अमेरिका अलग अलग कंट्री में, वो सेकंड नहीं लगती उसको जाने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि तकनीक को जो हमारे पास है उसमें ऐसे अवसर ना हो ताकि उसका गलत इस्तेमाल हो, अफवाहें हो या धार्मिक भावनाओं को आहत करना हो, ये सब अगर करेंगे तो इसमें सामाजिक तनाव ही पैदा होगा
1: जी।
0: तो हमें सोशल मीडिया को इस तरह से लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में, उसको नेगेटिव ना लिया जाए। ये देश पर भी लागू होता है और विदेशों में भी लागू होता है।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: तो चलिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक और गीत के साथ कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं और फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: आज की चर्चा।
1: तो चलिए शांति की बात करें तो हर एक प्रमुख धर्म हो या आध्यात्मिक परंपराएं हो, हर एक धर्म अपने आप में शांति का प्रचार करता है। सभी चाहते हैं कि सभी मिलजुल कर रहे, एकता से रहे, प्रेम से रहे, एक दूसरे का सम्मान करे। उसमें शांति आ जाती है, दया आ जाती है, प्रेम आ जाता है, अहिंसा आ जाता है, करुणा आ जाती है, और ये भी आता है कि किस तरह से हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे के हित के लिए कार्य करें। और हर एक धर्म अपने आप में शांति को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, फिर चाहे वो सनातन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, सिख हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, और हर एक का अपने आप में यही उद्देश्य होता है कि सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, क्योंकि समाज और देश की प्रगति कहीं ना कहीं इसी पर आधारित होती है। इस पर आपके क्या विचार है आचार्य जी?
2: देखिए, कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि आप किसी के विचारों को हनन करो, किसी को मारो। हर धर्म यह सिखाता है कि आप भगवान को माने और शांति से अपने जीवन यात्रा को जिए। अभी अगर हम बात करें, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, आचार्य हूँ, तो हमारे यहाँ भी कहा गया था उपनिषद में कि सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा वही तेजस्विनावधितमस्तु माँ विदुषा वही। माने कि हम दोनों की रक्षा हो, हम दोनों का पोषण हो, और हम साथ मिलके परिश्रम करें,

0: कठिन परिश्रम करें और हम तेजस्वी हों और एक दूसरे से द्वेष ना करें, तो तब कहीं जाकर हम अपनी जीवन यात्रा को सुखद और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। और दूसरा, हमें एक दूसरे के धर्म का भी मान सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे धर्म का मान सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर रास्ता युद्ध पे जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को भी छोड़ना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: उन परंपराओं के साथ अगर आप जिएंगे जीवन यात्रा, तो जीवन यात्रा आपकी सुखद होगी।
1: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं अपनी जड़ों को ही अगर हम छोड़ देंगे तो फिर कहाँ पर, कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। लौट कर तो हम वहीं आते हैं जहाँ से हम अपनी शुरुआत करते हैं ना। हमारी संस्कृति की बात कर ले, हमारी सभ्यता की बात कर ले, और हर एक व्यक्ति को जो है अपने कल्चर का सम्मान करना चाहिए। वहीं पर अपने माता पिता के जो है उपदेश है उनका भी पालन करना चाहिए। जो नीतियाँ एक देश जो है ये बनाता है, उन नीतियों का भी पालन करना चाहिए। क्योंकि हम शांति में अगर मिलजुल कर रहना चाहते हैं, इन सभी बातों का पालन नहीं करेंगे तो शांति कहीं से नहीं आ सकती। और गांधी जी ने कहा भी है ना कि जो भी बदलाव हम अपने जीवन में या समाज में लाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है। तो यदि हम समाज में शांति चाहते हैं, देश में शांति चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे मन का शांत होना बहुत आवश्यक है, हमारे मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। आचार्य जी, कार्यक्रम का जो है लगभग समय समाप्त होने को चला, जाते जाते कोई संदेश है जो आप सबको देना चाहेंगे?
0: देखिए, जैसे समुद्र का निर्माण कैसे होता है कि बहुत छोटी छोटी नदियाँ आके वो सारा पानी, सारा जल समुद्र में समाहित हो जाता है, लेकिन समुद्र ने कभी अपनी सीमा नहीं लांघी, वो अपनी मर्यादा में रहता है। तो जैसे इतनी सारी नदियों का जल लेकर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, तो ऐसे ही हमें मर्यादा में रहकर समुद्र की तरह से अपनी जीवन यात्रा करनी चाहिए।
1: तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप जुड़े। कहते हैं कि शांति किसी की संपत्ति नहीं है, शांति अपने आप में सबका हक है, और इस शांति को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य भी है।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए, इतने प्रेम से आज भी आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। पुनः एक अलग विषय के साथ आपके साथ हम ज़रूर जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रोडक्शन टीम और टेक्निकल टीम को। रत्नमाला जी को हम धन्यवाद देंगे, अपर्णा का तकनीक पर साथ मिला, और साथ ही हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका, आपका भी धन्यवाद। सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आपको याद दिला दें, इस कार्यक्रम को आप दोबारा देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर आज ही दोपहर के 4 बजे। साथ ही आज से आप दोबारा सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
0: मेरी तरफ से भी सभी को नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

0: नमस्कार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी लाई गई है। पेट्रोल 70.65 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71.25 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कल मध्यरात्रि से नए दाम लागू किए गए हैं। ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच ईंधन की कीमतों की दोबारा समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर कल जारी एक बयान में नाडेक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि बच्चों की कैंडीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, खासकर आंसू की हाल या चेतावनी के बाद। नाडेक के अनुसार कैनाबिनोइड्स वाली ये मिठाइयाँ उन कैंडीज से बिल्कुल अलग हैं जो हमारे दुकानों और सुपरमार्केटों में बेची जाती हैं। नाडेक ने स्पष्ट किया कि ये मामला पिछले साल हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री के पास से की गई जब्ती से जुड़ा है। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस हृदय रोगों, उनके कारणों और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व कार्डियोलॉजी दिवस विश्व हृदय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हृदय दिवस के रूप में जाना जाने वाला ये विश्व अभियान शिक्षा, सामुदायिक कार्यक्रमों और सक्रिय अभियानों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। ये हृदय स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है, क्योंकि हृदय रोग विश्व में मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है, जिससे हर साल 17.9 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। और विदेश खबरों में, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से कम 62 लोग मारे गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों में भेजा गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। श्रीमेमाश्रीन पाल्मा काथोबोन में 74 साल के 74-year-old के श्री रामेश बकोरी, जो रामेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल बुधवार 30 सितंबर को दिन के 2 बजे उनके घर श्रीमेमाश्रीन पाल्मा काथोबोन से उठाकर गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

नमस्कार श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। मैं हूँ रत्ना, आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो चुकी हूँ। भक्तिमय यात्रा में आप सभी का हृदय की गहराई से हम स्वागत करते हैं। हमारा करजोड़ अभिवादन स्वीकार करें। आप सभी को याद दिला दें, आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे वेद सुधा का कार्यक्रम आचार्य सुदेश बद्री जी की प्रस्तुति में। तो चलिए सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं इस प्रथम गणेश भजन द्वारा।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन है। आज का कार्यक्रम तीन भागों में विभाजित है। प्रथम वेद पाठ एवं भावार्थ, द्वितीय एक प्रेरणादायक भजन, और अंत में

एक वैदिक मंत्र की गहन व्याख्या। तो आइए वेद पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम यम रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा न किहि सदभ्यते जनः। जो मनुष्य चाहता है कि मुझे कोई दबा नहीं सके, सता नहीं सके, नष्ट विनष्ट न कर सके, तो उसे चाहिए कि वह ज्ञान स्वरूप सर्वश्रेष्ठ परम स्नेही सर्वांतर्यामी न्यायकारी प्रभु की शरण में जाए। वह ज्ञानी वर्णीय स्नेही न्यायप्रिय विद्वानों की शरण में जाए। ओम क इमं नाहुषित श्वा इंद्रम सोमस्य तर्पयात् स नो वसुन्या भरात्। मनुष्यों को चाहिए कि उन्हें प्रभु से जो भी धन अन्न आदि सुख सौभाग्य प्राप्त हों, वे उन्हीं के भोग में ही सदा डूबे न रहें, वरन उन सब से ऊपर उठकर उस प्यारे प्रभु का भी हृदय से धन्यवाद करते हुए उसकी श्रद्धा भक्ति से आराधना किया करें। ओम आत्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवा नत्वामिन्द्रातिरिच्यते। ये सरिताएं जैसे दौड़ती भागती हुई समुद्र में घुसकर अपना नाम रूप खोकर तद्रूप हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जिन्होंने भक्ति रूपी सोम रस से अपने हृदयों को आप्लावित कर लिया है, ऐसे भक्त जनों को चाहिए कि वे तप स्वाध्याय और ध्यान भजन आदि के द्वारा बड़े उत्साह से बड़ी उमंग से बड़े ही वेग से निरंतर आगे बढ़ते हुए उस प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए उसमें ऐसे प्रविष्ट हो जाए, उसमें ऐसे खो जाए कि फिर उनको अपना नाम रूप भी स्मरण न रहे। ओम न किष्टं कर्मणा न सद्यश्चकार सदा वृधम् इन्द्रं न यज्ञैर्विश्वगुर्तं रिप्पसमृष्टं घृतस्मोजसा। जिसने अपने उत्तमोत्तम कर्मों से परमेश्वर्यवान प्राणप्रिय प्रभु को अपने अनुकूल बना लिया, फिर यह संसार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ओम शांति शांति शांति।

व्याकरोत् सत्यान्द्रिते प्रजापतिः अश्रद्धामन्द्रिते अश्रद्धां श्रद्धा सत्ये प्रजापतिः। प्रिय श्रोतागण, पठित मंत्र यजुर्वेद का है। यह मंत्र मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वैदिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसमें सत्य और असत्य के बीच विवेक करने, सत्य के

प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने तथा असत्य के प्रति अश्रद्धा अर्थात अरुचि और अप्रीति रखने की शिक्षा दी गई है। वैदिक धर्म का मूल उद्देश्य केवल किसी मत या परंपरा को स्वीकार कर लेना नहीं है, बल्कि मनुष्य को सत्य का अन्वेषण करने, असत्य का त्याग करने और प्रमाण पूर्वक सत्य को जीवन में धारण करने योग्य बनाना है। श्रोताओं, इस दृष्टि से यह मंत्र मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक जीवन का अत्यंत गंभीर मार्गदर्शन करता है। यजुर्वेद के इस मंत्र को परंपरागत भाष्य में सत्य और असत्य को पृथक पहचानने तथा असत्य में अश्रद्धा और सत्य में श्रद्धा स्थापित करने के रूप में समझा गया है। श्रोतागण, मंत्र में कहा गया है, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः। यहाँ दृष्ट्वा का अर्थ है देख कर, जान कर या यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके। रूपे से तात्पर्य स्वरूपों से है और सत्यानृते अर्थात सत्य और अनृत, सत्य और असत्य। व्याकरोत का अर्थ है पृथक पृथक स्पष्ट करना, उनका स्वरूप निर्धारित करना अथवा उनका विवेक करना। प्रजापति प्रजाओं का पालक और रक्षक परमेश्वर है। अतः मंत्र का भाव यह है कि परमेश्वर ने अपनी सर्वज्ञ सत्ता और व्यवस्था के द्वारा सत्य और असत्य के स्वरूप को पृथक किया है, अलग किया है, जिससे मनुष्य उनका विवेक कर सके। महर्षि दयानंद सरस्वती भी इस मंत्र में प्रजापति को प्रजा के रक्षक परमेश्वर के रूप में ग्रहण करते हुए सत्य और असत्य के विवेक पर बल देते हैं। श्रोताओ, यहां सत्य और अनृत को समझना अत्यंत आवश्यक है। सत्य केवल इतना नहीं है कि मनुष्य झूठ न बोले। सत्य का व्यापक अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना, मानना, कहना और व्यवहार में लाना। इसके विपरीत अनृत वह है जो यथार्थ के विपरीत हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं लिया और फिर भी वह कहे कि मैंने वह कार्य किया है, तो यह असत्य है। यदि कोई व्यापारी वस्तु की वास्तविक गुणवत्ता छिपाकर ग्राहक को भ्रमित करता है, तो यह भी अनृत है, असत्य है। इसी प्रकार अपने लाभ के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाना भी असत्य है। श्रोताओ, मंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है, अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्ये प्रजापति ही। अर्थात परमेश्वर ने असत्य में अश्रद्धा और सत्य में श्रद्धा स्थापित की है। यहां श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। वैदिक दृष्टि में श्रद्धा विवेक, ज्ञान, सत्य के आधार पर उत्पन्न होने वाली दृढ़ निष्ठा है। जिस सत्य को मनुष्य परीक्षा, प्रमाण, तर्क और यथार्थ ज्ञान से समझता है तथा फिर उसे जीवन में धारण करने की दृढ़ इच्छा रखता है, वही वास्तविक श्रद्धा है। इसीलिए वैदिक श्रद्धा आंखें बंद करके किसी बात को मान लेने का नाम नहीं है। महर्षि दयानंद के वैदिक सिद्धांत में भी सत्य को स्वीकार करने और असत्य को छोड़ने का यही मूल विचार दिखाई देता है। सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ में ही उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है कि मनुष्य को सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करने में सदा उद्यत रहना चाहिए। इस प्रकार वैदिक श्रद्धा बुद्धि विरोधी नहीं, बल्कि
सत्य

0: ज्ञान पर आधारित है। सत्य का ज्ञान होने के बाद उसके प्रति प्रेम और उसके आचरण की दृढ़ता ही श्रद्धा को सार्थक बनाती है। श्रोताओं, इस मंत्र की एक अत्यंत गहरी शिक्षा यह है कि मनुष्य को केवल सत्य बोलना ही नहीं चाहिए, बल्कि सत्य के प्रति आंतरिक श्रद्धा विकसित करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सत्य को सही तो मानता है, परंतु व्यवहार में झूठ बोलता है, तो उसका ज्ञान अभी पूर्ण रूप से चरित्र में परिवर्तित नहीं हुआ। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति असत्य को गलत जानता है, फिर भी स्वार्थ के कारण उसे अपनाता है, तो उसकी बुद्धि और आचरण में विरोध उत्पन्न हो जाता है। वैदिक जीवन का उद्देश्य इस विरोध को समाप्त करना है। श्रोताओं, मंत्र का मूल संदेश अंततः मनुष्य के अंतःकरण के निर्माण से संबंधित है। केवल बाहरी नियम मनुष्य को सच्चा नहीं बना सकते, जब तक उसके भीतर सत्य के प्रति प्रेम और असत्य के प्रति स्वाभाविक अरुचि उत्पन्न नहीं होती, तब तक उसका चरित्र पूर्ण नहीं होता। वैदिक आदर्श यह है कि सत्य मनुष्य के लिए केवल एक नियम न रहे, बल्कि उसके जीवन का स्वभाव बन जाए। अतः दृष्टारूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति हमें सत्य और असत्य का विवेक सिखाता है। अश्रद्धामन्द्रिते तथात् असत्य से दूरी और उसके प्रति अरुचि की प्रेरणा देता है, तथा श्रद्धाम सत्य प्रजापति ही सत्य के प्रति ज्ञानपूर्ण, विवेकपूर्ण और दृढ़ निष्ठा स्थापित करने का संदेश देता है। यही इस मंत्र का वास्तविक वैदिक तात्पर्य है। श्रोताओं, इस मंत्र को यदि जीवन का सिद्धांत बना लिया जाए, तो मनुष्य अपने विचारों में सत्यनिष्ठ, वाणी में स्पष्ट, व्यवहार में ईमानदार और निर्णयों में विवेकशील बन सकता है। व्यक्तिगत चरित्र से लेकर परिवार, शिक्षा, व्यापार और समाज तक हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता दिखाई देती है। इसलिए यह मंत्र केवल प्राचीन वैदिक वचन नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के मनुष्य के लिए भी एक सार्वकालिक नैतिक एवं बौद्धिक मार्गदर्शन है। वैदिक जीवन का सार यही है कि सत्य को जानो, सत्य को स्वीकार करो, सत्य में श्रद्धा रखो और असत्य को विवेकपूर्वक त्याग दो। श्रोताओं, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। आशा है कि आज के वैदिक संदेश से आपको अवश्य ही लाभ एवं मार्गदर्शन मिला होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी में श्रीमती अंजू जी का विशेष योगदान रहा, उनके प्रति कृतज्ञता। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नवीन प्रस्तुति के साथ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

तो श्रोताओं, इसी के साथ वेद सिद्धांति कार्यक्रम के लिए हम आचार्य सुदेश बद्री जी को हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आप सभी को याद दिला दें, अभी हिंदू धर्म के पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का यह अत्यंत पवित्र अवधि चल रही है। तो इस समय में हम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस 16 दिनों में हम पिंडदान, तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति अपने पितृ ऋण और दोषों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हम इस अगले भजन को लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

जो तो ऐसा कहा जाता है श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से प्रसन्न होकर पूर्वज अपने परिवार को सुख समृद्धि आरोग्यता और सुखमय जीवन खुशहाल जीवन प्रदान करता है, इसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और मान्यता ये भी है कि इन दिनों में यमराज पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे ये सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर अपने परिजनों के पास आते हैं, श्राद्ध और तर्पण से उनकी तृप्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।

श्रोताओं, इस समय हम श्राद्ध पक्ष में हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस काल में अन्नदान, काले तिल का दान और आवश्यकमंद लोगों को या जीवों को जैसे गाय, कौवा, कुत्ते, इन सभी को भोजन करवाना अत्यंत फलदायी माना गया है। तो बस हृदय बड़ा रखते हुए हम इन जीवों को कुछ न कुछ दान अर्पण करें और इसी के साथ यही प्रार्थना करें कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं, उनको ईश्वर शांति प्रदान करे, उनकी तृप्ति हो और बस हमारा जीवन दोषों से मुक्त रहे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे इस अंतिम भजन के साथ। आप सभी ने हृदय पूर्वक हमारा साथ दिया, हृदय की गहराई से आप सभी को कोटि कोटि आभार। और पुनः उपस्थित होंगे एक अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। 1 अक्टूबर को चीन के गणराज्य की स्थापना के 77 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर कल शाम एबेन स्थित हेनेसी पार्क होटल में एक औपचारिक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सांसदों, राजनयिकों और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया। इस मौके पर चीन की स्थापना की वर्षगांठ मनाने के साथ साथ मॉरिशस और चीन के बीच 50 साल से ज्यादा पुराने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों का भी जश्न मनाया गया। एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर रही है, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। अगर चावल की सप्लाई पूरी तरह रुक जाती है तो एसटीसी की हॉटलाइन 5944-3434 पर उपलब्ध रहेगी। ये सेवा सप्ताह में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक चालू रहेगी। इसके अलावा बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर कल जारी एक बयान में नडेक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि बच्चों की कैंडीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, खासकर आत्सु की हालिया चेतावनी के बाद। नडेक के अनुसार कैनाबिनॉइड्स वाली ये मिठाइयाँ उन कैंडीज से बिल्कुल अलग हैं जो हमारे दुकानों और सुपरमार्केटों में बेची जाती हैं। नडेक ने स्पष्ट किया कि ये मामला पिछले साल हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री के पास से की गई जब्ती से जुड़ा है। और विदेश खबरों में, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से कम 62 लोग मारे गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों में भेजा गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। शिमेमाशिन पाल्मा काथोबोन में 74 साल के 74-year-old के श्री रामेश बगोरी, जो रामेश से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके घर शिमेमाशिन पाल्मा काथोबोन से उठाकर गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोजा।

साथ शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए इस सैयदा सुबाई के साथ आज की इस नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम बयान, नातु सलाम और आपके पैगाम 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं। क़ुरान की तिलावत से दिल को करार आए, क़ुरान की तिलावत से दिल को करार आए, हर हर्फ पाक बनकर रहमत की बहार आए। तो आइए आगाज़ करते हैं सूरह सबा की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये कयामत का वादा कब पूरा होगा। कह दो कि तुमसे एक ऐसे दिन का वादा है जिससे न एक घड़ी पीछे रहोगे और न आगे बढ़ोगे।

और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि हम न तो इस कुरान को मानेंगे और न उन किताबों को जो इससे पहले की हैं, और काश इन जालिमों को तुम उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे होंगे। जो लोग कमजोर समझे जाते थे वो बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम जरूर ईमान ले आते। जो लोग बड़े बन बैठे थे वो कमजोरों से कहेंगे कि भला हमने तुमको हिदायत से जब वो तुम्हारे पास आ चुकी थी रोका था? नहीं, बल्कि तुम ही गुनाहगार थे।

और कमजोर लोग उन बड़े लोगों से कहेंगे, नहीं बल्कि तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें रोक रखा था जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और उसका शरीक बनाएं, और जब वो अजाब को देखेंगे तो दिल में पशेमान होंगे और हम काफिरों की गर्दनों में तौक डाल देंगे, बस जो अमाल वो करते थे उन्हीं का उनको बदला मिलेगा

और हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला भेजा तो वहां के खुशहाल लोगों ने यह जरूर कहा कि तुम लोग जो चीज देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के, और यह भी कहने लगे कि हम बहुत सा माल और औलाद रखते हैं और हमको अजाब नहीं होगा।

0: और तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज नहीं कि तुमको हमसे करीब कर दें। हाँ, हमारा मुकर्रब वो है जो ईमान लाया और अमल नेक करता रहा। ऐसे ही लोगों को उनके अमाल के सबब दुगना बदला मिलेगा और वो अमन चैन से बुलंदोबाला इमारतों में रहेंगे। जो लोग हमारी आयतों के सिलसिले में हमें हराने की कोशिश करते हैं वो गिरफ्तार अजाब किए जाएंगे।
1: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ।
0: कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और तुम जो चीज खर्च करोगे वो उसका तुम्हें एवज देगा, वो सबसे अच्छा रिस्क देने वाला है।

और जिस दिन वो इन सब को जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा, क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? वो कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, ना कि ये, बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे। तो आज तुम में से कोई किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता, और हम जालिमों से कहेंगे कि अब दोजख के अजाब का जिसको तुम झूठ समझते थे मजा चखो।

कह दो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह के लिए दो दो और अकेले अकेले खड़े हो जाओ, फिर गौर करो तुम्हारे रफीक यानी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह का जुनून नहीं, ये तो तुमको सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाले हैं। कह दो कि मैंने तुमसे कुछ सिला मांगा हो तो वो तुम्हारा, मेरा सिला अल्लाह ही के जिम्मे है और वो हर चीज से खबरदार है।

कह दो कि मेरा परवरदिगार ऊपर से हक ही नाजिल करता है और वो गैब की बातों का जानने वाला है। कह दो कि हक आ चुका और बातिल न तो पहले कुछ कर सकता है और न दोबारा कुछ करेगा। कह दो कि अगर मैं गुमराह हूं तो मेरी गुमराही का जरर मुझी को है, और अगर हिदायत पर हूं तो ये उस वही के तुफैल है जो मेरा परवरदिगार मेरी तरफ भेजता है, बेशक वो सुनने वाला है, नजदीक है।

और काश तुम देखो जब ये घबरा जाएंगे तो अजाब से बच नहीं सकेंगे और नजदीक ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे कि हम इस पर ईमान ले आए, और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लेने को कैसे पहुंच सकता है जबकि पहले तो उसका इनकार करते रहे और बिन देखे दूर ही से अटकल के तीर चलाते रहे।

अल्लाह से मांगने का मज़ा ही कुछ और है, ना लफ्ज़ों की शर्त ना लहजे की कैद, वो खामोश आँखों की इल्तिजा भी सुन लेता है। दुनिया के दरवाज़ों पर दस्तक दो तो कभी जवाब मिलता है और कभी नहीं, मगर रब का दरवाज़ा ऐसा है जहाँ झोली फैलाने वाला कभी खाली नहीं रहता। बस दिल से सदा दो, या अल्लाह मैं तेरे दर पर आया हूँ, अपनी उम्मीदें अपनी हसरतें अपनी परेशानियाँ सब तेरे हवाले करने आया हूँ। लोगों से मांगो तो एहसान याद रह जाता है, अपने रब से मांगो तो रहमत याद रह जाती है। इसीलिए मांगते रहिए, दुआ करते रहिए, क्योंकि अल्लाह से मांगने का मज़ा भी कुछ और है। और जब बंदा यकीन के साथ कहता है या रब, तो दिल को ये इत्मीनान मिल जाता है कि हमारी पुकार उस ज़ात तक पहुंच चुकी है जो हमारे हाल से भी वाकिफ़ है और हमारे दिलों के राज़ों से भी।

0: ऐ परवरदिगार, इस वक्त जितने भी हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं उन सब के इल्तिजाओं को, उन दुआओं को कबूल फरमा। ख़ास तौर पर वो तमाम बच्चे जो इम्तिहानात दे रहे हैं, अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा और उन्हें उनकी मेहनतों काविशों का असिला अता फरमा, आमीन। मौज़े सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:35 हो चुके हैं। मंगल का दिन है, सितंबर की 29 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251-7005। ताखीर ना करते हुए अब आप समाअत फरमाएंगे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد عيسوا من الآخرة كما عيسى الكفار

अल्लाह के मखलूक की मदद फरमाते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले दुनिया में हम देखें तो सबसे बड़ी कब्र है कब्र रसूल दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हुजूर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम मदीने मुनव्वरा में अपनी कब्र अनवर में हैं और वहाँ से सारी दुनिया को फैज पहुँचा रहे हैं। नौजवान तबका अगर उसे समझना चाहे तो जिसे एक सैटेलाइट की रोशनी कितनी होती है, ये तो हमने और आपने इंसान ने बनाया, मादी चीज है। और वो नूर जिसकी शान नूरुन अला नूर है, तो वो रसूल दुआलम सल्लम अपनी कब्र अनवर में रहकर सारी कायनात को रुश्द व हिदायत की रोशनी अता फरमा रहे हैं। अब ये बात हवा हवाई में नहीं होनी चाहिए, दलाइल के साथ होनी चाहिए। तो पहली दलील तो अकीदा जो अपना कुरान हकीम से मिला कि कब्र वालों से उम्मीद रखना ये ईमान की पहचान है, और कब्र वालों से ना उम्मीद होना ये इस्लाम से खारिज कुफार की पहचान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के विसाल के गालिबन तीन दिन बाद एक देहाती आया, आराबी आया, और उसने कहा ज़लम तो नफसी, हमने तो अपनी जान पर जुल्म किया। और इस ख़्याल से आए थे कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लम की बारगाह में पहुँचूँगा और हुजूर नबी करीम सल्लम दुआ फरमा देंगे और अल्लाह ताला मेरी गुनाहों की मग़फ़रत फरमा देगा। हज़रत सैयद मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम ने हुजूर नबी करीम सल्लम की कब्र अनवर पर उसे भेजा और कब्र अनवर से जवाब आया कि ऐ राबी, अल्लाह ने तेरी ख़ता गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। तो यहाँ से पता ये चला कि बेशक साहब कब्र को अल्लाह ने तसर्रुफ़ और अख्तियार दे रखा है, और ये बड़ी आम फहम ज़बान में हम कहें कि हर इंसान का, वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी मशरफ से हो, किसी भी इमाम का मानने वाला हर इंसान ये जानता है कि अल्लाह के हुक्म से एक पत्ता भी नहीं हिलता जब तक उसका हुक्म ना हो। तो जब ईमान अल्लाह की कुदरत पर है तो अल्लाह जिसे चाहे और जब चाहे जहाँ चाहे नवाज दे। तो बात यहाँ पर यही आ रही है कि अल्लाह ने हम सब के आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तारे कुल बना के भेजा। और इसी में वाक़यात की रोशनी में जाएंगे तो बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मैं वाक़यात नहीं बल्कि तहक़ीक के आईने में हम जानना चाहते हैं कि कब्र से फैज़ आज भी मिल रहा है, बेशक आज भी मिल रहा है। कुरान हकीम के आयत मुबारक अन्नबी अवला बिल मोमिनीना मिन अनफसिहिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन की जान से ज़्यादा करीब हैं। अच्छा, इसमें अगर अरबी ज़बान और लुगत और ग्रामर को देखा जाए, जो कुछ अनपढ़ और या पढ़ कर नहीं समझ पाए हैं वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात ज़ाहरी जिस्मानी और रूहानी में थे

वो मोमिन की जान से ज़्यादा करीब। तो ग्रामर के अतबार से फिर मैं सवाल करूँगा तो यहाँ पर काना होना चाहिए था, यानी थे, और यहाँ कुरान पर अन नबी अवला बिल मोमिनीना मिन अनफसेहिम, नबी मोमिन की जान से ज़्यादा करीब है। हाल का प्रेजेंट का तर्जमा है, तो मोमिन जान से ज़्यादा करीब है, जो हाजिर है वही करीब है और जो ज़िंदा है वही करीब है, और जो करीब है वो हाजिर भी है, नाजिर भी है, समी भी है, बशीर भी है, बसीर भी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज भी बहुत आम फहम में हम समझने की कोशिश करें, ये कुरान हकीम जो हुदन लिन्नास कह रहा है, कुरान लोगों की हिदायत के लिए आया। बहुत से लोग दुनिया में कुरान हकीम की तिलावत करते हैं, तर्जमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, आयतों की तहकीक करते हैं, तो जो मोहब्बत और अदब रसूल अदब खुदा में कुरान की तहकीक करता है तो अल्लाह उसे हिदायत की राह खोल देता है, क्योंकि वो हुदन लिन्नास हर इंसान के लिए कुरान हिदायत की राह है। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए, कोई भी इंसान कुरान पढ़े मोहब्बत से कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है और रसूलुल्लाह पर नासिल हुई, तो बेशक उसे हिदायत की राह मिल जाती है। तो यही कुरान हकीम है। अल्लाह अकबर, क्या कहना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कुरान को पढ़ने वाले इंसान को जब हिदायत की राह खुलती है तो दुनिया में कहीं भी हो, किसी मुल्क में हो, चाहे वो काले हों या गोरे हों, बात इससे नहीं है। दिल जब साफ हो जाए, दिल में कालापन ना हो, तो उसे हिदायत की राह मिलती है और फिर वो इंसान इस्लाम कबूल करना चाहता है तो क्या करता है, पहले उस पर नमाज नहीं फ़र्ज है। इस्लाम में दाखिल होने के लिए पहले नमाज नहीं है, रोज़ा तिलावत कुरान नहीं है, सबसे पहले उसे कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है, जिसका वो इनकार कर इकरार कर रहा है कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दोनों एक कलमा है और कलमे के दोनों जुज यानी अल्लाह के एक होने पर ईमान है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस पर ईमान है। अब इसके बाद नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान, हज वगैरह सब फ़र्ज़ हैं। तो जान मोहतरम, आज भी कायनात में कितने लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते हैं, तो उसी रसूल दो आलम जो मदीने में कब्र में आराम फरमा रहे हैं, कब्र वाले का नाम लेकर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, ये फैज़ है या नहीं है। दूसरी बात, और करीब से आप देखें, आज भी अजान हो रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वहीं पर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी आप पढ़ रहे हैं। तकबीर में भी इकामत जिसे हम कहते हैं कि बेशक मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ। जब हैं का तर्जमा है तो वो ज़िंदा हैं, यहीं से मेरे रसूल की ज़िंदगी हयात ज़ाहरी कब्र के अंदर मेरे रसूल बाहयात, इसका भी सबक हमें मिल रहा है। फिर वो नमाज, नमाज के अंदर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयु, यानी अत्तहियात जब हम पढ़ते हैं तो अत्तहियात में हम नबी को या नबी कहकर पुकारते हैं, या ये निदा है, आवाज़ दी जाती है करीब के लिए।

0: तो ईज़ान मोहतरम, तो कुरान ने कहा रसूलुल्लाह मोमिन की जान से ज़्यादा करीब है। तो ये बातें पता चल रही हैं कि मेरे आका कब्र में है, लेकिन दुनिया में अरबों खरबों किलोमीटर दूर से भी लोग अजान से, इकामत से और अत्ताहियात में बैठकर, अत्ताहियात में सरकार को याद करते हैं। और अगर ना याद किया जाए तो नमाज नहीं मुकम्मल है। तो उनके कब्र वाले का फैज़ यह है कि नमाज भी मुकम्मल होनी है जो अत्ताहियात वाजिब है, तो कब्र वाले के नाम की बरकत से उस रसूल पर सलाम भेजो, तब नमाज मुकम्मल होती है। बहरहाल कब्र वाले का फैज़ यकीनी है, और साहिब कब्र को अल्लाह ने जो अख्तियारात दे रखे हैं, तसर्रुफात दे रखे हैं, ये अल्लाह की मर्ज़ी है किसी को क्या अता फरमा दे, किसी को क्या दे दे। बहरहाल हम अगली गुफ्तगू में इंशाअल्लाह ताला इसी को जारी रखेंगे, और इसी आयत मुबारक के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको कब्र के फ्यूज़ो बरकात से माला माल फरमाए, और अकीदे कुरान जो हमारे सामने है उस पर पुख्तगी से ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़े सामेईन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब की ज़ुबानी एक बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए चंद ऐलान। जी हाँ, 3 अक्टूबर सनीचर 3 अक्टूबर दिन के 1:30 बजे ICC में अलीमा शमीमा असुब्राची की सरपरस्ती में ख़वातीन के लिए एक नूरानी महफिल का अहतमाम किया जा रहा है, और जुमेरात 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे महफिल ज़िक्र का अहतमाम किया जा रहा है बैतुल नूर सिटी मौशाल पोर्ट लुइस में आलिमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में। इसी के साथ वक्त कम है, आइए बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। गिज़ा चिकोगी, जी हाँ गिज़ा चिकोगी ने अपने वालिद मरहूम रफ़ीक चिकोगी, अब्दुल रफ़ीक चिकोगी जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनके लिए दुआए मगफ़िरत की गुजारिश की है। इसके अलावा मुस्लिम चिबाई भी हमसे एक मनकबत की फरमाइश कर रहे हैं, और लिस्कालिये से दाली बकेगाली रबीउल आखिर के मौके पर तमाम मुसलमानों के लिए ईसाले सवाब की गुजारिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मौलाना मोहम्मद शमीम अशरफ अजहरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और तमाम मरीज़ों को सेहत जमील अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा चंद और पैगामात भी हैं। जी हाँ, क्यूपिप से फरानाज जुम्मन कलाम की फरमाइश कर रही हैं अपने अब्बू अनवर हुसैन, दादा मजीद इमरत और दादी हलीमा इमरत, नौशाद सुभान, इमाम खान फैमिली, फुप्पा ईसा भाई, मीर जान और तमाम मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं। सैपुल से रिहाना और रियाज भी एक मनकबत की फरमाइश कर रहे हैं। इसके अलावा त्यागूश से अमीरा ईसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं। चाची मरहूमा रशीदा बनवागी जिनकी दूसरी बरसी है, इसके अलावा चाचा मरहूम रहीम वज़ीर के अल्लाह पाक इनकी मगफ़िरत फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। जी हाँ, ये थे चंद पैगामात। इसके अलावा जी हाँ, ये थे चंद पैगामात। इसके अलावा हमें एक पैगाम भेजा है त्यागूश से शमीम बानो ईसल जी ने। जी हाँ, वो तमाम मरहूमीन ख़ास तौर पर वालिद दाऊद ईसल जी, हसन ईसल जी, इसहान सुबर और महमूद मंगलू, गियात उस्मान कीनू

हमीद दुम्मन और तमाम मरहूमीन के लिए इसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं और तमाम मरीज़ों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला अता फरमाए। ये थे पैगामात। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

大家好，希望您现在一切安好。一起走过的这半个小时，还是你熟悉的张大卫。希望这些歌曲能刚好符合您现在的心情。

如果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受，怎么说出口，也不过十分

0: 单怎么愁，好汉五丈条。
1: 因为这种东西啊，总能让人不知不觉的就笑出来了。

今天先跟大家告别，期待下一次的音乐时光。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद का कार्यक्रम स्टूडियो के घर में ढाई बज चुके हैं। हमारा प्यार भरा नमस्कार आप सभी सुनने वालों को। इस समय से लेकर दिन के वैसे इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। व्हाट्सअप नंबर जो है आपको पता ही है, 5251705। हमारा टेलीफोन नंबर जो है 4028085 है। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके, आप सभी सुनने वालों के नाम जो है ये बहुत ही प्यारा सा नजाना मेरी तरफ से आप सभी सुनने वालों को।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये अगला गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीता जी है, आप पिछवेरजे सैंपिया के रहने वाले हैं, आपके तीन बेटियों के लिए है ये अगला गीत। काजल शीतल दीक्षा, आपके दामाद है विकेश, और आपके सभी बच्चों के लिए ये प्यारा सा गीत। आपके पति है बालदेव जी, तो इन सभी लोगों के नाम ये प्यारा सा गीत है। गांगोप की सुनीता जी हमारे साथ जो है हमेशा हमेशा जो है जुड़ी रहती है, तो चलिए ये गीत जो है सुनीता जी के नाम हम करेंगे।

चलिए श्रोताओं, ये अगला गीत हमारे साथ किस शहर कथकबोन की रहने वाली उनकी दो बेटियां हैं नेहा नितिशा, और साथ में है उनके दामाद एल्विन, उनके पति है आनंद जी। ये प्यारा सा गीत उनके नाम, साथ में नाम जोड़ेंगे सुरेखा जी के, जो कि दिपिने की रहने वाली है, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। और ये प्यारा सा गीत माँ गायत्री जी है नुवेल फ्रांस की रहने वाली, और उनके बेटे है अजय।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे शाम के 4 बजे तक। चलिए, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हमें प्राप्त हो रहे हैं, काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत सनज़ाना जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ, त्रिवेणी जी हैं गुडलैंड्स की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, उनके पति है अनिल जी, सभी मोहन परिवार के लिए ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। और साथ में है हमारे साथ पोंफे की गीता जी है, उनके समस्त परिवारों के लिए ये अगला गीत, उनकी बहन मीरा है न्यूकोव की रहने वाली।

तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक से प्यारे एक से बढ़कर एक गीत आपके नाम हम कर रहे हैं। तो चलिए, गीतों का ये खूबसूरत सफ़र जिसे हम आगे बढ़ाने वाले हैं, और हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और फरमाइश करने वाले जो है काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम चलाएंगे विद्या जी के लिए, जो कि इंडियन पार्क की रहने वाली है, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत जाएगा उनके सभी बहनों के लिए। साथ में है सुरेखा, सती और वेदना है, विमला है, प्रीति और उनकी चाची है कुमारी। तो एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल जो है हम उनके नाम करेंगे, और ये प्यारी सी गज़ल जो है उनकी फरमाइश पे हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे, और ये कार्यक्रम जो है हम शाम के 4 बजे तक चलाने वाले हैं।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें विधिमा से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। प्रवीण जगनाथ आज सुबह एक बार फिर सीसीआईडी पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री से मिसे मुस्तास कहे जाने वाले टेलीफोन टैपिंग और ऑडियो लीक घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की जानी है। 17 सितंबर को समन मिलने पर प्रवीण जगनाथ ने जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब न देना ही बेहतर समझा था, क्योंकि उनके अनुसार पुलिस ने उनके उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था जिसमें उनके खिलाफ संदेह के आधारों को साझा करने की मांग की गई थी। प्रवीण जगनाथ का ये तर्क था कि पुलिस ने उन तथ्यों और परिस्थितियों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है जिनके आधार पर वे अपने संदेह को पुख्ता कर रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे माइक ब्रास पर आज सुबह 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये सजा इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन की मजिस्ट्रेट चित्रा सुबाघा पीले द्वारा सुनाई गई। फाइनेंशियल

0: सेक्शुअल क्राइम्स कमीशन में उनकी संपत्ति और कई ऐसे सामानों की जांच की थी जिनके अवैध गतिविधियों से आने का संदेह था, जबकि उन्हें रेनियन टापू में ड्रग्स तस्करी के लिए दोषी ठहराया जा चुका था। हाउसहोल्ड गार्डनिंग स्कीम में नए बदलाव किए गए हैं। अब इस सब्सिडी का उद्देश्य केवल घर के पीछे में मिनी ग्रीन हाउसेस लगाना है। सरकार ने नई हाउसहोल्ड गार्डनिंग स्कीम को वित्त पोषित करने के लिए 2 मिलियन रुपए का बजट रखा है, जो अक्टूबर से उपलब्ध होगी। और विदेश में थाईलैंड में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और अकेले बैंकॉक में 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu. kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद। तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सपहर के 3:03 हुए हैं। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक। तो चलिए गाने की ओर हम बढ़ेंगे और फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला और फिल्म से लिया गया गीत जाने वाला है। आप समस्त श्रोताओं के लिए, त्रियोले की दीदी ललिता के लिए कुशल परिवार है, दीदी सुनीता है, देविना, माला, बिंदु, मलंका के बबीता है, राधा ललिता, रामरतन परिवार है, कुआवो परिवार है, झूललाल परिवार है, जालू परिवार है। तो चलिए इस फिल्म से लिया गया गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इन समस्त श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 4028085 ये हमारा फ़ोन नंबर है और हमारा व्हाट्सएप नंबर वो है 5251705। तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रही है।

चलिए श्रोताओं, इस गीत पे हम नाम जोड़ेंगे काथोबोन की रहने वाली आप है सरिता जी, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए ये प्यारा सा गीत आपके नाम भी हम करेंगे।

चलिए श्रोताओ, इस समय माला सुमारू जी है कथबोन की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए, ये अगला गीत जो है जाने वाला है कनाडा के रहने वाले, उनके बेटे कृष्ण सुमारू के का जन्मदिन है, तो इसी संदर्भ में जो है ये प्यारा सा अगला गीत हम चलाएंगे। उनके बेटे के नाम उनकी पत्नी है जान, उनके दो बेटों की तरफ से शुभकामनाएं, शैलेन है, मिलन है, दो भाई की तरफ से, दो भाइयों की तरफ से उत्तम है, सुयश है, साथ में है शिवम, नेफ्यू है, निसिस है, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद पापा सूर्यदेव की तरफ से, मामा है माला। तो चलिए, जो बहुत ही प्यारा सा गीत जो है एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से हम उनको हम कहें ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए, तो चलिए ये प्यारा सा गीत जो है उनके नाम हम करेंगे।

तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में हमारे साथ रसबेल के रहने वाले उमा गोपी जी ने हमें याद किया है उनके स्वर्गीय पति के नाम जो है। ये अगला गीत समस्त गोपी परिवार की तरफ से सुनीता है, जयश्री, कविता, विवेक, हेमा और धर्म की तरफ से। तो चलिए ये प्यारा सा गीत जो है हम चलाने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे 4028085 पे ये प्यारा सा गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं।

जी चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अगला गीत जो है, फिल्म का नाम है किस्मत और इस फिल्म से लिया गया गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के लिए। हमारे साथ है बंधु परिवार जो कि त्रियोले के रहने वाले हैं, तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है हम इस कार्यक्रम में हम चलाने वाले हैं, तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। तो अगले गाने आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी सुनने वालों के नाम जो है ये अगला गीत हम चला रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, तो चलिए श्रोताओं, ये गीत जो है हम नाम जोड़ने वाले हैं हमारे साथ इस समय। जी हाँ, इस समय हमारे साथ जो है शोभा जी जुड़ी हुई है और आप हैं पॉम्पली मुसेस की रहने वाली।

चलिए जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बर्थडे है कविश कविश का और साथ में है प्रिश्नी, इन दोनों के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त परिवारों की तरफ से। कविश की पत्नी है पूजा, प्रिश्नी की पति है प्रिश्नी के पति है कुनल, साथ में है दादी कुशल, दादा अशोक, दादी है दादी मधु है, साथ में है कृष्णी। और ये सब परिवार जो है तोरल परिवार है न्यूकोव के रहने वाले। तो चलिए इन सभी परिवारों की तरफ से ये प्यारा सा गीत जो है प्रिश्नी के नाम और साथ में है काविश के नाम हम करेंगे। बहुत ही प्यारा सा गीत है। तो चलिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये प्यारा सा गीत हमारी तरफ से भी।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखते हुए ये अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। और अगला गीत जो है हमारे साथ इन समस्त श्रोताओं के नाम हम करेंगे जो हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है हम मोरारबिया की रहने वाली अनीता जी के लिए करुणा है आप के समस्त परिवारों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम शामिल कर रहे हैं, और फिल्म जो है बहुत ही पॉपुलर है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो है इन जी हाँ बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है हम शामिल कर रहे हैं। फिल्म का नाम है हम हैं बेमिसाल। तो चलिए इस फिल्म से लिया गया गीत जो है हम चलाने वाले हैं।

साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। श्यामा रघुनंदन जी हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो चलिए ये अगला गीत जो है उनके नाम हम करेंगे। चित्रा विश्राम जी है मोरारबिया की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, उनके समस्त परिवारों के लिए, समस्त उनके पति है ज्ञान जी और समस्त विश्रम परिवार के लिए और उनके सभी बच्चों के लिए भी जो है ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे और मन्ना वदेह के स्वर में ये प्यारा सा गीत हम सुन पाएंगे।

चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम सपहर के 3:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। और हमारे साथ जो है इस समय वैसे काफ़ी लोग जो है हमारे

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ जो है, हम ये अगला गीत चलाने वाले हैं फ्लोरियाल की सरिता जी जो है हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए सरिता जी के नाम जो है ये गीत जो है वो समस्त शिवडारी परिवार के लिए, उनके सभी बच्चों के लिए और उनके पति के लिए हम चला रही है।

तो चलिए श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो चला। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फ़ोन कॉल, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए कुछ ही घड़ी में 4 बजने वाले हैं और आप एक विशेष कार्यक्रम जो है तमिल भाषा में सुन पाएंगे। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या।

शाम के 5 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम। जी हाँ, आज हम मंगलवार है और ये कार्यक्रम आप लोगों के नाम हम करते हैं। उषा कौर आप लोगों के साथ 6 बजे तक। जी हाँ, कहते हैं ना, कुछ गीत सिर्फ सुनने नहीं जाते बल्कि दिल में बस जाते हैं। उनकी धुन सुनते ही पुरानी यादें, अपने लोग और ज़िंदगी के खूबसूरत पर आँखों के सामने आ जाते हैं। तो चलिए, किशोरदा की आवाज़ में मुसाफिर फिल्म से लिया गया आज का पहला गाना सुनते हैं।

0: कुछ गीत मोहब्बत को लफ्ज़ों से नहीं एहसासों से बयां करते हैं। बाहों में चले आओ, ये भी एक ऐसा गीत है जिसमें प्यार की सादगी, इंतज़ार और अपनापन महसूस होता है। तो आइए पुरानी यादों के इस खूबसूरत सफ़र में सुनते हैं एक मधुर नगमा जो आज भी दिल को अपनी तरफ खींच लेता है।
1: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब ज़िंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएँ धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया,

0: दूर होते होते वो आवाज डूब गई।
1: जी हाँ दोस्तों, कुछ आवाज ऐसे होती है जो हम कभी भूल नहीं सकते। नाम गुम जाएगा, चेहरे बदल जाएगा, लेकिन उनकी आवाज़ें जो हैं, लता जी, भूपिंदर, किशोर दा, रफ़ी साहब, मुकेश साहब, महेंद्र कपूर साहब, ऐसे कितने सारे हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत तोहफा छोड़ कर गए हैं, और वो हैं संगीत।
0: मेरी आवाज़ ही पहचान है गरिया।

5:55 हुए हैं दोस्तों, आपने साथ दिया इस खूबसूरत प्रोग्राम में, हम आपको धन्यवाद करते कहते हैं और ऐसे ही साथ दीजिए हमेशा। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं बहुत जल्द। उषा को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक, शाम के ठीक 6 बजे हैं। नमस्कार, 29 सितंबर 2026 के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 1 अक्टूबर से चालकों को अपने फोन में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा। ट्रैफिक जुर्माना ऑनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज से 10% की बढ़ोतरी हुई है। 1 लीटर पेट्रोल अब 77.70 रुपये और डीजल 78.35 रुपये में मिल रहा है। इस बढ़ोतरी के बीच इलाके के दूसरे देशों की कीमतों की तुलना इस बुलेटिन में। वर्ल्ड हार्ट डे पर देश में जांच और जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुए हैं। पॉम्पलोमिसिस के कार्डियक सेंटर में हर दिन करीब 150 मरीज पहुंचते हैं, जबकि दिल की सर्जरी और एंजियोग्राफी के लिए इंतजार की सूची घटी है। फोन रिकॉर्डिंग वाले उपकरणों की कथित अवैध खरीद की जांच के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ आज लाइन बैरक्स पहुंचे। 2 घंटे से अधिक समय बाद बाहर आकर उन्होंने कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने तथा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी, लेकिन परमाणु कार्यक्रम, नाकाबंदी और प्रतिबंधों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं।

0: पेश है अब समाचार विस्तार से। आज रात 12 बजे से सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 8 नए कदम लागू होंगे। शराब या नशे की हालत में गाड़ी चलाने और किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनने जैसे गंभीर अपराधों के दोषी पाए जाने वाले चालकों और मोटरसाइकिल चालकों को और अधिक दंडित किया जाएगा। रोड रेज के मामलों में भी सजाएं और अधिक सख्त होंगी। डिजिटल लाइसेंस भी जल्द ही एक हकीकत बनेगा और 1 जनवरी 2027 से लागू हो जाएगा। साथ ही उन वाहनों को जब्त किया जाएगा जिनके चालक शराब और ड्रग्स के साथ पाए गए हैं। पोटली में परिवहन और आईसीटी मंत्रियों द्वारा आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज इन पर अधिक जानकारियां दी गई। आज सुबह से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 10% बढ़ गई हैं। अब एक लीटर पेट्रोल 77.70 रुपये और डीजल 78.35 रुपये में मिल रहा है। नए दामों को कल पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक में मंजूरी दी गई। ये बदलाव ऐसे समय आया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम सामानों की लागत बढ़ रही है।
1: नए मूल्य मंगलवार से सभी पेट्रोल पंपों पर लागू हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल अब 78.35 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। ये 10% की वृद्धि है जो चालकों को प्रभावित करे।

0: Payer pour les bénéficiaires certains charges.
1: Mais là, avec l'essence, c'est pas facile. Aujourd'hui même, nous pouvons diminuer les, parce que on peut pas rester couvert au frais même.
2: Pour faire mettre ça au prix d'essence, voilà, c'est de travailler pour retrouver l'essence finie.
3: Vous pensez au budget pour impacter beaucoup?
2: Oui, vous pensez oui.
4: C'est comme ça aujourd'hui, là, Maurice, pénachois.
3: Vous comprenez les raisons?
4: Non. Aujourd'hui, de la guerre partout, mais bon. Les besoins montent à un moment, les montées, que du cas, faites vous faire. Normal.
5: Par jour, là, avec diesel, pas de commenter. Je peux déjà mettre 4 000, mais là, avec diesel, une montée, nous pouvons déjà mettre 4 000, 5 000. Si ben, là, tu fais en fait, tu réduis la taxe à pélo, l'essence diesel, tu vas bien bon.
0: इसाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी है. इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बदलाव. पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी के अनुसार इस बार इन दोनों ईंधनों की कीमतों में 18% की वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार केवल 10% ही लागू किया गया है. ईंधन की कीमत तय करने वाली संरचना में लगभग 10 अलग अलग घटक शामिल हैं. इनमें सिर्फ मूल्य यानी उत्पाद की लागत, बीमा और माल ढुलाई, उत्पाद शुल्क, ओडीए के लिए योगदान, रोड्रिक्स के लिए परिवहन और भंडारण की लागत, भंडारण सुविधाओं के निर्माण का खर्च तथा घरेलू गैस, आटा और राशन चावल पर दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है. ईंधन पर लगाए जाने वाले करों की समीक्षा करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए व्यापार मंत्री माइकल सिक्योन ने कहा कि ऐसा निर्णय सब्सिडी वाले उत्पादों की कीमतों पर भी असर डाल सकता है.
6: Le 13 décembre 2024, le gouvernement Chivini-Chifin enlève 2 roupies par litre en ce qui concerne excise duty concernant le prix de l'essence. Mais valeur du jour, Mopéjaou, il paraît compliqué. Nous faisons beaucoup de simulations et malheureusement, il fait l'effet domino de plusieurs lots de produits qui nous donnent subside. Par exemple, nous avons 7 roupies 20 d'irrigation, la farine et le gaz ménager, LPG. Si 7 roupies 20 viennent zéro en termes de contribution, d'irrigation pour sortir 56 roupies pour un sac de 5 kg, il peut atteindre facilement 153 roupies. Au niveau gaz, il peut passer de 250 à plus que 500 roupies un bonbon de gaz. Et au niveau de la farine, il peut aussi augmenter 26 roupies pour un sac de 2,5 kg et il peut arriver au moins 65 roupies pour un sac de 2,5 kg.
0: Is sanshodhan ke baad price stabilization account jo petrol aur diesel ki khudra kimaton ko sthir rakhne ke liye zimmedar hain में 3,630,000,000 रुपए का घाटा दर्ज हो गया है.
7: पॉम्पलमुस के कार्डियक सेंटर में यहाँ हर दिन करीब 150 मरीज पहुँचते हैं. रोज दिल की 5 खुली सर्जरी और 18 तक ऑन्जियोग्राफी की जाती हैं. इलाज की रफ्तार बढ़ने से इंतजार की सूची भी घटी है. ऑन्जियोग्राफी के लिए पहले 600 लोग इंतजार में थे, अब 100 से कम है. वहीं दिल की ओपन सर्जरी के लिए ये संख्या 180 से घटकर 60 रह गई है. इस केंद्र में हर उम्र के मरीज इलाज के लिए आते हैं. सिंचा मुत्तु करुणा लालू.
0: 14 महीने की आलेना पॉम्पलमुस के कार्डियक सेंटर के बाल हृदय रोग विभाग में अपॉइंटमेंट पर आई हैं. उसकी एक सर्जरी के बाद अब वो जल्द होने वाली दूसरी सर्जरी का इंतजार कर रही हैं. उनके पिता ने कहा, पहली सर्जरी भारत में की थी, अब दूसरी मॉरिशस में, उम्मीद है सब ठीक हो. कार्डियक सेंटर का ये विभाग 5 क्षेत्रीय अस्पतालों से आने वाले बच्चों का इलाज करता है. डॉक्टर सचिन रामधनी ने कहा, साल में करीब 30 की होल सर्जरी करते हैं. ये ओपन हार्ट नहीं है, करीब 20 ओपन हार्ट भी करते हैं. हृदय रोग की उम्र की सीमा नहीं, एक दिन के शिशु की भी सर्जरी की गई है. कार्डियक सेंटर में हर दिन 15 से 18 एंजियोग्राफी की जाती है. 29 वर्षीय यश ने बन कोरोनेरी धमनियों के लिए 3 स्टेंट लगाए हैं. उसने कहा, पीठ दर्द से सब शुरू हुआ, उसके बाद छाती का दर्द. डॉक्टर शिवसागर रामबर ने कहा, एंजियोग्राफी करने पर हमने देखा कि 3 धमनियां बंद थी, युवा हैं, इसलिए स्टेंट लगाया गया. धमनी ठीक की गई, 2-3 बाद अन्य धमनियां देखी गई. पहले 60 से 65 साल के मरीज हुआ करते थे, लेकिन अब हृदय रोगी की उम्र कमसिन हुई है 50-55

0: बचपन अब 40 तक सिगरेट आदि के सेवन से मामले बढ़े हैं। किसी भी सर्जरी से पहले इकोकार्डियोग्राफी बेहद महत्वपूर्ण है, डॉक्टर खलील रामजान ने कहा। पहले इको करते हैं देखने के लिए कि सब ठीक है, वाल्व की भी जांच की जाती है कहीं कोई खराबी तो नहीं। यदि कोई वाल्व तंग हो तो स्टेंट नहीं लगाए जाते, ऑपरेशन करते हैं। कार्डियक सेंटर के 3 ऑपरेशन थिएटर पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। हर दिन लगभग 5 ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, यानी साल में 900 से अधिक ऑपरेशन। डॉक्टर सुनील गणेश ने कहा, वेटिंग लिस्ट बहुत कम हुई है। 1 से 1.5 साल पहले 190 मरीज सर्जरी की प्रतीक्षा में थे, आज संख्या घटकर 60 हो गई है। यानी 15 से 3 हफ्ते के भीतर सर्जरी कर दी जाती है। प्रतीक्षा के दौरान उनकी डायबिटीज नियंत्रित किया जाता है, वजन घटाते हैं, स्मोकिंग से मना करते हैं। एंजियोग्राफी को लेकर भी काफ़ी तरक्की हुई है। 600 से 650 मरीज थे वेटिंग लिस्ट में, आज ये संख्या 100 से कम है। प्राइमरी PCI करते हैं, यानी दिल का दौरा पड़ने पर 2 घंटे के अंदर कार्डियक सेंटर में लाकर धमनी खोलते हैं और स्टेंट लगाया जाता है। एक अहम तकनीक है, हृदय को और नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं।
1: Très important, très intéressant, qui évite que muscles qui là l'ont endommagé.
0: समय के साथ इस केंद्र ने नई चिकित्सा तकनीक और आधुनिक उपकरण हासिल किए हैं ताकि मरीजों की बेहतर देखभाल की जा सके।
2: आज 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दिवस के मौके पर मॉरिशस टेलीकॉम के सहयोग से जांच और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए। मॉरिशस टेलीकॉम की 3 शाखाओं में लोगों की जांच की गई और उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी गई। अक्टूबर में ऐसे कार्यक्रम दूसरी कंपनियां में भी होंगे। साथ ही ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले पिंक अक्टूबर अभियान को भी आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बीमारियों से बचाव पर जोर दिया। उन्होंने देश के अस्पतालों के लिए भारतीय स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती का भी जिक्र किया। हर धड़कन जिंदगी के सफर में एक कदम और आगे, लेकिन जब दिल कोई चेतावनी दे तो उसे सुनना भी उतना ही जरूरी है। आज विश्व हृदय दिवस पर यही संदेश दिया जा रहा है। दुनिया भर में हर साल 20 मिलियन से अधिक लोगों की मौत दिल और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी बीमारियों से होती है। ऐसे में समय पर खतरा पहचानना बेहद जरूरी है। आस्था गुबिन।
3: दिल दिन रात काम करता है, लेकिन उसकी बीमारी हमेशा अपना पता नहीं देती। कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। इसलिए आज वर्ल्ड हार्ट डे पर लोगों से अपनी सेहत पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक दिल और रक्त वाहिकाओं की बीमारियां दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है। इनमें दिल का दौरा और दिमाग की नसों से जुड़ा आघात भी शामिल है। इस साल का संदेश है, डोंट मिस अ बीट, यानी बीमारी के संकेतों को अनदेखा न करें। सीने में दर्द या दबाव, सांस लेने में तकलीफ या बांह, जबड़े और पीठ में दर्द दिल के दौरे के संकेत हो सकती हैं। ऐसे लक्षण अचानक सामने आए तो तुरंत इलाज की जरूरत होती है। इस महीने विशेषज्ञों ने दिल के दौरे की एक नई अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा भी जारी की है। इसका एक मकसद महिलाओं में इसकी अलग अलग वजहों को बेहतर ढंग से पहचानना है। विशेषज्ञों के अनुसार महिलाओं में कई बार बीमारी की सही पहचान देर से होती है। दिल की देखभाल के लिए बड़े बदलाव का इंतजार जरूरी नहीं। रोज थोड़ा चलना, तम्बाकू से दूर रहना, खाने में नमक कम करना और समय समय पर ब्लड प्रेशर तथा खून में शक्कर की जांच कराना मदद कर सकता है। विश्व हृदय दिवस याद दिलाता है, दिल की हिफाजत किसी एक दिन का काम नहीं, उसकी देखभाल हर दिन करनी होती है।
2: फोन पर बातचीत सुनने वाले उपकरणों की कथित अवैध खरीद की जांच के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ आज लाइन बैराक्स पहुंचे। 2 घंटे से अधिक समय बाद वे अपने वकीलों के साथ बाहर आए। प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे इस जांच में सहयोग नहीं करेंगे। यासिन देर महमूद, अदिति अवतार।

0: इस मंगलवार को लाइन बैरक्स में बुलाए जाने पर पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार फिर जांचकर्ताओं के सवालों का जवाब देने से इनकार किया। उनकी कानूनी टीम के अनुसार पुलिस अभी भी उन तथ्यों और हालात का खुलासा करने से इनकार कर रही है जिनके आधार पर उन्हें शक है, और इसी वजह से प्रवीण जगनाथ ने उन्हें सहयोग देने से इनकार किया। ये समन प्रवीण जगनाथ को टेलीफोन रिकॉर्डिंग उपकरणों की गैरकानूनी खरीद की जांच के सिलसिले में भेजा गया था। उनके वकील राउफ कुलबुल कहते हैं,
1: La police pensait exactement de qui ça faisait mes questions, monsieur Jagnat. Qui élément qui est là, qui prouvait, et dans sa reasonable suspicion qu'il commettait une offense. Ça ne se peut pas dire ça.
2: La police disait de se communiquer qu'il ne donne pas d'informations pertinentes pour ça l'enquête-là à monsieur Jagnat.
1: L'IPGL ne donne pas d'informations pertinentes. La loi empêche moi pour me dire qui a une raison pertinente, qu'il ne donne pas, qu'il n'a pas donné. Et qui m'en exige, il vous donne moi. Mais ce qu'il nous capable de dire, la police est dans cette position qu'il prend, nous nous exigeons certains renseignements, nous peut exiger, et nous avons certaines réponses que nous trouvons, nous ne sommes pas capables d'amener le concours plus que ça, ça l'enquête-là.
0: Pravin Jagnath ko, isi jaanch ke silsile mein baad mein fir se line barracks jana hoga. Pichli baar, saman milne par bhi unhone yehi rukh apnaya tha. Wahi police ka kehna tha, कि उन्हें कथित अपराध के बारे में बता दिया गया था।
3: चीन अगले 1 अक्टूबर को अपना 77वां राष्ट्र दिवस मनाएगा। इसी मौके पर कल शाम बेन के हेनेसीपॉक होटल में समारोह आयोजित किया गया। सांसद, राजनयिक और राजनीतिक हस्तियां इसमें शामिल हुई। साथ ही मॉरिशस और चीन के बीच 50 साल से भी पुराने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को याद किया गया। खिशन सिच्चा, अदिति अवतार।
0: पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 77वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित समारोह में राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और कई अन्य महानुभाव शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा हुआ। इसके बाद मॉरिशस में चीनी राजदूत डॉक्टर हुआंग शिफांग ने एक टोस्ट उठाया। अपने संदेश में चीनी राजदूत ने 1972 में राजनयिक संबंध शुरू होने के बाद से मॉरिशस और चीन के बीच बनी मजबूत मित्रता पर बल दिया।
4: Since the establishment of diplomatic relations,
0: उन्होंने कहा, 54 साल पहले कूटनीतिक संबंधों की स्थापना से दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत होता गया है। चीन मॉरिशस के एक ही चीन के विजन के सिद्धांत को गहराई से सराहता है, और शागस द्वीप समूह की अखंडता तथा टेरिटोरियल संप्रभुता को लेकर चीन मॉरिशस के न्यायपूर्ण निश्चय का समर्थन भी करता है। चीन की वृहद मंडी मॉरिशस के निर्यात के लिए बड़ी संभावनाएं प्रस्तुत करती है, तथा चीन अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए विजन 2050 के साथ सहयोग बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। इस साल शुरू की गई 15वीं पंचवर्षीय योजना चीन की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को उच्च स्तरीय विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर रही है। इसी संदर्भ में समारोह के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चीन का नवाचार उजागर किया गया।
3: पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद एक सवाल शायद आपके मन में भी होगा, हमारे पड़ोसी देशों में लोग कितना भुगतान करते हैं, क्या वहां ईंधन हमसे सस्ता है या महंगा। आइए इलाके के कुछ देशों में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम की तुलना करते हैं। अंजुराम गुलाम, अदिति अवतार।
0: पड़ोसी देश रेनियन को भी ईंधन के दामों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, और उनके यहाँ भी कीमतें बढ़ रही है। 1 सितम्बर से वहाँ 1 लीटर पेट्रोल का दाम 1.83 यूरो है, यानी हमारे लगभग 99 रुपए। कीमतों में लगभग हर महीने बदलाव लाए जा रहे हैं। डीजल का दाम अभी 1.68 यूरो है, यानी यहां का करीब 91 रुपए। इन दोनों का दाम पिछले अगस्त महीने से बढ़ा है। पेट्रोल के लिए 5 सेंट और डीजल के लिए 13 सेंट ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। रेनियन अपना ज्यादातर ईंधन सिंगापुर से मंगवाता है। उधर सेशल्स में भी हालात चिंताजनक हैं। 1 सितंबर से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 24.68 सेशल्स रुपए, यानी लगभग 85 मॉरिशन रुपए हो गई है। डीजल का दाम वहां के 25.19 रुपए

0: रुपए यानी हमारे लगभग 87 रुपए पर हैं। परिणाम स्वरूप सेशल्स के लोगों को भी फिलिंग स्टेशन जाते हुए संघर्ष करने जैसा अनुभव हो रहा है। याद रहे कि सेशल्स के पास उसके अपने टैंकरों की फ्लीट है, हालांकि उसने ईंधन की आपूर्ति के लिए पिछले महीने स्विट्जरलैंड की टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग एसए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उधर मायोत में लोगों की जेब पर भारी बोझ बना हुआ है और बजट बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। पहली सितंबर तक एक लीटर पेट्रोल की कीमत 2.5 यूरो यानी लगभग 111 रुपए थी, जबकि डीजल की कीमत 2 यूरो यानी हमारे लगभग 108 रुपए थी। पिछले महीने वहां कीमतें और बढ़ी हैं। वहीं कुमरो में 4 महीने पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब वहां पेट्रोल की कीमत 725 कुमोरियन फ्रैंक प्रति लीटर यानी लगभग 80 मॉरिशन रुपए और डीजल की कीमत 630 कुमोरियन फ्रैंक यानी लगभग 69 रुपए है। मडागास्कर की बात करें तो वहां हालात बहुत तनावपूर्ण है। ओमान से शिपमेंट में देरी के कारण 2 हफ्ते पहले वहां ईंधन लगभग खत्म ही हो गया था, जिसे इमरजेंसी योजना लागू करनी पड़ी। वहां 1 लीटर पेट्रोल 5,300 एरियरी और डीजल 4,860 एरियरी में बिकता है। ये पेट्रोल के लिए लगभग 57 मॉरिशन रुपए और डीजल के लिए 52 रुपए के बराबर हैं। ये कीमतें 5 सितंबर से लागू हैं। हालांकि इन आंकड़ों को सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए मडागास्कर में एक फुल टैंक लगभग 40 लीटर औसत सैलरी का लगभग 35% होता है, जो कि करीब 6,000 रुपए है। मॉरिशस में डीजल भरवाने का खर्च औसत वेतन का 6.84% होता है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के आंकड़ों के अनुसार ये वेतन 45,794 रुपए है। ये साफ नहीं है कि इससे जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा या नहीं, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि ईंधन भरवाते हुए सिर्फ मॉरिशन ही नहीं बल्कि सभी परेशान हो रहे हैं।
1: और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए बातचीत जारी है। चर्चा में जलमार्ग खोलने और ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी हटाने का प्रस्ताव शामिल है, लेकिन समझौते की राह में अब भी बड़ी रुकावटें हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के मुद्दे पर पहले ठोस प्रगति हो। वहीं प्रतिबंध हटाने का समय और दोनों में पहला कदम कौन उठाएगा, इस पर मतभेद बने हुए हैं। और अब चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल।
2: हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि आज रात के दौरान और कल सुबह भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और रह रह कर पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। दिन के दौरान भी मौसम सुहाना रहेगा, धूप खिले रहेगी। इस बीच कुछ समय के लिए देश के पश्चिमी हिस्से में बादल घिर आएंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती है। आज रात के दौरान दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। इस बीच धीरे धीरे समंदर की स्थिति में सुधार आएगा। सूर्यास्त 6:07 पर, कल सूर्योदय 5:52 पर।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय शाम के 6:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में शोक समाचार।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
0: ग्लेनपॉक वाकवा में 93 साल के 93 years old के जनाब मोहम्मद हनीफ एडू, जो महमूद हनीफ नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात सवा सात बजे उनकी बेटी रबैया करमताली के घर ग्लेनपॉक वाकवा से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए ग्लेनपॉक की सुन्नी मस्जिद ले जाया जाएगा।

मजारों पर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान. फ्यूनरल टुनाइट एट 7:15. श्रीमय मशीन पालमा का ट्रोबोन में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री रमेश बकोरी, जो रमेश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके घर श्रीमय मशीन पालमा का ट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM. नंबर 321 एवेन्यू ओलिया का ट्रोबोन में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री जवाहरलाल जगेसर, जो संजय नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी गुरुवार को दिन के 1 बजे उनके घर नंबर 321 एवेन्यू ओलिया का ट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 1 PM. एवेन्यू लक्ष्मण पालमा रोड का ट्रोबोन में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री सूर्य राव नाराजी, जो पुल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर एवेन्यू लक्ष्मण पालमा रोड का ट्रोबोन से उठाकर कुदगढ़ बेतु की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM. मिशन क्रॉस रोड बोनाक्यो में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सत्यावादी मोरी, पैदाइशी नाम सेवाथियों और जोशीला नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके बेटे गानादा आजागेन मोरी के घर मिशन क्रॉस रोड बनाकर से उठाकर बनाकर की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट नून. केतुलेन संसदीय विलेज में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुभावती एमराज, पैदाइशी नाम जीनारायण और जो सुभावती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे संजीव कुमार सिंह एमराज के घर केतुलेन संसदीय विलेज से उठाकर मिजिन कौंडमास की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM. सचुकुलेन रोड मिशन क्रॉस रोड लालमाटी में 101 साल की 101 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पिचाई मर्डन, पैदाइशी नाम कौपेन और जो आकापाक्यों नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल सुपहर 3 बजे उनके भतीजे सदायन अनात्रा के घर सचुकुलेन रोड मिशन क्रॉस रोड लालमाटी से उठाकर बोबा की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 3 PM. पालमा जंक्शन बासें रोड का ट्रोबोन में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री पतिदेव प्रसिद्ध, जो रमेश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी गुरुवार को सुबह 10 बजे उनके घर पालमा जंक्शन बासें रोड का ट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 10 AM. डोडोलिन लातापी बोनाकर में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आशा गंगादोस, पैदाइशी नाम गुंदोरी और जो आशा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति श्री पृथ्वीराज गंगादोस के घर डोडोलिन लातापी बोनाकर से उठाकर बोनाकर की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM. शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है.�819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस.

0: CBC Radio 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। 1 अक्टूबर को सुबह यानी कि दिन के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मोताई ब्लांश में और आसपास के इलाकों में विलाज मोताई ब्लांश, शिवाला रोड, लाफोज लेन, ओल्ड रेलवे ट्रक रोड, विदेशी लेन और पिट्सिपाके रोड और रॉयल रोड मोताई ब्लांश और आसपास के इलाकों में और सेजिया मिल में भी, सेजिया मिल रॉयल रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
2: रेडियो मॉरिशस।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर.

श्रोताओं को अनीता का प्रेम सहित नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस की लहरों से जुड़े हुए हैं, जहां आप आध्यात्मिक कार्यक्रम भजली प्रभु का नाम सुन रहे हैं। भक्त जन, कहा गया है कि समय सब कुछ नष्ट कर देता है। समय हर जगह उपस्थित है और उससे बचना कठिन है। अंत में समय ही सबका अंत करता है। तो इसी विचार के साथ श्रोताओं, आइए हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तजन, कहा गया है कि सत्संगति बुद्धि की जड़ता अर्थात अज्ञान को दूर करती है, वाणी में सत्य को पिरोती है, सच बोलने की प्रेरणा देती है, मान सम्मान और उन्नति प्रदान करती है और कुविचारों को दूर करती है, चित्त में अर्थात मन को प्रसन्न रखती है और चारों

प्रियजन, नीति शतक में कहा गया है कि बाजू बंद चंद्रमा के समान चमकने वाले हार, स्नान चंद्रमा, पुष्प अथवा सजे हुए केश, ये मनुष्य को वास्तव में सुशोभित नहीं करते। सुसंस्कृत और मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है, क्योंकि अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी का आभूषण सदा

भक्तों, कहा गया है कि स्वजनों में उदारता, परिजनों में दया, दुर्जनों में कठोरता, साधुजनों में प्रेम, राजाओं में नीति, विद्वानों में सरलता, शत्रुओं में शौर्य, गुरुओं में क्षमा और स्त्रियों के प्रति निडरता, इन व्यवहार कौशलों में निपुण पुरुषों से ही संसार की व्यवस्था चलती है।

श्रोताओं, दौड़ लंबी होने से पतंग ऊंची नहीं होती, उसे उड़ाने वाला हुनरमंद होना चाहिए। धन अधिक होने से जीवन बड़ा नहीं होता, उसे जीने वाला समझदार होना चाहिए। तो इन्हीं विचारों के साथ श्रोताओं, यहाँ कार्यक्रम समाप्त होने चला। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और

अल्लाह रहमान रहीम। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर, कुदरत नुमा के वास्ते। मोहतशम सामईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। ये रेडियो मॉरिशस है और आपका मेज़बान निसार अख्तर आपको इस पुरकैफ और रूह परवर बज़्म में खुश आमदीद कहता है, जिसे आप महफिल शब के नाम से जानते हैं। आज जिक्र करेंगे उनका जो बगदाद की गलियों में चराग़े हिदायत बनकर चमके, जिनके एक एक जुमले ने सैकड़ों दिलों को बदल दिया। वो और कोई नहीं बल्कि महबूब सुभानी, शहबाज लामकानी, सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं। उम्मीद है ये महफिल आप सामईन की तवज्जो का बाइस बनेगी। आइए सामईन, इस रूहानी सफ़र का आगाज़ इस खूबसूरत कलाम से करते हैं। मुलायजा फरमाइए।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, पीराने पीर रोशन ज़मीर हुज़ूर ग़ौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजालिस में लोग कलम उस स्याही की डिब्बियाँ लेकर हाजिर होते थे और आप रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात को लिख कर महफूज कर लेते। दरअसल ग़ौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उम्मत की इस्लाह का ऐसा जज्बा रखते थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह का कोई ऐसा बयान नहीं जिसमें लोग इस्लाम कबूल ना करते हों। एक वाक़े से मालूम होता है कि एक मर्तबा हमारे ग़ौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इज्तमाई ग़ौसिया में एक ही वक्त में एक आयत मुबारक की 40 तफासीर बयान फरमाई। सुबहानल्ला, इस वाक़े से आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी मकाम व मर्तबे की बुलंदी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सामईन कराम, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अली की इस मनकबत के साथ आज का ये मुबारक प्रोग्राम महफिल शब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये वक्त दिया कि हम दीन की बातें आम करें, बिलखुसूस हुजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अली की ज़िंदगी और तालीमात से फैज़ हासिल करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, आपका मेज़बान निसार अख्तर अब आपसे इजाज़त तलब करता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब हमारी मुलाकात अगले मंगल को होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।

0: hour, every hour.
1: Radio Marches.
2: कमर, कमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमज जलसा हंगामा
4: सब संग चल के आओजे प्रताप सिंह से प्यार भरा नमस्ते सलाम या तो मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन सबको के लिए स्वागत करते हैं जा और बेशक यह रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस रात के 9:01 होता है और इसी लगे रात के 11:00 तो लोग के पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरी तड़का आज मंगलवार की रात 29 सितंबर 2026 तो सकबा हमने के टिकटॉक पेज पर देखे रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमने देखे अपने SMS भी जा करिया पसंदीदा भोजपुरी गीत सुनिया और सकबा जा टेलीफोन करें 4085 चलो शुरू कर जाए धमाकेदार प्रोग्राम के को जबरदस्त गीत के साथ किरिंग करांग अरे किरिंग करांग हम नहीं बोला था बोला था किशोर कुमार रमेश सर किरिंग करांग चलो सुनो जा किरिंग करांग याद रखिए मन करता कोनो भोजपुरी गीत सुने के तम के टिकटॉक पेज पर मिसाज विदा करिए टिकटॉक रेडियो मॉरिशस या फिर टेलीफोन करिए 4085

0: सब घर में किरिंग करांग करांग कुरुंग होते रहेला। घर घर की यही कहानी बा और संगतियारों की दुनिया में के अपना बा के पराया बा पता ही नहीं चले रहा। बहुत मुश्किल हो चला कभी कभी जाने की सच्चाई में वास्तविकता में के तोहर अपन बा के तोहर पराया। कभी कभी तोहर अपन पराया हो जा पराया लोग तोहर अपन हो जा रहा होला है इसे जिंदगी में होला। और अभी एगो संगतिया बा लाइन पे हमने के संगे चलाकर से मिलब जा भाई विजय बेनी प्रसाद। हेलो लाइन में जब बात करिए भैया। हेलो
1: हेलो नमस्ते भाई जी।
0: नमस्ते भाई विजय, कैसी समाचार?
1: समाचार ठीक बा, आप तू कैसे हो?
0: हम बिल्कुल गमट कर रहते तेलो के संगे संगे।
1: हाँ तो अभी जाने रहा जब जब 9 बजे ला तो कौन सी चाइना कर देते ना।
0: हाँ तो जाने रहा ना।
1: हाँ अरे वो देखा हम जिनो शिवदत्त के गीत मांगा जाए।
0: हाँ
1: इतनी बाप दादा की बोली है,
0: बाप दादा लोग के बोली ना,
1: बाप दादा लोग के बोली। हाँ हाँ तू सच्चाई बोल रहा है, माफ कर दिया। वो ये गीतवा सब बेनी प्रसाद परिवार के नाम जो दिया हमारे हमारे गुजोस बा गणेश जगनारायण सामने रहेला। अभी अभी तो हर वाजे शास्त्री बोनो माली
0: है देखा तो हर जिगरी दोस्त शास्त्री भाई
1: जिगरी दोस्त ओके नहीं भूल रहिया वाजे रहेला ना।
0: हाँ हाँ गाँव में रहेला।
1: हाँ हमारा बोले ना तो हर धीरी रहेला।
0: हाँ हाँ
1: तो उनका नाम नहीं भूल रहिया भाई जी।
0: हाँ शास्त्री बोनो माली
1: सुना तू सब को बना
0: सब चला था धीरे धीरे कब गर्म कब ठंडा आज तक बड़ी ठंडा कर लग।
1: हाँ तो अभी हजा पड़ी तनी गरम कर रहा था तनी ठंडा।
0: तू कहाँ कौन कोठी तू कौन कोठी रह रहा कौन कोठी रह रहा तू
1: तामुने
0: होने आम आमुं फरा था कि नहीं।
1: हाँ फरा था अभी बीती बीती होल बा
0: रखिया मगा चित्र सुना में औचार डाल।
1: हाँ ताजा नहीं करम विदा करम विदा करम हमारे दोस्त शास्त्री से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीत चला दियो अब सभी है
1: भाई जी डाल दिया गीत हुआ
0: है आली डाल अब से गीत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हिट गीत चली थानी खातिर फिर अविनाश वैष्णवी नीमा येशु फिजा और उनके संग चालू करने की दिखाता हुआ टिकटॉक पर जय श्री देवी सिंह वारदा माधवी मोहन शिक्षा

विनोद शिवदत्त की गीत सुनता रहा बाप दादा लोग की बोली। सच्चे कह कि बाप दादा लोग की बोली की हमेशा याद कर गया हमने के बुजुर्ग लोग के कभी ना भुलाए के हमने के जो नानसेस से जा रहा है लोग के कबू नहीं चेहला भुलाए के। और अब हमने के लोग के वो कहानी सुनाओ। अच्छा कहानी के शीर्षक है तितली और चिराई की कहानी। तो बहुत पुराना बात है एगो होशियार बहुत पुराना बात है एगो हरा भरा जंगल रहल। जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे

रंग बिरंगे फूल और मीठी आवाज के चहके वाला चिराई सब रहता है। वही जंगल में एगो नन्ही सी प्यारी सी तितली रहता है, एगो प्यारा सन चिराई रहता है। तितली के पंख बड़े सुंदर रहल, ओकर पंख में लाल पियर नीला और बैगनी रंग के छठा देख के सब भी ओकर तारीफ करत रहल। तितली दिन भर फूल से फूल पर उड़त रहल, फूल के रस पियत रहल और खुशी खुशी गुनगुनात रहल। चिड़ै के आवाज बहुत मीठा रहल, उ सवेरे सवेरे पेड़ के डाल पर बैठ के चहचहात रहल और पूरा जंगल के अपन मीठा आवाज में गीत सुनावत रहल। चिड़ै मेहनती रहल, उ तिनका तिनका जोड़ के अपन घोंसला बनावत रहल। एक दिन तितली फूल पर बैठल, ओ घड़ी चिड़ै उड़त उड़त वहाँ पर आल। चिड़ै तितली से बोलक, तितली बहिन तू तो बड़ी सुंदर हवा, तोहरा तोहर पंख और फूल तोहर पंख इतना जोड़ी बा, तू इतना सुंदर लगेला। तितली मुस्कुरा के बोलक, धन्यवाद चिड़ै बहिन, बाकी तोहर मीठा आवाज के हमने तोहर मीठा आवाज से हमने सब कोई जंगल में जागीरा सा। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गल। तितली चिड़ै के फूलन के बारे में बतावत आ चिड़ैया तितली के जंगल के अलग अलग जगह दिखावत हल। एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज आंधी आ गल, आसमान में कारी बादल छागल, जोर जोर से हवा चले लगल, पेड़न के दार हिले लगल और पत्ता सब चारों ओर उड़े लगल। तितली घबरा गल, ओकर पंख बहुत नाजुक रहल, तेज हवा में उ ठीक से उड़ न पात हल। उ एगो झाड़ी के पत्ता के नीचे छिप के कोशिश कर लग। वही समय चिड़ै अपन घोंसला में सुरक्षित बैठा रहल। बाकी जब उ तितली के परेशानी में देखलक तो तुरंत बाहर निकल के बोलक। चिड़ै बोलक, तितली बहिन डर नहीं, हम तोहरा सुरक्षित जगह में ले जाब। चिड़ै अपन पंख से तितली के तेज हवा से बचाए खातिर ओके पोतेजे करलक, मोटा पेड़ के खोखला में ले गल। तितली ओहिजा सुरक्षित में गल। कुछ देर बाद आंधी रुक गए, तितली चिड़ै के धन्यवाद दिलक। चिड़ै बहिन तो आज तू हमार जान बचाईला, हम ई एहसान के कबो ना भुलाब। चिड़ै हंस के बोलक, दोस्ती में एहसान नहीं बोल जला, आज तोहर जरूरत रहल तो हम मदद कर ली, कल अगर हमारा जरूरत पड़ी तो तू हमार मदद करिया। और कुछ दिन बाद जंगल में बरखा ना पड़ल, तालाब सूख गल लागल और पेड़ पौधा मुरझा गल। चिड़ै पानी खोजत खोजत बहुत दूर निकल गए, बल्कि कहीं पानी ना मिलल। तितली रोज फूलन के बीच उड़त रहल। एक दिन उ जंगल के एगो कोना में गल, जहाँ एगो पुराना चट्टान के नीचे छोटा सन पानी के गड्ढा रहल। तितली के ओहिजा पानी मिल गल, उ तुरंत चिड़ै के खोज निकलक। कुछ देर बाद चिड़ै थक के एगो डार पर बैठल, तितली ओकर लगे पहुँच के बोलक, चिड़ै बहिन हमरा एगो जगह पानी मिलल बा, चल हम तोरा बताब जा। चिड़ै तितली के पीछे पीछे उड़ल गल और पानी से अपन प्यास बुझैलन जा। तितली मुस्कुरा के बोलक, दोस्ती में एक दूसरे के साथ देल सबसे जरूरी होला। समय बीतल गल, तितली और चिड़ै की दोस्ती गहरी मजबूत होल। जंगल के बाकी जानवर भी दोनों के दोस्ती के उदाहरण देवे लगल। एक दिन एगो बूढ़ा खरगोश बचपन से काले रहल, बछवा लोग तितली के सुंदरता और चिड़ै की मीठी आवाज तो सब देखलक सुनलक, बाकी असली खूबसूरती तो दिल में होला जे दूसरे के मुश्किल में काम आवेला। तितली और चिड़ै एक दूसर के देख के मुस्कुरा देलक। उ दिन से जंगल के सब जीव भी ई बात याद रखलक कि सच्ची दोस्ती रूप आकार या ताकत में नहीं रहेला, सच्ची दोस्ती जरूरत के समय में काम आवेला। कहानी की सीख ये है संगतिया लोग कि सच्चा दोस्त वो होला जे सुख में साथ देवेला और दुख में खड़ा रहेला। दूसर की मदद करे से दोस्ती मजबूत होला और समाज में प्रेम बढ़ेला। तो तू भी दोस्ती कर बता, चिड़ै और तितली की दोस्ती करिया, जैसे लोग की दोस्ती गहरा रहल तू भी ऐसा दोस्ती करिया। और ऐसे में सुनब जा अगला गाना कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में, और है गीतवा चली मिदुन के नाम, राजेश शालिनी हिरू करपति विशाल दुगो बेटी और सब हिरू परिवार यादना फरजीन, फिर है गीत चली रानी जयसूरी, फिर

रवि बंगारू है गे तोहर खातिर तोहर पत्नी करुणा तोहर बेटा रयान और हाँ रानी जयसरी भोजपुरी कार्यक्रम है का हो कई बजे से बोलते भोजपुरी दरका तो नहीं सुनते वो बिपिन भी है गीत तोहर खातिर साथ में अनीता लाल जी है गीत तोहर खातिर सब लाल जी परिवार और हितू परिवार के नाम मोदालबे से बीर भाई नमस्ते भूषण हेलो कुणाल हिरीलाल नमस्ते बहुत बहुत बधाई हाँ और कुणाल हिरीलाल की बात करती से जलसा के रात रहल औसिनाल में लिवेंसिस सेप्टाम के सामदी के और तो लोग शो एकदम जबरदस्त सर बधाई हो बधाई कंग्रेचुलेशंस कुणाल हिरीलाल एंड द होल टीम फॉर जलसा के रात बा द फर्स्ट लाइव ग्रैंड कंसर्ट इन भोजपुरी से कुणाल हिरीलाल को बहुत बहुत धन्यवाद देवते जा कि भोजपुरी भाषा के आज भी जीवित रख रहे हैं वन जय हो प्रभु फिर की चलावते इस मदी हा नूरा खातिर और ओके नूरा और राइट नमस्ते भाई ओके विकी तो है गीत और दोस्त साजन और मिसेस शिमला के नाम देवीना राम बिरेच है गीत और नाम किशोर मंतू जेना हेलो है गीत पवन सिंह के नाम और उषा कौर संगीत विद्यालय हमके साथ जुड़ल हवन थैंक यू जी उषा जी उषा कौर जी गीत और नाम और विद्यालय के सब स्टूडेंट्स के नाम विनु रुचाल है गीत और नाम देविया है गीत और नाम चलावते इस गीतवा के शीर्षक है निशा निशा निशा निशा निशा लगेला है गीत चली साइलेंट के ओकर मारी ता ओकर मौसी रेणुका खातिर और विशाल विशेषर ओकर पत्नी ओकर बेटा और सब विशेषर परिवार के लिए जोन लाफलोगा रहे हन सर साथ में है गीत चली देवी नदी वाला जोन वैनकूवर कनाडा में बा हमने के प्यार से सुना था वन और जितना कोई समय हमने के सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और साथ में जे कोई हमने के देखा था रेडियो एमबीसी रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर तय गीत तो लोग के नाम निशा निशा निशा निशा लगेला अब नहीं पिया अब गे मामा कब नहीं पिया चले एक साथ सुने

0: अब नहीं पियेंगे मामा, कबो नहीं पियेंगे, इतना सब कुछ बोले रहा पर के अमल में बात आने रहा, ये सोच रहा बात। अब बिल्कुल संगतिया बालाइन पे। हेलो
1: हेलो, नमस्ते प्रताप सिंह जी,
0: के हवा जा
1: आशा जानू करते
0: जी। हाँ तोहरा स्वागत बा, और भोजपुरी तरह का प्रोग्राम में तोहरा स्वागत बा,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और आज तू हमने के कौन सी बोलबा?
1: सबसे पहला जितना हमी के बरादन हवन जो उन सब के सादर प्रणाम, और आप सब अभी भोजपुरी तड़का सुना था वजह तो आप सब के भी सादर सादर नमस्ते। तो चकाचक बढ़िया भोजपुरी गीत सुनते सुनते प्रताप जी हमारे दिल में ख्याल दिलाल
0: आज बोला।
1: तो ख्याल ये बा कि जैसे आप सभी जाने लगे अभी गोविंदन चलता,
0: हाँ।
1: वेंकटेश्वर चलता, अभी तो छोरा
0: गोविंदन पूजा, वेंकटेश्वर फिर पितृपक्ष और दुर्गा पूजा भी हुई,
1: अभी तो थोड़ा दिन में दुर्गा पूजा शुरू हो जाए।
0: हाँ।
1: तो सोचा तो नहीं एगो रेसिपी चलो संगीत शेयर करो।
0: हाँ जरूर बोला, व्यंजन खाना खजाना,
1: खाना खजाना। तो आज के जो रेसिपी आप सबसे शेयर करब वो है बेसन के लड्डू।
0: बेसन के लड्डू ये प्रसाद के रूप में गोविंदन वेंकटेश्वर बजा दुर्गा माँ के जब पूजा हुई था सकब से चढ़ाई न
1: सक बजा भोग लगाए दे।
0: अरे बोला बोला कैसे पकाए?
1: वैसे हाई बेसन के लड्डू जो बोले जाते हैं आप सब
0: कितना व्यक्ति के है, कितना व्यक्ति?
1: ये जब ओकर एगो फुल पैकेट के तैयार करबा तो 50 गो लड्डू सकी बने हो,
0: 50 गो लड्डू के,
1: 50 गो लड्डू। आप ये त्योहार पर निर्भर बा जे खोजा तो छोरे पका के तो आधावे पैकेट के पकेबा तो एगो 20-25 गो ले लड्डू तोहरा मिल जाए। तो सबसे पहला तो आप सबसे ये बोला जैसे है बेसन के लड्डू आ ये तो ढेर कोई जाने लग जा, सब कोई अपन अपन तरीका से बनावे लग जा। तो हम आगे हमारे माता जी जिन तरीका से बनावे लन हर तरीका वा आप सबसे शेयर करब, कहे कि ढेर कोई बड़े लन जा लोग के लड्डू तनी गीला हो जाला।
0: हाँ कब कब वो गीला हो जाला लड्डू, सच्चे बोला तो
1: और आमेर हो जाला गीला हो जाला। तो हमें जो छोटा छोटा थोड़ा टिप्स बोलब तो मैं वो तो हर लड्डू ना गीला हो ना आमिया लगी
0: बोला।
1: तो सबसे पहले आवा सामग्री के में तो सामग्री में लिया बेसन और दूध चीनी।
0: दूध कितना? एगो कप? एगो कप दूध?
1: नहीं नहीं दूध खाली दो चम्मच,
0: एक
1: चम्मच से दो चम्मच। तो बेसन दूध चीनी कोको काफे पिसल हुआ इलायची पिसल हुआ बादाम और लवण और तेल क्षमा करियो। तो सबसे पहले आपका कर बजा सबसे पहला तो अपन चाशनी तैयार कर लिया जा, जैसे एक डेक्सी में चाशन दो कप पानी।
0: चाशनी मतलब सिरो ना?
1: सिरो दो कप पानी ले बजा एक कप चीनी डाल दिया जा उमे ओके खूब डबके दिया जा। तो हमारे माता जी क्या करे लन और पहला टिप है ये है सिवा जब पानी कर पकवा तो उमे पिसल हुआ इलायची और लावानी डाल दिया
0: जा।
1: मैं हाउ जब सिवा दुधवा में डाल के बन बजा अपन लड्डू कर बजा तो एगो जोली बढ़िया खुशबू आए। तब जब तोहर चाशनी तैयार हो जाए तो अपन घास बुटा के ओके छोड़ दिया ठंडा हो के पकवा के। तब एगो कढ़ाई लिया तो जाने वेला ना ढेर कोई बेसन के घी नहीं करे रंजा तो हमें लाके हमें आधा को ये घी डाल के बेसनवा के घी करी रहा जा, कहे के उसे बढ़िया खुशबू आवे।

0: At least there, occasion ego carva, then Amira unerela, the ekatil besamakna me, then in pundiraja. The Karhai may attack with a besan darke, okilimans in Punba, but yadakia, buntesame, lagatatele, yakahiki, Karhai may satira.
1: I've been calling it.
0: The Mikuline, hoi, okay, lagatatele, yaja. Tapteleta, the budget, the besanter in Punjaga, talking with darke, telling Kandaho diaja. Tap ume, tennis, ego decided to button mezzolisapan bisan leke, the ume subsepehla delia duchamash dud, bisan hova ilaichi, tennis, badam kaze, or timeta jonchasin the yaka leva umeta sini bate. But the kudbatan sun mita ta ume dukuyare se chini dal diya ja aur je dher mita ne kudba ta besanwa me chini ne dal diya ja aur koko rape hai sab dal ke ta sun lavani dal ke aur halka pila rang dal ke okay khub liman se sun diya ja pani dal ke कपले में से सांदे बजे को पतला घोल यं बना दे बा हो लपटवा के बेपन के लपटा के को घोल बना दे बा तब चल है या अपन कढ़ाई कढ़ाई में तेल गरम कर या देख बा तेरे संजोली से तेलवा गरम होगा तब ओके धीमा कर दिया अपन गैस के धीमा करके तब अपन जो ना बिसर बा थोड़ा थोड़ा करके ओके बुंदिया छन या जा तब छान के तड़े को क्या करने लगा जब बुंदिया छाना जाला तब जैसे सिखवा में डाल देवे लगा तब मैं ऐसे निकली रहा जब जैसे जैसे तो हर बुंदिया छाना था ओके गो दूसरा देखो सेनी में गो बटर में निकल लीजिए जब तो हर सब बुंदिया छाना बिसन के बुंदिया छाना जाए तैयार हो जाए तब ओके गो बटर में सेनी में निकाल देना तब तनी कुने को ठंडा हो जाए तो के हाथ पे से ओके खूब तनी खांसी कर दे बाहर पे से
1: हाथ पे से
0: अभी हाँ अभी सी होने डल गया ओके हाथ पे से खूब खांसी कर दिया जाओ खूब लिमन से खांसी कर दे बजा खूब पिटली ऐसा हो जाए खांसी कर दे बजा तब ऊपर से ऐसी हुआ डाल के ओके ऐसी कर दिया जाओ ओके लड्डू के गोल गोल
1: गोल गोल आकार के
0: गोल गोल आकार के तो एक बार सुखल बात है तो जब दस्ती डाल दे बस ये हुआ और जब तो अच्छा बात तो ये तो जब जैसे जैसे अपन लड्डू बनाए बार तो थोड़ा भुजाए तो अपन सिर्फ डाल ले जाए या लड्डू आप बनाए ले जाए जब सब लड्डू बन जाए तो डेकोरेशन खातिर सब ऊपर से तनी सुने गोकुरापे लिमन से चिरिक दे और तो हर इच्छा अनुसार चाहबा जाता हर एक लड्डू में एक एक किशमिश रजास्टिक डाल दे बजा
1: देखो ये लड्डू बना के फ्रिजडे में रख दे हुए हैं इन ये तो लीजिए तो वो क्या है
0: नहीं हमें फ्रिजडे में नहीं डाली
1: लगा जरूरी नहीं है डाली की नहीं
0: नहीं जरूरी नहीं है डाली के पर हाँ ये बात सही बात जब तो लड्डू तैयार होगा तो अब एक दिन में तो सब सब लड्डू खा ले ना तब सब बाद में
1: हम तो एक दिन सब सब लड्डू खा ले
0: तो बाद में डाल दे के अपन भोग लगा के देवी माँ के अपन भगवान के भोग लगा के प्रसाद बात देने के बाद सगो बॉन्ड दे बजा तो सब बाकी जो बहुत फ्रिजर में डाल
1: तो कितना दिन रहे रही जो बेसन के लड्डू फ्रिजर में रख बन चे मैं लेकिन जान लेगी मैं रखा ला तो कितना दिन रहेला
0: तो बाकी वो भुंजाल बना घी में तो गाते नहीं हुई वो लगभग एगो एगो एक से मिले रही
1: हम बोली तो बोला एक बार इसलिए
0: नहीं
1: लड्डू ऊहा जुन खाल जला और ये देवी माँ के चढ़ेला गोविंदन में कृष्ण भगवान के वेंकटेश्वर भगवान के भी चढ़ेला भोग ना बहुत बहुत धन्यवाद आशा जानू और कौन गीत तो रहमान का दर्शन की बोला था
0: हाँ तो आशा
1: करते
0: आपके हमारे रेसिपी आप सबके पसंद
1: बहुत जुड़ी रहती रेसिपी और बोला था कौन गीत
0: बनाया जा और हमें याद कर रहा था और एक गीत के फरमाश कर रहा ठीक है मेरा मोहन के चतनिया
1: मेरा मोहन का लेकिन तो क्या खातिर मांगते हो
0: तो है गीत हम मांगब अपन माता जी कुमारी खातिर और हमार भांजा लोग हवन ऋषभ और शुभम हमार दीदी हवन आशी बुनई हवन राज और सभी जानू परिवार किसमा परिवार

0: और आप सभी श्रोताओं के एक दो हमारे दोस्त हवंजा, धीरज, नंदिनी, जेनिता और जितना भी दोस्त अभी सुना हवंजा, आप सबके है गीता आप सभी सुनने वालों के
1: अरे बहुत बहुत है आशा जी। तो इतना हमके जोड़ी से रसद दिला, और अभी जैसे पूजा हुआ था गोविंदन पूजा वेंकटेश्वरा, अभी पितृपक्ष और दुर्गा पूजा हुई था, आशा करते सब भक्त लोग है

ठन्या और रहेगी चली सब श्रोता लोग ज्ञान जुड़न की सुनता है रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। है चली रुंची के नाम सुबी दियाज हुसैन उमा हीरा और है अजय सिंह दौलत तरन क्वीनी और यश के नाम चले एक साथ सुना है गीत और गीत इंदिरा के नाम भी।

चचन्या मीरा मोहन की गावल गीत और हमने की मॉरिशन की फेवरेट डिश के सब कोई कुछ चटनी खाए के पीमा के चटनी पोलामन के चटनी कोतमीरी के और कुछ के कोको के चटनी पोलामन के चटनी लामो के चटनी हरी धनिया के चटनी पीपंगाई के लापो के चटनी बैगन के चटनी चटनी नहीं रही तो कैसे आपसे बोला था रात के पौने दस बजे तक तू सुन तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर अजय प्रताप सिंह के साथ प्रोग्राम हो चोरी तक ऐसे ही इनके साथ देती रही और संग जाए लोग वास्तव में दिग्वत लेंदी से लेके दिमास ले हमने जो विभिन्न देवतालों के व्रत खिला सा हमने के हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार लेंदी के जो सोमवार के शिव भगवान के व्रत रखल जा रहा और मंगलवार के हनुमान जी के बुधवार के गणेश भगवान के गुरुवार के विष्णु भगवान के शुक्र के माता लक्ष्मी के सामदी के शनि देव भगवान के और रविवार के सूर्य देव भगवान के पूजा करी रासा व्रत भी रखी रासा और ढेर को ये सातों दिन व्रत रखेलन सा अलग अलग भगवान के तलेंदी के शिव के पूजा कर व्रत रख बत सुख शांति और मनोकामना सिद्ध होला। मंगलवार के हनुमान के व्रत धारण कर साहस और शक्ति मिलेला। बुधवार के गणेश के पूजा कर बुद्धि सिद्धि और विद्या प्राप्त कर। गुरुवार के विष्णु भगवान के व्रत रखब सुख समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हो सब काम मंगलमय हो। सुख के दिन अगर माँ लक्ष्मी के व्रत रखब तो घर में धन संपत्ति आवेला खुशहाली रहेला। शनिवार के हनुमान और शनि की पूजा होला इकर से हमने के जितना ग्रह सब दूर होला और दिमास के सूर्य देव के पूजा करी रास होकर व्रत रखी रास उकर से स्वास्थ्य तेज और समृद्धि प्राप्त करी रास। बस जो है ना पूजा पाठ करके पूजा पाठ कर तो जितना ग्रह पर सब दूर होला। चल अगला गीत समझा मुकेश श्री की आवाज में मुनि एल्बम से लिया गीत है गीत चलावती से खासम खास नतराज रामकोरण के नाम आपने विल फौसेवन और माता जी पिताजी और बहन और भाई और सब रामकोरण परिवार के नाम शोभा हवन पॉम्पले मुझसे हेलो शोभा जी कैसे समाचार सब ठीक ठाक है गीत चली विकास नारायण चिबुग लोंग राजा स्टीव राजमन्ना होरीलाल दिनू प्रवीण भैरव श्याम मंगल नानो सुदेश जसवा और उनकर माता जी राजकुमारी के नाम और है गीत चली सुबी के नाम जियाज हुसैन खुशी सुदेवी हमके साधे वथवन प्रीतमान हेलो नमस्ते है गीत और नाम तारावंती राजाराम सुष्मिता श्रेष्ठा मीला रामा और तारावंती करुणा और कुलदीप कारवेर हमके साथ देवधवन टिकटॉक पर हमने की देखा थवन और सुना थवन जाओ रेडियो पर जितना कोई हमने की रात की वक़्त सुना था जितना कोई नाइट शिफ्ट में लगल हवन सा है गीत तो लोग के नाम भी है गीत चली रवि बंगारू का सब परिवार के नाम सागाती रिव्य जी पर से हवन रिसोल भी हवन वैसे टीना दीना प्रतिमा बानु आपाया वीरापेन और रोसाई के नाम और है गीत चली MGI कॉलेज मुगा के एक्स टीचर्स के नाम मिसेज बंधन मिसेज रघुनंदन मिसेज रघुबर मिसेज ओकल मिसेज झमन गुरुजी गिटारत और गुरुजी रामफल के नाम तो चला इस सब लोगन के नाम अगला गीत चलाओ अब जा मुकेश चेरी की आवाज़ में और है गीत करुणा के ओर से करपति सत्यन का तिरचेरी बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना कोई अभी हमने के टिकटॉक पर फॉलो कराता है और रेडियो MBC पर हमने की सुना था वंजा है गीत तो लोग के नाम

0: 11 बजे ले लिंडी से लेके धीमा से रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर रात के 9 बजे से 11 बजे ले। अगला गीत अजब तोरे लीला, बहुत ही प्यारा सा गाना जो चली सब रोंपा एसएसएस के स्टूडेंट्स और टीचर के नाम, साथ में है गीत चली मिसेस नाकु की ओर से सेंट ओबे एसएसएस के सब टीचर स्टूडेंट्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम भी। नीता हमने के साथ हो तो सिबन परिवार है गीत तोरो नाम, और है गीत चली मनोज महातो खातिर गौरंगा हे कैसे हो प्रभु सब ठीक ठाक जय हो प्रभु राधे राधे। अगला गीत और खातिर और करीम बोकस भाई कैसे बा भाई आबू हवन बाकुआ से भाई आबू गीत और खातिर तोहर घरोली तोहर लड़का और सब आबू परिवार के नाम। और बेशक यहाँ पर हैं सब नहीं तो लोग के साथ देवते ही सा, और रात के 11 बजे रे तो लोग संगे संगे गमत करब सर गमत करे के चाहे ना हाँ तो अभी गमत हुआ था एम ई सी रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर तो चला सुने अगला गीत ज्वाला बिजादन की आवाज़ में अजब तोहर लीला भगवान की लीला परम्पार जोन भगवान चाहेला उही होला
1: अजब।

0: संगत्यारो घरमी नालाई बखत रात के ठीक 10 बजे बाद तू सुनो एमबीसी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: कंटीन्यूअस म्यूजिक
2: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस
3: कमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
4: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा
0: रात के 10:02 होता तू सुनते हो एमबीसी रेडियो मॉरिशस और एमबीसी रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस 719 पर एएम मोड पर और रेडियो मनोरंजन एफएम मोड पर चलता 94.6 और 98.2 FM पर और सब भाई के इंटरनेट के जरिए सुने टाइप करिए लिसन एमबीसी रेडियो मॉरिशस या एमबीसी रेडियो मनोरंजन लाइव रात के 10:03 हमने जाना सा ढेर कोई हमने के साथ देव थो ना अभी टिकटॉक पर भी हमने के देखा था वो और बेशक हमने के सुना था वो और अगला गीत हेलो हेलो राजकमल चिंता मन गीत आ गई लेन और संगतिया वाला इन पे कॉल से मिल अब जा हेलो
5: हेलो
0: नमस्ते
5: नमस्ते
0: प्रेमिला जी कैसे समाचार
5: हाँ समाचार अच्छा
0: सब अच्छा बना
5: हाँ थोड़ा
0: हाँ बोला आज के दिन कैसे बीतल
5: अच्छे से बीतल आज के दिन
0: आली अगला गीत के का खातिर
5: गीत वाय गुदलिया शिव न मानेला
0: कौन गीत था
5: शिव जी न मानेला
0: के गई लग बजाने ला पूर्णिमा फोकीरा एगो भोजपुरी गीत था
5: हां और शायद आर कोई गेले मन जाने नहीं याद
0: हमरा शिव जी न मानेला ए
5: नहीं नहीं बरसता ना
0: तो शिव जी के गीत बा कुणाल ही लाल के आवाज में चला दियो अब सगत नहीं मिलते देखा तो मौ वाकवा के गजब कैसे सुखल जाता ना बाप रे बाप 20% खाली रहकर बाप कार जी पानी बरसे कि नहीं पर प्रार्थना के जैसा पानी बरसे के चेहरा ढेर पूजा पाठ आज जहाँ कलयुग में चला नहीं सर देख सब चीज ग्रम बग्रम तो पूजा पाठ जब करे सब ग्रह गठित हो भगवान हम की देश में पानी बरसा है हाँ देख रहा है बोली देताई में ना लेंदे के शिव अभिषेक होला हाँ ढेर कोई रहे जो नदीता लोग भर सप्ताह का आगे रहे सर अच्छा भी है और डॉक्टर भी बोले ला जितना सब्जी फल खेब तो लासों अच्छा सब मरादी से दूर रह हमने तो हाँ हम हो गए चार पाँच महीना अभी तो विषित आए हुए इन सब पूजा पाठ हुआ था अभी तो नहीं नहीं देखा हम कोई के मना नहीं करी ला जो रुचि ला उखा ला तो हमने के पर ढेर कोई खुशी रहे लेगी खाए कि अच्छा हला सौते खाते पूजा पाठ कर थोड़ा सुन तो ये सब शाकाहारी भोजन सब ना तो दस्ती थी रहे ला हाँ कि नहीं हाँ रोज के चेहरा एगो फल खाए कि डॉक्टर बोले रोज के एगो फल चेहरा खाए कि तो अगला गीत तोहर खातिर और तोहर सब संगत परिवार एगो भजन चाहिए पर भजनवा से पहले गीत क्लासे होगल बा राजकुमार चिंतामणि के

0: गीतवा के बाद चला देव सर, ठीक बा। प्रेमिला जी तुहों के गुबार बताओ, तुहर जमाना में दादी नानी लोग हर परवरी गावत हल, अब बा हर परवरी कोई गावेला?
1: पंडित जी रलन गुजर गेलन तो उ ले जातलन है नदी में गवाई की।
0: हमके याद बा जब हम छोटा रही तो दादी नानी चाची लोग सब कोई ढोलक झाल करता लेके भर सीमा भगवान के नाम लेते हुए इंद्र भगवान वरुण भगवान के पूजा करे तरी सर ताकि पानी बरसे। और सच्चे के जब पूजा हो जाता है तो पूजा के एक दो दिन बाद मोटा पानी बरसता है।
1: पानी बरसे हाँ, हमने भी शायद बच्ची में वहाँ हमेशा पूजा पाठ होता है ना, जे भी
0: हम मांग करब अगर माता जी लोग बुजुर्ग जन हवन जा चाची नानी दादी लोग तू जाना तो वो हर परवरी करे हर गांव में हर शहर में आई पूजा करिया जा हर परवरी ताकि पानी बरसे। हाँ प्रेमिला जी बहुत बहुत धन्यवाद, और से बात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसे में के साथ देती रहिए, शुभ रात्रि। हाँ तो जैसे बोला भी आजकल पानी बरसा था थोड़ा बहुत, पर जहाँ बरसे के जहाँ गजे बाबा वहाँ नहीं बरसा था। माँ बाबा को देखे जैसे दिन ब दिन सुख ले जाता है बीच नाल बाकी वह पूछों खाली पानी बहता कैसे हुई। तब प्रार्थना करब स शिव भगवान से, गंगा माता से, इंद्र वरुण भगवान से कि हे प्रभु हमने के देश हरियाली हरियाली रही, पानी बरसी जलाशय में पानी रही, तब मैं सकब सब लिगिम उगिम बुलाते पानी नहीं रही तो कैसे हुई बोला था। तभी चला सुनब जा बाग तू बाग दू गाना, अभी गीत क्लासिक रहा राजकमल चिंतामणि के हेलो हेलो, और बाद शिव जी के एगो भजन चलाओ अब सर प्रेमिला बहन जो रवि मंगलक, और है गीतन चलाओ अब सर सब संगत आलू के नाम आप हवन जा देविका देविका गीत तोहर खातिर, सोनांशी टंकी गीत तोहरों खातिर, उदय दनी राम और सब परिवार, और जितना को अभी रात के हमने के सुनता बहुत बहुत प्यार से, और विशाल भाई सुनतवन SSU के कर सब टीम, विशाल रीना और वीना खातिर भी बैक टू बैक दुगु गाना हेलो हेलो राजकमल चिंतामणि के, और दूसरा गीत रही एगो शिव भजन कुणाल हेरीलाल के आवाज़ में।

संगीतकारों के हिंदी में कहावत बात दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाली का नाम। तो भगवान जाने ला है कि कर प्ला में कि कर थाली में कितना खा के देखे। और जब भोजन की बात करे से तो एक दिन में तीन प्रकार के रहेला, एगो है ब्रेकफास्ट, एगो है लंच, एगो है डिनर। और जिन फजीर के ब्रेकफास्ट है ओके बोल जला यू हैव टू ईट लाइक ए किंग। फजीर के वक्त चेहला ज़्यादा मात्रा में खा के और लंच में थोड़ा सुन और रात के थोड़ा सुन। तो हमने क्या कहे सर हमने सब लिखोते करी जैसा। तो हमेशा याद रखे फजीर के जो ब्रेकफास्ट है जो फजीर के जो नाश्ता करी जैसा वो चेहरा बिया गानी है तो प्ला चेहरा बिया रोपली और में रोटी जिब्बे लाजले चाह दूध है सब और एगो फल भी चेहला और एगो बैलेंस डाइट चेहला। और दिन के दौरान जो लंच है जो 12 बजे खाएला सो चेहरा था सुन लाइट रात के वक्त चाहे और लाइट कह के रात के यानी कि लिखो खेबूजे करेगा तो कहते रात के ढेर खा के नहीं खा के जिस खैया जमीन तूफे नहीं हो बा। और बेशक ऐसे में चल जाए सुनब जाए अगला गीत रत्ना पदारत जी हमने के सहयोगी हमने के औजे हवन एम बी सी के रत्ना पदारत साथ में कर संग गए वन मोहम्मद खालिद बंधु आँख मारेरा। अब के कर से आँख मारा था एक साथ सुनब जा गी चली मिशन क्रॉस रोड लाल माटी के रविराज सिन्हा बिचु के और से कर पत्नी स्वयं प्रभा कर बेटा प्रत्यक्ष और ये सब संगतिया लोग जो हमने के देखा था वन सभी टिकटॉक पेज और रेडियो मॉरिशस पर करुणा है गीत तोहर खातिर जनिता सबीना इनाया पूजा वर्षा लकी वुमन रमेश करके सुकन निरोमिया माया बावरी स्नेहा शमीरा जफूर और लिजबेथ शांतल और पूनम भी हम के साथ देवतवन जितना कोई अभी हमके टिकटॉक पेज पर देखा था और रेडियो पर सुना था वन सा इन आया है गीत थोड़ो नाम निकोला पिया भी हमके साथ था वन स्वीट विशेषर और राइट तो चले साथ सुने है प्यारा संगीत आँख मारेरा। अब तू कोई के देख के आँख नहीं मर जाए गीत तो आप बोला था आँख मारे के गीत है मनोरंजन करे खातिर तो कोई के देख के आँख नहीं मर जा वरना जाने ना का हो ना।

0: देख देख के आंख मारेला। अब टिकटॉक पर हुआ तो आंख नहीं मरिया है। बहुत ही हंसी मजाक से भरपूर गाना रत्ना पधारत और कर संगतिया संगे भी गैलन जा बंधु मोहम्मद खालिद। हमरा देख देख के आंख मारेला, हमरा देख देख के सिटी बजावेला। इस गिच्छन के थोड़ापन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिन याद चला लो ना, ऐसे तो हो देख देख के आंख मारा तला। नहीं हो बाजने करता है। जवानी दीवानी रहेला ना। और बुझे सके है जो हमने के नर तन पहले ही सही बहुत भाग से हमने के है ह्यूमन बॉडी मिनल बा है शरीर जो है एगो मंदिर है और हमने की आत्मा जो है और भगवान हमने के तई शरीर के चेला शुद्ध और पवित्र रखे के। और बेशक जब हमने के शरीर के हमने के मन के शुद्ध और पवित्र रखब सा तो मन में अच्छा विचार आवेला हो कि नहीं। तो है शरीर पाए खातिर कितना जन्म पड़ल बा हमने के लिए के ये प्रोमिया फा नहीं है कि तुहार जन्म बोल भाई धरती पर है। कितना बार तू जन्म ले लिया हुआ, कबो जानवर के रूप में कबो इंसेक्ट के रूप में, तो इस जन्म में तू नर तन पहले हुआ मनुष्य के रूप में आला हुआ तो अच्छा काम करिया, अच्छा काम करिया ताकि अंत में हमने के मोक्ष मिली मुक्ति मिली। तो मोक्ष और मुक्ति कैसे मिलेगा, जब कर्म ज्ञान और भक्ति ये तीनों जब हमने के साथ रहा तो हमने के मुक्ति मिलेगा। अभी को संगत या बलाइन पे से मिलब जा। हेलो
1: हेलो प्रताप जी, नमस्ते।
0: नमस्ते के हवा जा।
1: हाँ मनु है रोजबे से।
0: हाँ मनु तोरा स्वागत बा, बोला
1: सब ठीक ठाक बा
0: ना? एकदम चकाचक।
1: हाँ तो 9 बजे से सुना था।
0: हाँ
1: तनी बोली हम कहे ना हम तनी एगो गीत मांगेला।
0: हाँ बोला बोला कौन गीत सुन बा?
1: हाँ गीत वाम के बहुत चल बाते सुने के कलकत्ता से खुलल दहाद कलकत्ता ये आज नहीं सक बहुत अकार
0: काम नहीं नहीं नहीं बाग गीत वाचा लावो सर।
1: हाँ कलकत्ता से खुलल दहाद हमारे 5 गो बहिन के हमने 4 गो बहिन में 5 गो बहिन है सा 4 गो बहिन तो बाबा बसंती देवी और माला माला कापू जी हमारे 3 गो भाई बा राजन राजेश राकेश 3 गो भाई भौजी हवन। अब सब फैमिली हमने गंगा फैमिली मगन फैमिली सबको यहाँ सा गीत कया से मंगल रात सुने के जानी नहीं सुना था ना हम बोली जानी मांग ले रहे
0: कलकत्ता से छूटल दहाज पूर्णिमा फकीरा।
1: हाँ
0: चला
1: देव

0: अति धन्यवाद बोला था जानू के
1: हाँ देखा कैसे जोड़ी कैसे
0: दिला जोड़ी से एक्सपीके कर लग से माहम हम लिख रही भुंजी लासा ना नहीं जाना सा कि भुंजे के चहला
1: हाँ चहला भुंजे के
0: ऐसे
1: नहीं नहीं कंचा रही तो पेट दुखाए
0: हाँ तब भुंजा क्या सुंधा लगी
1: अब सबको अपन अपन फासों में अपन तरीका से बनावे
0: फासों में पकावेला हाँ नहीं से मैं जब बोलन भुंजे के जब सोचा था भुंजा क्या जब पकाई बताई को सुंधा लगी जैसे
1: हाँ हाँ हम तो सुनी लड्डू के बाद मुँह में पानी था
0: सारा से ये करेंगे
1: अन्य मैं खाती लड्डू बेसन के लड्डू अन्य
0: बहुत धन्यवाद आपको लड़का लोग के सब कोई के
1: आली बहुत धन्यवाद
0: पक में है सब भगवान की छोटे सब निमन से हो जाए
1: ओके
0: हम इसे पूर्वज लोग के सब कोई के
1: हाँ अभी पिजर पक में भूले नहीं पानी छेना गिरा के
0: हाँ तो हमारे को बात बोला
1: बोला बोला
0: हाय जब पहले पिजर पक रहे बड़ी डर लगी बुझाई सब कोई बोले नहीं बोलो सा चिराग नहीं बारे के है नहीं करे के हो हाँ बोले आज ही सोचा था आज ही सोचा था ए पिटर पग बना कुमाजे नहीं बुझाता पहले कुमाजे हमने के जब मामा लोग के जमाना रहा हमने के दादी ने तो मुझे से डर ये देखे सा पिटर पग बने सा पिटर
1: नहीं हो सब अपन चिराग वाले पूजा करे
0: हाँ तो अभी जान ला अपन सब नॉर्मल कर या सब बुझे भी नहीं करे ला
1: देखा अभी गोविंदन के पूजा होता
0: हाँ गोविंदन
1: अभी वेंकटेश्वरा होता तो पूजा नहीं करते
0: हाँ तो अभी बुझे ला चुहल गर लगे ला प्रताप जी इसे बुझे ला पिटर पग में है सा कुमाजे को दूसरे करते अच्छी बात कुमाजे नहीं
1: हाँ तो हमने के पिटर लोग के जन चल गए
0: ना पिटर लोग हमने के सहायता
1: परिवार
0: मौसी एगो हवन उनका लड़का नहीं रहा उखरो के सबके पानी उझिर देला से जहाँ रहिये
1: ओके आत्मा शांति रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात कर लो
0: बहुत अपन सब परिवार लोग
1: बहुत धन्यवाद चाचा के हाँ तो पिता पक्ष में भी चिराग भारी रास्ते अपन सौंदर दरबार की पूजा कर रहे पर अपन बड़ा आदमी के थोड़ा सुन पानी जब स्नान कर दिया पूजा कर दिया सुन पानी गिरा दिया हमने के पूर्वज लोग के नाम पे तो कलकत्ता से छूटल दहाज हाँ तभी बैक टू बैक दू गाना चलिए गो नर्तन पाके मुकेश रामेश्वर के गीत और दूसर का रही फकीरा पूर्णिमा के कलकत्ता से छूटल दहाज चल एक साथ सुना बैक टू बैक दू गाना

है गीत चली अनिता पेटोप खाती श्रीन रामजोन है गीत हरो नाम फिर इंदिरा बुलका है गीत हरो खातिर साथ में सरेना है गीत हरो नाम दुखी परिवार विकास रामलेखा गीत हरो नाम दानी जगरू नदानी जगरू और है गीत चलावती सब दुखी परिवार के नाम शीला गोपाल है गीत तोहरो नाम

जो कि शादी महिला से ये को पर्सनल चॉइस है, कोई पर जबरदस्ती नहीं सकबा करे, कोई की ओब्लिजे नहीं सकबा करे शादी करे के। अगर एगो व्यक्ति खुशी रहा सीरी बातें रहे के खुशी रहा अकेले रहे के तो ओब्लिजे नहीं करिया, पर तू देखा तो लड़का बड़ा होकर बा शादी के उम्र होकर बा और वो चाहता शादी करे के, चाहे तो और बेटा हो या बेटी हो तो ओकर पसंद के छोकरा या छोकरी से शादी करेबा तो अच्छा रही। आगे के ज़माना में लिखा नहीं कि जो माँ बाप डिसीडे करी लड़का ओकर से आगे होता है, हमने बोलते नहीं नहीं बोलते हैं। आगे के ज़माना में माँ बाप लोग जो छोकरा खाती छोकरी देखे या छोकरी खाती छोकरा देखे ताकसिप्ते होता लन सर, तो सब आगे के ज़माना रहा। आज के ज़माना बदला था, आजकल पुरुष और स्त्री दोनों एजुके हुन सर, तो लोग के दुआ बा लोग के हक बा अपन श्वास से एगो पार्टनर चुने के। देखकर मैं जोर जबरदस्ती नहीं बाए, अब जो आदमी नहीं खोजता शादी करे के लोग कहा फो बा तो ओब्लिजे नहीं करिया। जब कोई के ओब्लिजे कर बस शादी करे कर बाद में शादी टूट जाए तलाक हो जाए तो आदमी दिन रात थोड़ा गाड़ी दे, यही बात स्वाभाविक है। ये खातिर कोई के ओब्लिजे नहीं करे के है। पर अगर देखा तो कि लड़का खोजा था कोई की खुशी होगल बा कि यूनिवर्सिटी जाता कि काम करता, अब तोहर बेटा को छोकरी खुशी होगा को तोहर बेटी कोई की खुशी होगल बा, तो ज़रूर परिवार के चेहरा मिले के और सब

ठीक ठाक चली तो सगबा पर निकाह के शादी करे। और एगो माँ बाप के जो सबसे बड़ा तराका है कि ओकर बाद ओकर लड़का के देखी, ये माँ बाप के सबसे बड़ा तराका है। माँ बाप चाहेला कि लोग जिंदा में अपन लड़का के शादी कर दिलन सा, कन्यादान कर दिलन सा, तो जहाँ तो उनसे कि काल लोग नहीं भी रहे अनस औंक मुन दिए अनस तब कोई बा वो लोग के लड़का के देखे के। पर लड़का लोग ये बात के नहीं समझेला, वो लोग सोचेलन सा माँ बाप वो लोग के फोर्से करा था शादी करे के।

के जो है एक साथ रह के पूरा जीवन भर सुख दुख में चेहरा साथ दे के। अब देखा तो वह सकत वो सुख दुख में साथ दे तो शादी करिए, अब जो नहीं सकत वो सुख दुख में साथ दे तभी तो सीरी बातें रही है। इत लोग के पसीन है तो जरा विष्णु जब शादी पर होगी दुल्हन के दादी शोभा रामचंद्र फकीर गीतवा गई हवन बहुत बहुत प्यार से गीत चलाते विशाल मंडप खातिर ओकर पत्नी ओकर बेटी आप रहेलन इटली रंभा हवन स्विट्जरलैंड में ओकर तीन गो बेटी ओकर घरोला और चंदन और ओकर पत्नी प्रिया चिंताराम माता जी इंदिरा चिंताराम सलोनी अजय पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया में बाल गोपाल है गीत और खातिर अंजल प्रमिला शर्मी है गीत तोहरो नाम थे बहुत बहुत प्यार के साथ शेरा खामेन और विद्यानी सिचन हमने के साथ देवत हवन विद्या नायक को भी और तो चलो जितना कोई हमने के टिकटॉक पेज पर दिखा था और जितना कोई रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर हमने की सुना था गीत और खातिर श्रीमान और श्रीमती दुखू जी है गीत और खातिर और है गीत चलावत ऐसा वीना के अवसर ओकर घरोला और ओकर तीन गो बेटा और एगो वीना हम अभी टिकटॉक पर गीत और नाम वीना जी दुल्हन की दादी चल अभी तो नाचब सा गावब सा कमरवा डुलावब सा अली संगे संगे नाचब सा है अली चला

एकदमै बढिया गीत रहल सबै नाचता गावता झुमता जी हाँ रेडियो मोशन रेडियो मनोरञ्जन टिकटक पेज पर समय जी हाँ पल्लवी इंग्लैंड से सुना था वन ब्रतन प्रोग्राम एकदम जोड़ी बात पल्लवी गीत और खातिर रजनी है गीत तोहर बड़का मामा तोहर सब परिवार के नाम सुनी थी होला से है गीत तोहरो नाम शेरा रामेन मिंता भी बहुत नचन गीतों पर रजनी गीत तोहर खाते तोहर भाई जुन रहला मिल रोज तोहर बड़का मामा और सब कर पतो लोग खातिर और है गीत चलाओ अब सा अगला गीत शार खातिर हेलो शार नमस्ते और भूल जा सके जीवन में कभी कभी चमत्कार होला मिराक होला है हम डिजा देख रहे हैं कि बहुत से ऐसा केस बा जहाँ पर जो कपल लोग बा लोग कोशिश करते करते थक गए से कि लड़का नहीं होता डॉक्टर भी कभी बोल देवेला कि अब लड़का नहीं हो पर अचानक दिख बा एक कुछ हो महिला माँ बनकर और एगो लड़का हो गए कभी कभी देख बा कि कोनो कोनो व्यक्ति ढेर बीमार रहेला डॉक्टर बोल देवेला कि अभी व्यक्ति नहीं जी पर वो व्यक्ति जी जाला तो चमत्कार होला अगर तुहर मन में भक्ति बा श्रद्धा बा तू विश्वास करत हो भगवान पर माने ला तेगो परम शक्ति है भगवान कौन चाहिए एगो शक्ति एगो लालिमय है एगो रोशनी है जो हमेशा हमने के साथ देवेला और जीवन में चमत्कार होवेला है चेहला माने के मन ब तब जन्म है तो चमत्कार जो होला भगवान की कृपा से चमत्कार होला कभी कभी जब सब दरवाज़ा बंद हो जाला तो एगो दरवाज़ा ज़रूर खुलेला भगवान थोड़ा अकेले नहीं छोड़ेला दुख मिलेगा सबके ज़िंदगी में पर उस दुख के सामना करके भगवान ने के शक्ति भी देवेला तो ये गीत अगला गीत में यही बोला जाता कि थोड़ा जी ले बंधु मोहम्मद भाई की तो गेले वन बहुत बहुत प्यार के साथ गीत चली किमी शर्मिला और शार खातिर वतन के सब मोलू परिवार के नाम फिर कविता तंडाल हमके साथ देवा था वन और विदेश में भी देखो हमने के फॉलो करा था इंटरनेट के जरिए टिकटॉक पेज पर देखा था वह रेडियो पर सुना था वह यूजर सेकंड सी स्कैन सुनका तो सर गीत तोहरों खातिर तोहर सब परिवार के नाम और किमी भी हमने के साथ देवा था वन और जितना कोई नींद नहीं लगा था हमने के साथ देवा था वह रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर तो चला थोड़ा सुन कमरवा डुलावा नाच थोड़ा झीली

हमके जल्दी से दे दे चुम्मा, ये हम नहीं बोला था। ये अविनाश रामदायन के गावल गीत है जल्दी से दे दे चुम्मा। इस गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी भी हमके साथ दिला टिकटॉक पर हमके देखला, मेरे साथ विदा करला, कज़ा टेलीफोनिक करला और अपन पसंदीदा गीत मंगला जा। बहुत बहुत धन्यवाद तो लोग के फोन कॉल्स और SMS खातिर। कुछ ही मिनट में रात के 11 बजे सुन बच्चा अगले प्रोग्राम सुनहरे पल, और बेशक सुनहरे पल प्रोग्राम सुन नीतू शाह के साथ, और 11 से 12 बजे के बीच, और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तो लोग की मुलाकात हुई अब कल बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे ले यही समय रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन और लाइव टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस पर। तो कल तक हमने की इजाजत दे और जय प्रताप सिंह की ओर से सबको एक ही प्यार भरा नमस्ते सलाम, शुभ रात्रि, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: प्रणाम श्रोताओ, आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्वागत है आप सभी का रेडियो मॉरिशस की लहरों पर एक बार फिर। यही तो है कार्यक्रम आपका मनपसंद सुनहरे पल। आज वापस आपको ले चले हैं 60s एंड 70s की दुनिया में, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे अनगिनत हजारों गाने हैं। तो एक बार फिर उन्हीं यादों में हम वापस चले हैं, उन्हीं गलियों में वापस आपको भी ले चले हैं। तो हिंदी सिनेमा के इतिहास में 1960s और 70s का दौर एक ऐसा सुनहरा दौर था जिसे हम बड़े प्यार से बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहते हैं, है ना। ये वो जमाना था जब फिल्मों के गीत सिर्फ कहानी का एक हिस्सा नहीं होते थे, बल्कि कहानी के रूह बन जाते थे। हर गीत में एक एहसास था, एक कहानी थी, एक जज्बा था, और सबसे बढ़कर दिल को छू लेने वाली एक सच्चाई।

60s और 70s के गानों को याद करते ही हमारे जहन में लता जी की मधुर आवाज, आशा भोसले की शरारत भरी गायकी, रफी साहब की रूहानी मिठास, किशोर कुमार की दिलकश आवाज, मुकेश की दर्द भरी सादगी या फिर मन्ना डे की शास्त्रीय गायकी गूंज उठती है। इन आवाजों ने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि कई नस्लों के जज्बात को आवाज दी। 1960s का सिनेमा वैसे अपनी मेलोडी, रोमांस और लिरिकल ब्यूटी के लिए मशहूर था। इस दौर में गाने अक्सर प्रकृति, यानी कि नेचर, मोहब्बत, जुदाई, दोस्ती और जिंदगी के खूबसूरत रंगों को बयां करते थे। अजीब दास्तां है ये, प्यार किया तो डरना क्या, अभी न जाओ छोड़कर लग जा गले, जैसे गीतों में एक ऐसी मिठास है जो आज भी दिल को अपनी तरफ खींच लेती है।

सोचिए, शाम का हल्का सा अंधेरा, हवा में ठंडी सी खुशबू और रेडियो पर लता जी की आवाज, किशोर कुमार की आवाज, मुकेश की आवाज, महेंद्र कपूर की आवाज। सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स ही नहीं, बल्कि मोहब्बत के उस पल की तस्वीर है जहां वक्त को रोक लेने की तमन्ना महसूस होती है। ये सब जो गाने होते हैं हमें बताते हैं कि असली रोमांस हमेशा शोर शराबे में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों, नजरों और खामोश एहसासों में भी होता है। और फिर आती है रफी साहब की आवाज, चौधवी का चांद, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे बहारों, तुझे बहारों फूल बरसाओ, वगैरह वगैरह। इन गीतों में रफी साहब की आवाज कभी महबूब की तारीफ करती है, कभी जुदाई का दर्द बयां करती है, और कभी जिंदगी के खुशनुमा लम्हों को गीत में बदल देती है।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: दीप जला।
1: ले चलते हैं आपको 70s की दुनिया में। जी हाँ, किशोर कुमार की आवाज ने 70s को एक नई एनर्जी दी। उनकी गायकी में मस्ती भी थी, रोमांस भी, दर्द भी और जिंदगी को खुलकर जीने का जज्बा भी। मेरे सामने वाली खिड़की में ओ मेरे दिल के चैंद, ये जो मुहब्बत है, या फिर मुसाफिर हूँ यारो, जिंदगी एक सफर है सुहाना जैसे गीत आज भी सुनते ही चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। वैसे 70s के गानों के खास बात थी, उनमें मेलोडी के साथ पर्सनालिटी भी होती थी। हीरो का अंदाज, हीरोइन की अदा, कहानी का मूड और सिचुएशन, सब कुछ गीत में समा जाता था। कभी राजेश खन्ना के रोमांटिक अंदाज के साथ किशोर कुमार की आवाज दिल जीत लेती थी, तो कभी अमिताभ बच्चन के इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस के साथ पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक और गीत कहानी को एक अलग ही रंग दे देते थे।

टैगोर के गीतों की खूबसूरती का एक और बड़ा राज था शब्द, मानी कि वर्ड्स। शैलेंद्र साहिर, लुधियानवी मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी गुलजार और कई महान गीतकारों ने ऐसे अल्फाज लिखे जो सीधे दिल तक पहुंचते थे। जिंदगी कैसी है ये पहेली जैसे गीत जिंदगी के गहरे सवालों को बहुत ही सरल अंदाज में सामने रख देते थे। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, इसमें शाम, तन्हाई और यादों का एक पूरा संसार बस जाता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, इसमें मोहब्बत और जुदाई की गहराई महसूस होती है और आने वाला पल जाने वाला है, हमें वक्त की कीमत समझाता है।

श्रोताओं, गोल्डन एरा के गानों में म्यूजिक डायरेक्टर्स का योगदान भी बहुत ही लाजवाब था। शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रोशन, कल्याण जी आनंद जी, ओपी नय्यर, खयाम, नौशाद जैसे संगीतकारों ने हिंदी फिल्म म्यूजिक को अनेक रंग दिए। कभी तबला और सितार की मधुर झनकार, कभी फ्लूट की मीठी धुन, कभी गिटार और पियानो का वेस्टर्न टच और कभी क्लासिकल रंग की गहराई। 60s और 70s का म्यूजिक जैसे एक म्यूजिकल यूनिवर्स था जहां हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी कहानी थी। आर डी बर्मन ने तो 70s के म्यूजिक में एक नई फ्रेशनेस भर दी। उन्होंने इंडियन मेलोडी को वेस्टर्न रिदम्स और नए साउंड्स के साथ जोड़ा, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन के बावजूद मेलोडी कभी खोई नहीं। इसी वजह से उनके कई गीत आज भी मॉडर्न लगते हैं। और फिर वो एवरग्रीन ड्यूएट्स जब रफी साहब लता जी की आवाज से साथ मिलती थी, या किशोर कुमार लता जी की एक रोमांटिक गीत को आवाज देते थे, तो जैसे स्क्रीन पर मोहब्बत जिंदा हो जाती थी।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

60s और 70s के गानों में दोस्ती भी थी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे सिर्फ एक फिल्म सॉन्ग नहीं रहा, ये दोस्ती का एंथम बन गया। इसमें फ्रेंडशिप दोस्ती का वो जज्बा था जो आज भी हर जेनरेशन को कनेक्ट करता है। श्रोताओं, इन गानों में जिंदगी का फिलोसॉफी भी था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, मुसाफिर हूँ यारो, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला। यानी कि गोल्डन एरा की सबसे बड़ी खूबसूरती थी गाने वक्त के साथ पुराने नहीं बल्कि यादों के साथ और गहरे होते गए। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, म्यूजिक प्रोडक्शन बदल गया है, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स बदल गई है, लेकिन जब रेडियो पर 60s या 70s का कोई गीत बजता है तो हम अचानक अपने अतीत के किसी खूबसूरत कोने में पहुंच जाती है। किसी को अपनी पहली मोहब्बत याद आती है, किसी को कॉलेज के दिन, किसी को पुराने दोस्त, किसी को अपने माँ बाप के साथ गुजारी शामें, और किसी को वो पुराना रेडियो जहाँ से घर के माहौल में गीतों की आवाज गूंजा करती थी। शायद इसीलिए गोल्डन एरा के गानों को एवरग्रीन कहा जाता है।

उनकी मेलोडीज में सुकून है, लिरिक्स में गहराई, सिंगर्स की आवाजों में रूह है और कंपोजिशंस में वो जादू है जो समय की सीमाओं को पार कर देता है। 60s और 70s के गीत हमें सिर्फ म्यूजिक नहीं देते, वो हमें यादें देते हैं, एहसास देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं और कभी कभी आंखों में नमी भी दे जाते हैं। और जब रात खामोश हो, हवा धीरे धीरे चल रही हो और कहीं दूर से रफी साहब, लता जी, किशोर कुमार, आशा जी, मुकेश और बाकी सब कलाकारों की आवाजें सुनाई दे, तो दिल बस इतना ही कहता है, वाह क्या खूबसूरत था वो दौर और क्या खूबसूरत थे वो गीत। गोल्डन एरा के गानों की खूबसूरती यही है कि उन्हें सुनने के लिए किसी खास वक्त की जरूरत नहीं। सुबह हो, शाम हो, रोमांटिक नाइट हो या तन्हा रात, इनकी धुनें हर पल को खास बना ही देती हैं। ये गीत कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं और आने वाली नस्लें भी इन्हें सुनकर मोहब्बत, दोस्ती, दर्द, खुशी और जिंदगी के नए रंग महसूस करती रहेंगी, क्योंकि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता और गोल्डन एरा के गीत तो दिल की वो आवाजें हैं जो हर दौर में नई लगती है। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: This is Radio Marches.
1: 您好。
2: Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shrotrandariki Hrudayapurvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: तो फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
9: राइट.
8: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
9: नदी जमे जते.
8: नदी जमे जते. आह, इट्स सो सेक्सी.

ABC Radio 24 hours a day. You're listening RM Free Radio.

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।